शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।

0: आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं नवीन तिवारी जी से। पिता के अचानक निधन के बाद जब परिवार के 14 लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके सर पर आ पड़ी तो उसने परिवार चलाने के लिए एक किराने की और पीसीओ की दुकान खोली। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कभी कि एक दिन ये युवा 15 करोड़ की कंपनी का मालिक बन जाएगा और दूसरों को तरह तरह की कंपनियों में रोजगार दिलवाएगा। ये उद्यमी हैं नवीन तिवारी, जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर महज साधारण सी शुरुआत करके साझेदारी में स्क्रैम्बल नाम की कंपनी खोल दी। वैचारिक दृढ़ता और शानदार सोच का अटूट समर्पण की शक्ति के साथ खड़ा स्क्रैम्बल आज लाखों युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है। एक छोटे से किराना स्टोर से एक संपन्न उद्यमी तक नवीन की यात्रा महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है। बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने कई तरह के अनुभव हासिल किए, जिनमें एक सख्त बॉस से निपटने से लेकर कई नौकरियों में पदोन्नति पाने के उतार चढ़ाव वाले दौर शामिल हैं। बाद में नवीन ने अपने करियर की रुख में थोड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने माइकल पेज और नेटिव नामक एक एचआर कंपनी में काम किया। इस दौरान उनके व्यक्तिगत जीवन में भी काफी उथल पुथल रही। पहली पत्नी से तलाक हो जाने के बाद उन्होंने नेटिव की सहकर्मी से दूसरा विवाह किया। वर्ष 2021 में जब उन्होंने स्क्रैम्बल की शुरुआत की तो निवेशकों की रुचि कम होने के कारण उनकी पत्नी के घर वालों ने शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराई और पहले ही वर्ष में कंपनी ने 4.25 करोड़ का कारोबार कर डाला, जो दूसरे साल में दोगुना हो गया और तीसरे साल तक पहुंचते पहुंचते तो वो 15 करोड़ का पहुंच चुका था। फिलहाल उनकी टीम में 56 कर्मचारी हैं। कंपनी ने अब तक 1000 से ज्यादा ग्राहक कंपनियों के साथ काम किया है। स्क्रैम्बल ने मात्र 3 साल में ही 15 करोड़ का राजस्व दर्ज किया। ये व्यावसायिक विकास उनके व्यवसाय मॉडल की प्रभावशीलता और उनकी टीम के समर्पण को रेखांकित करता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित करके ग्राहक कंपनियों के साथ मजबूत संबंध बनाकर स्क्रैम्बल ने खुद को रोजगार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों, मिलवाते हैं पश्ताना दुर्रानी से, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बीते हुए कुछ दिनों पहले कातार की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान के भविष्य पर एक सम्मेलन हुआ था। इस जलसे को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने काबुल के निजाम से जब ये कहा कि अपने देश में लड़कियों की तालीम और महिलाओं की नौकरी करने पर उसने जो अपमानजनक पाबंदी लगा रखी है उसे वो फौरन वापस ले और स्कूल की कक्षाओं से लेकर उन तमाम ओहदों पर औरतों की भागीदारी सुनिश्चित करें जहां से निर्णायक फैसले होते हैं, तो पश्ताना दुर्रानी की मुहिम की याद हो आई। अपनी जान पर खेलकर वो अफगान लड़कियों तक ज्ञान की रोशनी बिखेर रही हैं। अफगानिस्तान के कांधार इलाके के जलमई दुर्रानी एक तरक्की पसंद कबायली नेता थे, जो लड़कियों की तालीम की बढ़ चढ़कर हिमायत करते थे। जाहिर है, कट्टर पंथियों को उनकी ये बात ठीक नहीं लगती थी। उन्हें कई बार खामोश रहने को कहा गया, लेकिन जलमई दुर्रानी लगातार मुखर रहे, बोलते रहे। ऐसे में जब मुल्क गृह युद्ध में चल रहा हो और लंबा खींचा ही जा रहा हो और कांधार इलाके पर तालिबान का पूरा नियंत्रण हो गया हो, तो दुर्रानी परिवार के सदस्यों के पास देश छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। वो भागकर पाकिस्तान जा पहुंचे, जहां क्वेटा में उन सबको शरण मिली। करीब 27 साल पहले क्वेटा के ही एक शरणार्थी शिविर में पश्ताना का जन्म हुआ। उनके पिता अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह की जगहों में इन खानाबदोश जिंदगियों को अब इज्जत का मुकाम सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही मिल सकता है। लिहाजा उन्होंने अपनी नई नस्लों की शिक्षा को लेकर वो पहले से कहीं ज्यादा संजीदा हो उठे। उन्होंने अपने अस्थाई घर को स्कूल में बदल दिया और अपनी पत्नी और परिवार की दूसरी पढ़ी लिखी औरतों को उन शिविरों की बच्चियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अब इसी तरह के माहौल में पश्ताना पली बढ़ी। होश संभाला तो उन्होंने देखा कि उनकी मां और चाची किस तरह हमसाया घरों के लोगों को कायल किया करती कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेज दें। पश्ताना ने पाकिस्तान में ही हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनकी दिली तमन्ना थी कि आगे की तालीम वो अपने मुल्क की ही किसी यूनिवर्सिटी से करें। तब तक अफगानिस्तान में निजाम भी बदल चुके थे और चारों तरफ इस बदलाव की चर्चा भी थी। कई औरतें न सिर्फ सरकारी मुलाजमत और सियासत में लौट आई थीं, बल्कि अपना कारोबार भी चलाने लगी थीं। साल 2013 की बात है, दुर्रानी परिवार ने वतन वापसी का फैसला लिया। पश्ताना तब सिर्फ 16 साल की थी। अपने पुरखों की माटी को चूमने की खुशी ही अनूठी होती है। पूरा दुर्रानी खानदान बहुत खुश था, लेकिन कंधार लौटने की पहली ही रात जिस सच से पश्ताना का सामना हुआ, उसने उनकी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। खानदान की लड़कियां जब मिली तो उन पर यह हकीकत खुली कि उनके पूरे जिले में, जहां 400 से भी ज्यादा परिवार रहते हैं, एक भी लड़कियों का स्कूल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास भी हुआ कि लड़कियों की पढ़ाई तो सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। एक दिन खानदान की ही एक छोटी बहन आई और हसरत भरी निगाहों से पश्ताना को देखते हुए कहने लगी, बाजी, मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूं। पश्ताना शिक्षित थी, उनके पास अपना लैपटॉप था। वो कॉन्फ्रेंस के लिए काबुल जाया करती और सबसे बढ़कर उन्हें पिता का पूरा साथ हासिल था। एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जब पश्ताना काबुल जा रही थी, तब उसी बहन ने हुकूमत के नाम एक खत दिया जिसमें ये करुण गुजारिश थी कि उनके जिले में एक लड़कियों का स्कूल खोला जाए ताकि वो भी पढ़ सके। सरकार की तरफ से ना कोई जवाब आना था ना आया, लेकिन पश्ताना उस हसरत के आगे पसीज उठी। आखिरकार
उन्होंने उस बच्ची के पाठ्यक्रम की सामग्री और सहायक वीडियोस इंटरनेट से डाउनलोड किए और उसे पढ़ाना शुरू किया। बच्ची इस लगन से पढ़ती रही कि जल्द ही वो मोड़ आया जब उसे कंधार शहर के सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया। इस घटना ने पश्ताना को प्रेरित किया कि उन सभी तमाम लड़कियों को वो डिजिटली पढ़ा सकती हैं जिनकी पहुंच में कोई स्कूल नहीं। इसी नेक इरादे से उन्होंने साल 2018 में लर्न अफगानिस्तान के नाम से एक निशुल्क ऑनलाइन स्कूल खोल दिया, अफगानिस्तान का पहला डिजिटल स्कूल नेटवर्क। इसके जरिए वो अब तक कंधार के 7,000 से ज्यादा लड़के लड़कियों को शिक्षित कर चुकी हैं और 80 शिक्षकों को भी डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। मगर पश्ताना का ये काम कभी निरापद नहीं रहा, क्योंकि कंधार से तालिबान कभी खत्म ही नहीं हुए थे। और फिर जब वो 21 साल की थीं, उनके पिता का इंतकाल हो गया, सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर आ गईं। साल 2021 में तालिबान फिर से सत्ता में आ गया और तब स्थानीय सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बताया कि उनका कत्ल किया जा सकता है। पश्ताना ने अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला ले लिया और वो चली गई। इन दिनों वो वहीं से अपने मिशन में जुटी हैं। साल 2021 में बीबीसी की तरह प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स ने भी उन्हें 100 प्रभावशाली लोगों में गिना है। औरतों को अपने हक हुकूक के लिए हमेशा ही भारी संघर्ष करना पड़ता है। आज से 125 साल पहले भारत में सावित्री भाई फूले के साथ भी तो क्या क्या हुआ, यह हमारे इतिहास का हिस्सा है। मगर उन्होंने उस वक्त हमारे देश में स्त्री शिक्षा की जो ज्योत जलाई, उसे आज तक पूरा हिंदुस्तान रोशन है। उम्मीद है अफगानिस्तान की आने वाली नस्लें भी पश्ताना दुर्रानी को उसी अदब से याद करेंगी। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था एक राज्य में, जैसे हमेशा होते हैं। उसका एक मंत्री था जो कि बड़ा समझदार था और नाम भी उसका था बुद्धिमान। ज्यादातर मंत्री इस तरह की कहानियों में समझदार ही होते हैं ना दोस्तों। तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि भाई जरा ये बात बताओ, ये भेड़िया धसान का मतलब क्या होता है। मंत्री थोड़ी देर तक तो सोचता रहा और फिर कहा, हुजूर मुझे 2 दिन का मोहलत मिले तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा आपको। राजा ने 2 दिन की मोहलत दे दी। मंत्री जो थे वो सुबह सुबह अगले दिन उठे, नहा धोकर तिलक लगाया और गांव के बाहर तालाब के किनारे चले गए। वहां कई सारे खच्चर घास खा रहे थे। मंत्री ने उनमें से एक की 3 बार प्रदक्षिणा की, यानी कि चक्कर लगाया, और उसका एक बाल नोच कर अपने कान पर रख लिया। तालाब के किनारे कुछ लोग जमा हो गए। एक ने पूछा, मंत्री महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? तब मंत्री ने कहा, देखो जी ये खच्चर काशी जी की यात्रा करके आया है। पहले जन्म में कोई ऋषि मुनि रहा होगा, ये देखते नहीं इसकी आंखों में कैसी भक्ति टपक रही है। मंत्री ने जवाब दिया, बस फिर क्या था, एक एक करके सब लोग उसकी चक्कर लगाने लगे, प्रदक्षिणा करने लगे और उसका एक एक बाल नोच कर कानों पर लगाने लगे। गांव भर में सनसनी फैल गई। सभी लोग वही करने लगे जो मंत्री ने किया था। थोड़ी ही देर में उस खच्चर के सारे बाल नुच गए। वो बेचारा लहू लुहान हो गया और तड़पने लगा। इतने में राजा को भी ये खबर लग गई। वो भी वहां आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भी खच्चर की 3 बार प्रदक्षिणा की, चक्कर लगाया और खोज ढूंढ कर एक बाल नोच लिया। बेचारा खच्चर मौत का मेहमान हो गया। इतने में खच्चर वाला आ गया दौड़ता हुआ और खच्चर को मरा पड़ा देखकर हाय तौबा मचाने लगा। वो राजा के पास अपनी शिकायत ले आया, दुहाई हो सरकार की, दुहाई हो, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूं, बड़ा गरीब हूं, किसी तरह इस खच्चर पर माल लादकर और उसके किराए के पैसों से पेट पालता था, अब खच्चर तो मर गया, अब इसका दाम कौन देगा। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, भाई क्या हो गया, ये क्या करें अब इसका। मंत्री ने कहा, महाराज आप भेड़िया धसान का मतलब जानना चाहते थे ना, देखिए यही है भेड़िया धसान, जो मैंने कर दिया सब आंख मूंद कर उसी को करने लग पड़े। अब तो आपने अपनी आंखों से देखा ना, कहिए समझ में आया भेड़िया धसान का मतलब। राजा मंत्री की बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और बहुत शर्मिंदा भी हुआ। उसने खच्चर वाले को खच्चर का दाम दिया और रवाना किया। तो दोस्तों खामखा में किसी एक चीज को बिना समझे पीछे पीछे मत जाइए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

दोस्तों, किसी भी काम को करने का कोई एक तरीका नहीं होता। कई तरीके हो सकते हैं, घर सजाने का, खाना बनाने का, या कोई सामान बेचने का। कोई एक सबसे बढ़िया तरीका नहीं है, बहुत तरीके हो सकते हैं। आप जितने ज्यादा रचनात्मक होंगे, क्रिएटिव होंगे, उतने तरीके आपके पास होंगे। हम अपने दिमाग को बंद रखेंगे तो नए विचार कहां से आएंगे उसमें। तो बड़े बूढ़े कहते भी है ना, अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखो। रचनात्मक सोच की सबसे बड़ी दुश्मन है पारंपरिक सोच। यानी कि अगर हम क्रिएटिव सोचना चाहते हैं, कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं, कुछ अलग हटके सोचना चाहते हैं, तो हमारी पुरानी सोच उसको रोकती है, हमें सोचने नहीं देती। इसलिए कई बार पुरानी सोच को हमें छोड़ना होगा। नए विचारों का स्वागत कीजिए, उनसे नफरत ना कीजिए। प्रयोगशील बनिए, यानी कि कुछ नया करके देखिए तो सही, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल ही तो होंगे। और फेल हमेशा पास होने की पहली सीढ़ी होती है। याद कीजिए ना, बच्चा जब चलना शुरू करता है तो पहली बार वो गिरता है, फेल होता है, तब वो खड़ा होता है। हर काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप कितनी ही सुंदर कृति बना लें, उसमें कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तीन नियम जिंदगी को खूबसूरती से जीने के। नियम नंबर एक, आपका अपना दुख, दर्द या तकलीफ उतनी ही सच्ची है जितनी दूसरों की। हो सकता है कि कोई एक चीज किसी दूसरे के लिए आसान हो, लेकिन इससे आपका दर्द कम नहीं हो जाता। अपने दर्द के बारे में बात करना, उसको ठीक करना आपका हक है। आपका दर्द मायने रखता है, आपका अनुभव मायने रखता है, आपका उबर कर आगे बढ़ना भी जायज है। नियम नंबर दो, कोई एक दिन ऐसा होता है जब दिक्कतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, होता है ना ऐसा। मुश्किल समय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है छोड़ना। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। शांति की सांस लेते हुए हम अपने भीतर के गुबार को छोड़ने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। हम छोड़ दें उस विचार को जो भीतर अवसाद भरे जा रहा है। जाने देना यानी जो हुआ उसे मानते हुए आगे बढ़ जाना, भले ही उसके लिए मुश्किल फैसले लेने पड़े, लेकिन उसे छोड़ना ही होगा। नियम नंबर तीन, जिंदगी के संघर्ष समझ नहीं आते, लेकिन उसके मायने होते तो हैं। जब कभी हम अपने बीते कठिन दिनों को देखते हैं, उस वक्त ये समझ में आता है कि उनके कारण ही हम आज यहां तक पहुंच पाए हैं। तब हम अपने संघर्षों को सलाम करते हैं। चुनौतियां केवल तोड़ती नहीं है, हमें मजबूत भी बनाती हैं। निरंतर किए गए प्रयास और संघर्ष से ही ताकत और तरक्की मिलती तो है। फिर मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: आइए दोस्तों, इस स्नेह की एक लघु कथा सुनाता हूं। एक छोटी सी कहानी जो सुकेश साहनी साहब ने लिखी है, धुएं की दीवार। बंटवारे से पहले इन दोनों भाइयों अमीचंद और दुलीचंद में बहुत प्यार था, उनके परिवार में भी। आज बंटवारे के बाद जब उनके मकान के बीच में एक दीवार खींच दी गई, तब अमीचंद शीशे के सामने खड़ा होकर पगड़ी बांध रहा था। बंटवारे के बाद वो पहली बार बाजार जा रहा था, लेकिन उसके मन में कोई उत्साह नहीं था। पहले हर महीने वो बेले वाला के हाट में बाजार में जाकर सबके लिए जरूरी सामान लाया करता था। दुलीचंद और उसके बच्चों के लिए भी लाता था। उसने खिड़की के बाहर एक उदास सी निगाह डाली। अपने मकान की दो हिस्सों में बांटती हुई दीवार उसके दिल को चीरती चली गई। बंटवारे वाले दिन से उसके और छोटे भाई दुलीचंद के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद थी। बाहर दुलीचंद श्यामा गाय को दोहने की तैयारी कर रहा था। बंटवारे में गाय उसके हिस्से में आई थी। अभी अमीचंद की नजर अपनी बेटी पर पड़ गई। वो हाथ में बड़ा सा गिलास लिए चुपके से अपने चाचा की ओर बढ़ रही थी। वो चिल्लाकर बेटी को रोकना चाहता था, लेकिन आवाज गले में फंस गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दुलीचंद ने मुस्कुराकर अपनी भतीजी की तरफ देखा। जवाब में वो भी धीरे से हंस दी। दुलीचंद ने उसके हाथ से गिलास ले लिया और झटपट उसमें दूध डाल दिया। अमीचंद एक टक इस दृश्य को देख रहा था। ठीक उसी समय दुलीचंद की पत्नी भी घर से निकली। अब अमीचंद को पूरा विश्वास हो गया कि बहू उसकी बेटी के हाथ से दूध भरा गिलास छीनकर फेंक देगी और न जाने क्या क्या बकेगी। बंटवारे के समय भी उसने बहुत झगड़ा किया था। अमीचंद लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि बहू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, और कहीं पति दुलीचंद उसे देख ना ले, वो डर से तुरंत भीतर भाग गई। अमीचंद की बेटी ने एक सांस में ही दूध का गिलास खाली कर दिया और वापस घर की ओर दौड़ पड़ी। अमीचंद की आंखें भर आईं। उसको लगा घर के बीच की दीवार गायब हो गई। अमीचंद घर से बाहर आया और अड़ोस पड़ोस को सुनाता हुआ ऊंची आवाज में बोला, ओए दुल्ली, मैं बेले गांव जा रहा हूं बाजार, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम सबके लिए सामान ले आऊंगा।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

लीजिए दोस्तों, एक और बढ़िया सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की शर्त ये थी कि जो भी 20 तक की गिनती सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा। गिनती लेकिन ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए। जो ये गिनती नहीं सुना सकेगा उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। ये शर्त केवल राजाओं के लिए थी। अब एक तरफ राजकुमारी का वरण और दूसरी तरफ कोड़े। एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत का आयोजन भी किया था, मिठाई और अलग अलग तरह के पकवान भी बनाए थे। पहले सभी दावत का आनंद लेते थे, फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता था। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं, सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिसमें राजकुमारी संतुष्ट हो जाए। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए इस चक्कर में। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती ही होती है, ये राजकुमारी तो पागल हो गई है, ये केवल हमको सबको पिटवाने का मजा लूटना चाहती है और कुछ नहीं। ये नजारा देखकर एक हलवाई हंसने लग गया। उसने कहा, अरे डूब मरो राजाओं, आप सबको 20 तक की गिनती तक नहीं आती। अब ये सुनकर सभी राजा उसे दंड देने के लिए कहने लगे। और राजा ने उससे पूछा, अच्छा जी, क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुना दो। हलवाई बोला, राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? क्योंकि मैं तो आप लोगों के बराबर नहीं हूं, और स्वयंवर में तो सिर्फ राजाओं को ही बुलाया गया है, तो गिनती सुनाने से मुझे क्या फायदा? पास खड़ी हुई राजकुमारी बोल पड़ी, अच्छा जी, चलो ठीक है, अगर तुमने गिनती सुना दी तो मैं तुमसे शादी करूंगी, और अगर नहीं सुना पाए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, कोड़े नहीं। सब ये देखते ही रह गए कि आज तो हलवाई की मौत तय है। हलवाई को गिनती बोलने के लिए कह दिया गया। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई ने गिनती शुरू की। दोस्तों गौर कीजिएगा, अब यहां एक भगवान, दो पक्ष, तीन लोक, चार युग, पांच पांडव, छह शास्त्र, सात वार, आठ खंड, नौ ग्रह, दस दिशाएं, ग्यारह रुद्र, बारह महीने, तेरह रत्न, चौदह विद्याएं, पंद्रह तिथि, सोलह श्राद्ध, सत्रह वनस्पति, अठारह पुराण, उन्नीसवीं तुम और बीसवां मैं। सब लोग हक्के पक्के रह गए। राजकुमारी ने हलवाई से शादी की। दोस्तों इस गिनती में संसार की सारी वस्तुएं मौजूद हैं। यहां शिक्षा से बड़ा तजर्बा निकला। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लेके आई हूँ मैं बातें इधर की उधर की, और एक और नया सवाल आप सबके लिए। एक बात बताइए, आपके फोन की गैलरी में लगभग कितनी फोटोज होंगी? 500, 5000, या स्टोरेज फुल वाला जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आ चुका है? हम रोज कितनी तस्वीरें खींचते हैं, कॉफी की, सनसेट की, पेड़ की, सेल्फीज, पेट्स की, और फिर उनमें से आधी फोटोज कभी दोबारा नहीं देखते। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ एक फोटो, सिर्फ एक क्लिक पूरी दुनिया का इतिहास बदल दे। तो आज की कहानी ऐसी ही एक तस्वीर की है, और उस फोटोग्राफर की है जिसका नाम दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन उसकी खींची हुई फोटो वो लगभग हर इंसान ने कभी ना कभी जरूर देखी होगी। उस फोटोग्राफर का नाम है अल्बर्टो कोडा। जी हाँ, अल्बर्टो कोडा। चलिए कैलेंडर को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 5 मार्च 1960, जगह हवाना, क्यूबा। एक मेमोरियल सेरेमनी चल रही थी, लोग एक शिप ब्लास्ट में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। कोडा वहां न्यूज़पेपर के लिए कवरेज के लिए गए थे, उनके हाथ में कैमरा था और आंखें भीड़ पर थीं। तभी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए एक आदमी भीड़ के बीच से सामने आता है, ना कोई स्पीच, ना पोज, ना स्माइल, बस एक चेहरा, तेज आंखें, दूर कहीं देखती हुई बाघ जैसी। कोडा ने बिना सोचे दो फोटोग्राफ्स खींच लिए, क्लिक क्लिक, और वो आदमी उतनी ही तेजी से भीड़ में गायब हो गया। उस आदमी का नाम था शेगुआरा। जी हाँ, शेगुआरा। अब जरा सोचिए, फोटोग्राफर ने फोटो खींच ली, एडिटर ने उसे न्यूज़पेपर में खास जगह नहीं दी, ना कोई अवार्ड मिला, ना किसी ने कहा वाह क्या मास्टरपीस है। कभी कभी हिस्ट्री भी पहले तो इग्नोर ही करती है दोस्तों, बाद में जाके कहीं सल्यूट मिलता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। सालों तक वो फोटो लगभग किसी को याद नहीं थी, शायद अल्बर्टो को खुद भी नहीं। फिर 1967 में शेगुआरा की बोलिविया में मौत हो गई, और उसके बाद एक इटालियन पब्लिशर ने वही फोटो दुनिया भर में छपवा दी। बस फिर क्या था, पोस्टर्स, बुक्स, फ्लैग्स, वॉल्स, कॉलेज हॉस्टल्स, प्रोटेस्ट मार्चेस, टी शर्ट्स, कैफे वॉल्स, म्यूजिक एल्बम्स, हर जगह एक ही चेहरा। और धीरे धीरे वो सिर्फ एक आदमी की फोटो नहीं रही, एक सिंबल बन गया, किसी के लिए रेवोल्यूशन, किसी के लिए रिबेलियन, किसी के लिए फ्रीडम, और किसी के लिए एक स्टाइलिश टी शर्ट डिजाइन। देखिए, ये जरूरी नहीं होता कि इंसान शेगुआरा के विचारों से सहमत हो या नहीं, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर सिंबल को लोग एक ही नजरिए से देखें, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि एक तस्वीर ने दुनिया के विजुअल कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अल्बर्टो कोडा ने इस फोटो से करोड़ कमाने की रेस नहीं लगाई। वो चाहते तो क्या नहीं कमा सकते थे। उनका मानना था अगर ये तस्वीर लोगों को किसी सोच तक पहुंचाती है तो इसका असली काम वही है, असली पर्पस वही है। हाँ, बाद में जब इस इमेज का कमर्शियल मिसयूज हुआ तब उन्होंने कुछ जगह विरोध जरूर किया, लेकिन उनकी सोच बहुत क्लियर थी, बहुत साफ थी। तस्वीर सिर्फ बेचने की चीज नहीं, कभी कभी वो एक विचारधारा होती है। वैसे एक बात बताइए, आज हम फोटो कब लेते हैं? जब खाना खाएं तब, जब ट्रैवल करें तब, जब नए कपड़े पहने तब, और सेल्फी लेने से पहले कैमरे से ज्यादा तो फिल्टर चूज करने में चला जाता है। और ग्रुप फोटो में आप जानते हैं आपका सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है, जानते हैं कि नहीं? अरे डिलीट करो, मेरी आंख बंद हो गई, मेरा मुंह खुला रह गया, मेरे बाल अच्छे नहीं आए, मैं तो कट ही गई, ऐसी टेंशन होती है ना। नहीं नहीं एक और बड़ी टेंशन होती है, इस बार कैंडिड। आजकल तो कैंडिड भी प्लानिंग से होती है, फुल प्लानिंग से। लेकिन पुराने फोटोग्राफर्स का काम कुछ और ही था, उनके पास अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं था। हर क्लिक की एक कीमत होती थी, फिल्म लिमिटेड होती थी, गलती की गुंजाइश कम थी। इसलिए वो पहले देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, समझते थे और फिर शटर दबाते थे। आज हम पहले क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक करते हैं और बाद में देखते हैं, और शायद कभी बाद में कुछ तो देखते भी नहीं। कुछ पिक्चर्स के तो नसीब में वापस कभी खुलना भी नहीं होता। फोटोग्राफी सिर्फ इमेज बनाना नहीं है, फोटोग्राफी एक ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारा पेशेंस है, सही टाइमिंग है और कभी कभी किस्मत भी है। क्योंकि वो एक सेकेंड, वो स्प्लिट सेकेंड अगर निकल जाए तो जिंदगी भर वापस नहीं आता। इसी कहानी का एक और खूबसूरत पहलू है, कोडा को उस दिन बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका वो छोटा सा क्लिक हिस्ट्री बुक्स तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जिंदगी के छोटे पल एक चाय की तपली, पापा के साथ स्कूटर राइड, माँ का कहना, खाना खा लिया, दोस्तों के साथ बिना वजह की हंसी, उस वक्त आम लगते हैं, जब गुजर रहे होते हैं कुछ पता ही नहीं होता। बाद में वही यादें, वही पल सबसे ज्यादा खास बन जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं, लेकिन कौन जाने आपका एक अच्छा शब्द, एक मदद, एक मुस्कान या एक फोटो किसी और की जिंदगी में कितनी बड़ी जगह बना दे। इसीलिए हर दिन को हल्का मत समझिए, हर मुलाकात को आम मत समझिए, हर क्लिक को सिर्फ फोटो मत समझिए, क्योंकि कभी कभी एक सेकेंड ही सदियों तक याद रहता है। दोस्तों आज घर जाके अपनी गैलरी जरूर देखिएगा, हो सकता है आपकी सबसे कीमती फोटो वो हो ही ना जिसमें आप सबसे परफेक्ट दिख रहे हैं, बल्कि वो हो जिसमें किसी की हंसी असली हो, किसी के आंसू प्यार हो, किसी के पल सच्चाई हो। इसी सोच के साथ मैं हूं आपकी तनुषा, आपकी तरानों की हमसफर, फिर मिलेंगे बातें इधर की उधर की में एक और कहानी के साथ, जहां सिर्फ बातें इधर की उधर की नहीं होती, दिल से दिल तक पहुंचती हैं। मुस्कुराइए, यादें बनाइए और जिंदगी को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं महसूस कीजिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: देखो भैया, फेसबुक का मतलब है जो फेस पसंद हो उसे तुरंत बुक कर दो। What?

कोई इंसान बिना क्लासिकल म्यूजिक सीखे इंडियन म्यूजिक के सबसे बड़े लेजेंड्स में शामिल हो सकता है? सुन के अजीब लगता है ना, बट अगर मैं कहूं कि ऐसे एक सिंगर थे जिन्होंने खुद ही कहा था, मुझे सारे गामा पा धा नी सा इन सब का ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैंने कभी क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन वही आदमी आज भी हर मूड का एक साउंडट्रैक है। खुशी हो, दिल टूट गया हो, रोड ट्रिप हो या बाथरूम सिंगिंग कंपटीशन हो, एक नाम है जो हर जगह फिट बैठता है और हम सब जानते हैं उस नाम को, हम सब गुनगुनाते हैं उस नाम को। बताइए, गुनगुनाते हैं कि नहीं? जी हाँ, किशोर कुमार, हमारे अपने किशोरदा। आज की बात सिर्फ उनकी आवाज की नहीं, उनके कमाल के म्यूजिक सेंस की है। दोस्तों, किशोर कुमार एक ऐसे कलाकार थे जो किसी सिलेबस से नहीं निकले थे, ना उन्होंने किसी म्यूजिक एकेडमी की डिग्री ली थी, ना रागों पर कोई लेक्चर्स दिए थे, लेकिन जब गाना गाते थे तो लगता था सुर उनके पीछे पीछे चल पड़े हैं। वैसे घर का माहौल भी कुछ कम म्यूजिकल नहीं था। बड़े भाई अशोक कुमार, अनूप कुमार और खुद किशोरदा। लेकिन किशोर कुमार का असली स्कूल क्या था आप जानते हैं? उनका असली स्कूल था जिंदगी। जी हाँ, जिंदगी। रेल की सीटी, पंछियों की आवाज और दिल के इमोशंस। एक बार लता मंगेशकर जी ने इंटरव्यू में उनसे पूछा, आपने क्लासिकल म्यूजिक सीखा है? किशोरदा मुस्कुरा कर बोल उठे, मुझे तो सारे गामा भी ठीक से नहीं आता। अब कोई और होता तो लोग कहते, अच्छा इसीलिए सुर कभी कभी हिल जाते होंगे, लेकिन किशोरदा के सुर, नहीं नहीं, किशोरदा के सुर कभी नहीं हिले। लोगों के दिल हिल जाते थे बट उनके सुर इधर से उधर नहीं हुए। म्यूजिक एक्सपर्ट्स की सुने तो वो कहते हैं कि किशोरदा ने कुछ गाने ऐसे गाए और कंपोज किए जो इंडियन रागों पे बेस्ड थे, और सिर्फ गाए ही नहीं, उनमें अपनी मस्ती भी डाल दी। जैसे झुमरू, याद है झुम झुम झुम झुम झुमरू? उसमें तो वो एक चाइनीज कैरेक्टर बने थे। अब अगर कोई आम कंपोजर होता तो शायद चाइनीज म्यूजिक की कॉपी कर देता, लेकिन किशोर कुमार ने क्या किया, उन्होंने इंडियन क्लासिकल के राग मलकोस का सहारा लिया। मलकोस एक ऐसा राग जो जनरली शांत, गहरा और रात के समय गाया जाता है, लेकिन किशोरदा ने उसी राग को कॉमेडी, मस्ती, डांस और एंटरटेनमेंट में बदल दिया। सोचिए, कोई आदमी पालक पनीर की रेसिपी से चॉकलेट केक बना दे और वो भी इतना टेस्टी। बस वही काम किशोर कुमार ने म्यूजिक में कर दिया। यही तो जीनियस होता है। रूल्स याद करना अलग बात है और रूल्स को महसूस करना अलग। किशोर कुमार को ग्रामर शायद नहीं पता थी, लेकिन लेकिन लेकिन उनकी लैंग्वेज, उनकी म्यूजिकल लैंग्वेज का जवाब नहीं था, वो सीधा दिल से आती थी। कई म्यूजिक लवर्स मानते हैं कि उन्होंने कीरवानी, दरबारी कन्नडा, पुरिया धनाश्री, इन सभी रागों की भावना को बहुत खूबसूरती से अपने गानों में उतारा है। हो सकता है उन्होंने कभी उन रागों का टेक्निकल नाम नहीं सोचा हो या सुना हो, लेकिन उनका एहसास बिल्कुल सही पकड़ा, और शायद इसीलिए उनके गाने किताबी नहीं, इंसानी लगते हैं। एक और बात नोटिस की है आपने, किशोर कुमार सिर्फ गाते नहीं थे, वो आवाज से एक्टिंग करते थे। कभी हंसी, कभी शरारत, कभी आंसू, कभी बचपना, एक ही गाने में इतने इमोशंस भर देते थे कि लगता था फिल्म आंखों के सामने चल रही है।
जिस एक्टर के लिए प्लेबैक देते थे लगता था वही एक्टर गाना गा रहा है। आई थिंक ये कमाल सिर्फ किशोर दा के पास था, और ऐसा था कि मानो उन्होंने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री बदल दी, म्यूजिक की ग्रामर चेंज करके रख दी। इसलिए उनके गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, जिए जाते हैं, जिंदा हैं। और दोस्तों, कभी कभी हम अपनी जिंदगी में यही गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं पहले परफेक्ट बनूंगा, फिर शुरू करूंगा, पहले कोर्स करूंगा, फिर सर्टिफिकेट लूंगा, तब जाके कुछ करूंगा। लेकिन किशोर कुमार की कहानी एक और बात सिखाती है। नॉलेज जरूरी है, बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ टेक्निक से कला पैदा नहीं होती। कला पैदा करने के लिए दिल चाहिए, धड़कता हुआ दिल, जो हमारे किशोर दा के पास बहुत खूबसूरती से था। एहसास चाहिए जो भर भर के थे, और अपनी एक असली पहचान चाहिए जो खुदा ने उन्हें बहुत खूबसूरती से नवाजी थी। जी हाँ, हमारे किशोर दा, उनका नाम लेते ही एक स्माइल आ जाती है मुंह पे, आती है कि नहीं? वैसे एक और छोटा सा सवाल, अगर आज किशोर कुमार सोशल मीडिया के जमाने में होते और किसी रियलिटी शो में उनका ऑडिशन होता तो क्या बोलते? अगर वो बोलते कि मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली तो जज क्या कहते? सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम। या फिर पहला गाना सुनते ही खड़े होकर तालियां बजाते, स्टैंडिंग ओवेशंस देते? सोचिएगा जरूर। और जाते जाते, किशोर कुमार की जिंदगी हमें एक और बहुत खूबसूरत बात सिखाती है। हर टैलेंट सर्टिफिकेट लेकर नहीं आता, हर आर्टिस्ट क्लासरूम से नहीं निकलता। कुछ लोगों का टीचर उनका दिल होता है, उनका जीवन होता है, और जब दिल सुर पकड़ लेता है, जीवन ताने पकड़ लेती हैं, तो दुनिया उसे लेजेंड कहती है। दोस्तों, आज घर जाकर एक काम जरूर कीजिएगा, किशोर कुमार का अपना फेवरेट गाना लगाइए और उसे सिर्फ सुनिए मत, उसे महसूस कीजिए। हो सकता है आपको भी उसमें एक ऐसा एहसास मिल जाए जिसकी किसी किताब में रचना नहीं है, बट वो आपके दिल से इतना करीब है कि आप खुद नहीं समझ पाते कि क्या कनेक्शन है और कितना गहरा कनेक्शन है। इन्हीं को एहसास कहते हैं, इन्हीं को जज्बात कहते हैं, इसी को दिल कहते हैं और इसी को आर्ट कहते हैं। इसी मोड़ पे मैं हूं आपकी तनुषा, इजाजत चाहती हूं आपसे, कल फिर मिलूंगी। मेरा वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा, मुझसे प्यार करते रहिए, मुझे सुनते रहिए, और बातें इधर की उधर की में मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। याद रखिए, सुर सीखे जा सकते हैं, लेकिन एहसास सिर्फ जिए जाते हैं। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने कहा, ए सुनो बेटा, कॉपी छुपा लो, पीछे वाला देख रहा है। तो जप्पू बोला, देख लेने दीजिए सर, मैं अकेले फेल थोड़ा ही होना चाहता हूँ।

0: सागर किनारे।
1: दोस्तों, आप सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, ये लगा होगा कि बस अब सब खत्म, जॉब चली गई, रिश्ता टूट गया, किसी अपने ने साथ छोड़ दिया, या फिर जिस चीज के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था वो मिल ही नहीं रही, वो मुझसे दूर जाती जा रही है। उस वक्त आपको कैसा लगेगा या कैसा लगता है, जैसे पूरी दुनिया ने एक पॉज बटन दबा दिया हो। सब आसपास चल रहे हैं, सब भाग रहे हैं, बस एक आप ही का जीवन है जो पॉज हो गया है, रुक गया है। लेकिन सच बताऊं, जिंदगी के रिमोट में पॉज होता ही नहीं है, सिर्फ प्ले और फास्ट फॉरवर्ड होता है। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई दरवाजा जरूर बंद होता है, वो दरवाजा जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, और जैसे ही वो बंद होता है हम उसके सामने कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं, बस उसी को देखते रहते हैं। ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब मेरा क्या होगा, और देखते रहते हैं, और इतना देखते हैं कि पीछे जो तीन नए दरवाजे खुल रहे होते हैं उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती।

हम तक पहुंचती ही नहीं। एक बार सोचिए, अगर ट्रेन का एक स्टेशन निकल जाए तो क्या ट्रेन वहीं रुक जाती है? नहीं ना, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। अगला स्टेशन आता है, बस वैसे ही हम भी हैं। हमारी जिंदगी की जो ट्रेन है उसमें बैठकर हम पुराने स्टेशन का टिकट संभाल कर रोते क्यों रहते हैं? एक बात नोटिस की है आपने? शायद नहीं की होगी, अब करना। जब हम दुखी होते हैं ना, तो हम अपनी जिंदगी जीना बिल्कुल बंद कर देते हैं। एक्सरसाइज कल से, वॉक परसों से, अलमारी साफ अरे नेक्स्ट वीक पक्का, इस वीकेंड तो पक्का। पुराने दोस्त को फोन, यार देखेंगे बाद में, अभी मूड नहीं है। पेंटिंग करनी थी, नहीं मूड नहीं है। गिटार सीखना था, वो बुक पढ़नी थी, सब लिस्ट में ही रह जाता है, धरा का धरा। और लिस्ट इतनी लंबी होती जाती है कि जिंदगी छोटी पड़ती जाती है। मुझे लगता है इंसान के घर में सबसे भीड़ दो जगह होती है, एक अलमारी और दूसरी कल करेंगे वाली लिस्ट। होती है कि नहीं? अलमारी में 2018 की वो जीन्स अब भी पड़ी है, जिसको देख के हम सोचते हैं कि इस साल जरूर पतले होके इसमें घुस जाएंगे, बट वो घुसने की उम्मीद हमने अभी तक नहीं छोड़ी। और फोन गैलरी में वो 14,000 फोटोज, जिनमें से आधी तो ब्लर होती हैं, लेकिन डिलीट नहीं, नहीं कभी काम आ जाए तो। बिल्कुल वैसे ही हम पुरानी तकलीफों को भी डिलीट नहीं कर पाते, उनसे चिपक के बस बैठ जाते हैं या बैठ जाना चाहते हैं। कभी कभी लगता है लाइफ भी व्हाट्सएप जैसी होनी चाहिए, जो चैट जरूरी नहीं आर्काइव कर दो। डिलीट मत करो भाई, पर रोज देखना भी जरूरी नहीं है, आर्काइव का पर्पस ही है। दोस्तों, हर मुश्किल के बीच में हमें खाली वक्त मिलता है, और वही वक्त सबसे कीमती होता है, क्योंकि वही वक्त है जो आपको दोबारा बना सकता है। सोचिए, जॉब नहीं है, शायद इसीलिए पहली बार सुबह बिना अलार्म के चाय पी सकते हैं। रिश्ता खत्म हो गया तो शायद खुद से रिलेशनशिप शुरू करने का इससे बेहतर वक्त नहीं मिलेगा। वो प्रमोशन नहीं मिला, फलाने को मिल गया, तो शायद कोई नई स्किल सीखने का यही मौका मिल गया आपको। एक छोटी सी कहानी और सुनाती हूं। एक किसान था, उसका घोड़ा भाग गया। गांव वाले बोले, बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ। किसान बोला, देखते हैं। दो दिन बाद घोड़ा वापस आया और साथ में 3 जंगली घोड़े भी लेकर आया। गांव वाले बोले, वाह कितनी अच्छी बात है यार, ये तो वाह वाह। किसान बोला, देखते हैं। उसका बेटा उन घोड़ों को संभालते हुए गिर गया, पैर टूट गया। सब बोले, उफ ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। किसान बोला, देखते हैं। कुछ दिन बाद सेना गांव में जवान भर्ती करने आई, बेटे का पैर टूटा हुआ था इसीलिए वो बच गया। अब बताइए, कौन सी बात बुरी थी और कौन सी अच्छी? उस वक्त तो किसी को भी ये नहीं पता था ना, इसीलिए जिंदगी के हर मोड़ पर थोड़ा सा सबर जरूरी है, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा फेथ कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही है। एक और बात, हम अक्सर कह देते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है यार, लेकिन जैसे ही कोई सेटबैक आता है, अचानक टाइम ही टाइम मिल जाता है। सोचने का, लैमेंट करने का, दुखी होने का, सर पटकने का, लाइफ में कंप्लेंट्स करने का,
बस फर्क इतना है कि उस वक्त हम उस टाइम को सजा बना देते हैं, यही सब करके। अरे भाई, टाइम मिला है तो उसे गिफ्ट बना लो। पुरानी डायरी पढ़ लो, मम्मी के साथ चाय पी लो, पापा के साथ मार्केट चले जाओ, पुराने दोस्त को फोन लगा लो, या बस टेरेस पर जाकर आसमान ही देख लो। बिलीव कीजिए दोस्तों, हर प्रोडक्टिव काम सिर्फ लैपटॉप पर नहीं होता, कुछ काम दिल के अंदर होते हैं। वैसे एक सवाल, अगर कल सुबह आपके फोन में इंटरनेट ना चले तो आप क्या करेंगे? प्लीज मुझे वहीं से कुछ फेंक कर मारिएगा मत, मैं बस इमेजिन करने को बोल रही हूं, ऐसा सच में नहीं हो रहा आपके साथ कल सुबह। बट एक बार सोचिए, कल्पना कीजिए, आप 5 मिनट में घबरा जाएंगे, आपका पूरा दिन ऊपर नीचे हो जाएगा, या फिर आप लाइफ को थोड़ा और नोटिस करेंगे, घर के कामों में थोड़ा और ध्यान देंगे, घर के बाहर की भी एक दुनिया है उसमें जाके अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, अपने आप को शेयर करेंगे, जहां पेड़ हैं, हवा है, लोग हैं बात करने के लिए, और शायद वो एक पुराना दोस्त भी है जो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, एक जॉब आपकी पहचान नहीं है, एक रिश्ता आपकी पूरी कहानी नहीं है, और एक फेलियर आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। जिंदगी का कैलेंडर बहुत बड़ा है, एक खराब दिन, एक खराब महीना या एक खराब साल पूरा जीवन नहीं हो सकता। आज घर जाकर एक और काम जरूर कीजिएगा, अपनी अलमारी का एक शेल्फ साफ कीजिए, फोन की गैलरी से 100 बेकार फोटोएं डिलीट कीजिए, और एक ऐसे दोस्त को फोन कीजिए जिससे बात किए हुए बहुत दिन हो गए। हो सकता है नया दरवाजा किसी ऑफिस में नहीं, किसी पुरानी दोस्ती में खुल जाए। याद रखिए, दरवाजे खोलना जिंदगी का काम है, लेकिन उन तक चल कर जाना हमारा। मैं हूं आपकी आरजे दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, फिर मिलेंगे बातें इधर की उधर की में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और कल करेंगे को थोड़ा सा कम, और आज से शुरू करते हैं को थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया शादी ना हमेशा अच्छा खाने बनाने वाले से ही करनी चाहिए, क्योंकि देखो शादी के बाद प्यार कम हो सकता है पर भूख कम नहीं होती।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

0: दोस्तों मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत

0: भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे? मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के दो पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने एक बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए एक काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झंझोर दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे? दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
1: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

0: है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहे डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये तो साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझा कर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: अजय मुक्केबाज, MC मेरी कॉम।
2: भारत की MC मेरी कॉम ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने रोमानिया की स्वेलुटा कुटा को 7-1 से हराया है। अरे भाई कमाल हो गया, लगातार चौथी बार गोल्ड मेडल, कुल 5 प्रतियोगिताओं में 4 बार गोल्ड मेडल।
3: वो छोटी सी बामुश्किल 5 फुट ऊंचाई वाली मैरी कॉम,
2: हाँ?
3: अरे उसने तो अभी सितंबर 2007 में प्यारे से जुड़वा बेटों को जन्म दिया था।
2: अरे भाई 27 साल की उम्र में 1 साल के 2-2 बच्चों के साथ लगातार चौथी बार, अरे वो कमाल है, मेरी कॉम कमाल है।
4: नवंबर 2008 के आखिरी सप्ताह में जब पूरी दुनिया मुंबई में आतंकवादी हमलों को लेकर भारत के प्रति दुख और चिंता व्यक्त कर रही थी, तभी देश के सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की एक छोटे से कद की छरहरी महिला ने दुनिया को भारत की ताकत की वानगी पेश कर दी।
1: 2 साल तक घर गृहस्थी में व्यस्त रहने के कारण, मुक्केबाजी से दूर रहने और महज 4 महीने के अभ्यास के बाद MC मैरी कॉम ने 46 किलो संवर्ग में एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया। चीन की मिंगबो सिटी में संपन्न प्रतियोगिता में मैरी कॉम के मुक्कों के आगे कोई नहीं टिक पाया।
4: आश्चर्य की बात है कि मैरी कॉम पहले 400 मीटर दौड़ और भाला फेंक में हिस्सा लेती थी और राज्य की चैंपियन भी थी। 1999 के बैंकॉक एशियाई खेलों में मणिपुर के डिंको सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और उसी से प्रेरित होकर मैरी कॉम ने मुक्केबाजी सीखने का फैसला किया। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। मैरी कॉम मुक्केबाजी सीख रही है, ये बात जब पिता को मालूम हुई तो,
5: बेटा मैरी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना?
6: पापा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने क्या किया है?
5: अरे गांव वाले कह रहे थे कि तुम स्कूल में मुक्केबाजी सीख रही हो। ये मारा पीटी लड़कों के खेल है बेटा, तुम्हें उसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं है।
6: पापा, मेरे प्यारे पापा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये खेल लड़कों का और ये लड़कियों का है? पापू, ये कोई मारा पीटी थोड़ा ही

0: खास तो अपना बचाव है, सब कुछ कायदे कानून में होता है।
1: अरे बेटा, कहीं किसी के घूंसे से तुम्हारी नाक टूट गई या तुम्हारा जबड़ा टूट गया तो फिर टूटी नाक वाली लड़की से कौन शादी करेगा?
0: पापा आप चिंता ना करें, मैं जो करूंगी उससे आपका नाम ऊंचा ही होगा।
1: मेरा नाम ऊंचा होगा? क्या कह रही है ये?
2: और हुआ भी ऐसा ही। सन 2000 में ही पहली राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीत लिया। मैरी कॉम ने भाला फेंकने की अपनी ताकत और दौड़ने के अपने कौशल को अपनी मुक्केबाजी में शामिल कर लिया था।
3: ये खबर अखबारों में छपी, मैरी का फोटो भी था और घर वालों को एहसास होने लगा कि उनकी बेटी अपने परिवार, अपने गांव और अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने की राह पर बढ़ रही है। मणिपुर, सात बहनें कहलाने वाले राज्यों में से एक सुंदर पहाड़ी राज्य। राज्य की राजधानी से सटा चूड़ाचंद्रपुर जिले का गांव कंगहोई। एम टोनिया कॉम मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब व्यक्ति। घर के चूल्हे चौके में दिन भर खट्टी उनकी पत्नी एम अका कॉम और उनकी बेटी मैरी कॉम। दौड़ती खेलती दुनिया की दिक्कतों के बावजूद
2: सामाजिक संस्थाएं बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के इरादे से उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद दिया करती थीं।
3: और इसी प्रक्रिया में मेनगेट चंग नेजंग मैरी कॉम यानी एमसी मैरी कॉम पहले लोकतक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल और फिर सेंट जेवियर मोरांग में पढ़ाई करने लगी।
2: पढ़ाई से अधिक वो खेल कूद में आगे रहती। आदिम जाति लई स्कूल इम्फाल में वो हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी, लेकिन मैरी कॉम के खिलाड़ी मन ने हार नहीं मानी और ओपन स्कूल के माध्यम से वो परीक्षा में फिर बैठी।
3: गरीब परिवार होने के कारण मैरी कॉम को समुचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, लेकिन मैरी का खेलों के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने महज 14 दिनों में मुक्केबाजी के आधारभूत गुर सीख लिए थे। उनके मुक्के में इतना दम था कि कई सालों से बॉक्सिंग सीख रही लड़कियां उनके शुरुआती दिनों में भी उनके सामने नहीं टिक पाई। गरीबी ने उनके आत्मसम्मान को सदैव ताकत दी।
2: ये घटना उनके स्कूली दिनों की है जब वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कॉलोनी से बाहर निकली।

0: अरे लगता है कोई सवारी आ रही है।
1: रिक्शा वाले भैया, एम्बेसी चर्च चलोगे?
0: अरे आपको ले जाने से कौन मना कर सकता है। बैठिए बैठिए बैठिए।
1: पैसे कितने लोगे?
0: अरे मैडम जी जो देना हो दे देना, आपको तो रेट मालूम ही है ना।
1: ठीक है चलो फिर।
0: आओ मैडम जी एक बात बोलूं आपसे?
1: बोलो।
0: अगर आप लाल रंग पहने तो बहुत सुंदर लगेंगे।
1: सुनो ज्यादा बकबक नहीं है? अपने काम से काम रखो।
0: बात क्या है कि आप तो दिखती ही ऐसी हैं, कुछ बोले बिना मन नहीं मानता ना।
1: जरा रोको रिक्शा। अरे रिक्शा रोको, सुन रहे हो तुम?
0: अरे गुस्सा क्यों हो रही है? रोकता हूँ रोकता हूँ।
1: आइंदा किसी लड़की को अकेला देखकर कमजोर मत समझ लेना, समझे?
2: विषम परिस्थितियों में संयम से काम लेना, उनसे डटकर मुकाबला करना एक अच्छे खिलाड़ी का गुण होता है। इन्हीं गुणों के कारण एमसी मैरीकॉम सन 2000 से 2005 तक लगातार 5 बार महिला हॉकी की राष्ट्रीय चैंपियन रही। ऐसा नहीं है कि मैरीकॉम के साथ प्रत्येक कदम पर सफलताएं ही थीं।
3: उन्हें बैंकॉक में होने वाली थाईलैंड एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन कैंप में शामिल होने के लिए जाना था। सफर के दौरान ट्रेन में उनका पूरा सामान चोरी हो गया। उसमें उनके कपड़े, दस्ताने, पैसे, यहाँ तक के पासपोर्ट भी था।
2: इतने नाजुक हालात का मैरी कॉम ने डटकर मुकाबला किया। उनके एक परिचित अंकल ने भरोसा दिया कि यदि मैरी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे।
3: उन हालात में मैरी कॉम ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की टीम में अपना स्थान बना लिया, लेकिन इस बार मैरी को खाली हाथ वापस आना पड़ा।
2: लेकिन मैरी कॉम ने हार नहीं मानी। अमेरिका में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सन 2002 में तुर्की में उन्होंने द्वितीय महिला विश्व स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई प्रतियोगिताएं तो लगातार मैरी कॉम के नाम रही हैं।
3: लेकिन इतने सारे सोने के तमगे मैरी कॉम के घर का चूल्हा जलाने और लगातार प्रशिक्षण व पौष्टिक आहार के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। सन 2005 तक उनके पास न तो नौकरी थी और न ही कोई स्पॉन्सर।
2: शादी के बाद जब मैरी गर्भवती हुई तो लोगों को लगा कि अब इस चमत्कारी मुक्केबाज का करियर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गर्भ के 7वें महीने तक मैरी कॉम मुक्केबाजी की रिंग में जाती रही। वो अपने पास पड़ोस के बच्चों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देने लगी। इससे उनका अभ्यास बरकरार रहा।
3: 2 साल तक बॉक्सिंग रिंग से दूर रहने के बाद जब मैरी कॉम ने फिर से मुक्केबाजी के ग्लव्स पहने तो एक नया संकट उनके सामने था।
1: कोच सर, मैं फिर से रिंग में आना चाहती हूँ।
4: फिर से? देखो मैरी, तुमने खेल को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं लगती कि फिर से।
1: कोच सर, मेरा शरीर जब तक चलेगा तब तक मैं खेलूंगी। अब बताइए मेरी फिटनेस में क्या कमी है?
4: मैरी, तुम खेलती हो 46 किलोग्राम में, ठीक है ना?
1: जी सर।
4: जब तुम गर्भवती थी तब तुम्हारा वजन क्या था?
1: 67 किलो।
4: और अब?
1: 61 किलोग्राम।
4: देखो मेरी, 61 किलो वजन में तो कोई जगह खाली है ही नहीं। अब तुम 46 किलो कैसे बनोगी? यानी समझ गई ना?
1: कोई बात नहीं सर, मैं आपसे कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।
4: कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।
2: वजन कम करने की चुनौती को मैरी कॉम ने सहर्ष स्वीकार किया। उनके पति के ऑनलर ने इस घड़ी में उनका साथ दिया। ऑनलर मोटरसाइकिल पर होते और मैरी कॉम दौड़ लगाती। 15 किलो वजन कम करना, लेकिन अपनी ऊर्जा को बचाए रखना कोई साधारण काम नहीं था। साथ में दो बच्चों को भी पालना था। बच्चे केवल 2 महीने के थे और मैरी कॉम को गुवाहाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप के लिए कैंप में जाना पड़ा।
3: उनकी गैर मौजूदगी में उनके दोनों बच्चों की देखभाल उनके पति ने की।
2: तभी तो जब चीन में संपन्न 5वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम को गोल्ड मेडल मिला, तो उन्होंने इस पदक को अपने पति और बच्चों को समर्पित किया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से वो यहाँ तक पहुंची थी। अपने बच्चों के प्रति भावुक पलों में उन्होंने कहा,
1: उन्हें छोड़कर आना बहुत मुश्किल था। वो अभी बोलते नहीं, लेकिन रवानगी के समय मुझे हैरानी से देख रहे थे कि मम्मी उन्हें छोड़कर कहाँ जा रही हैं। उनसे दूर रहना मुश्किल था, लेकिन मैं मुक्केबाजी को उतना ही प्यार करती हूँ।
2: मैरी कॉम को पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार सहित कई सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। इम्फाल के खेल गांव की ओर जाने वाली सड़क का नाम MC मैरी कॉम मार्ग रखकर मणिपुर सरकार ने इस जीवट वाली मुक्केबाज महिला को

0: किसी ने पूछा, यदि आप मुक्केबाज नहीं होती तो?
1: तो मैं गायिका होती, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: अब मैरी कॉम का लक्ष्य है ओलंपिक में हिस्सा लेना।
1: मेरा सबसे बड़ा सपना है ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना, और उम्मीद करती हूँ कि सन 2012 में लंदन ओलंपिक में मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा।
2: खेल जिंदगी को मैरी कॉम की तरह एक ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते इसके प्रति लोगों का नजरिया बदले।
3: एक अजेय मुक्केबाज, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
5: मेरा प्यारा दोस्त,
6: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
7: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
6: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
7: मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ये कहानी शिलोंग की है।
6: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलोंग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
8: यही कहीं तो थी वो दुकान, कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान, उसके बाद हाँ वो रही।
6: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, पपीज फॉर सेल।
7: आइए खरीदिए, हमारे यहाँ हर नस्ल के पिल्ले उपलब्ध हैं।
6: यूजीन थोड़ा झिझका, कुछ पल बाहर खड़ा रहा।
7: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
6: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाना ही नहीं चाहता था।
7: यूजीन बार बार दुखी होता और उपेक्षित अनुभव करता था। इसीलिए खेल का मैदान हो या कक्षा, अक्सर वो स्कूल में सबके बीच अकेला सा हो जाता था। कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
8: हाँ, यहां से अंदर चलता हूं। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और प्यारे प्यारे पपीस भी हैं। आजा आजा।
6: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
7: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है, इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
6: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
8: नमस्ते मैडम।
9: नमस्ते बेटा।
8: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
9: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
8: ओह।
9: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
8: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
9: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
8: नहीं,
9: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो
8: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
9: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
8: अच्छा,
9: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
8: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
9: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
8: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
9: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
10: हाँ जी बताइए।
9: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
10: हाँ हाँ अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
7: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। कोई लगभग दौड़ता हुआ आया तो कोई उछलता कूदता हुआ, कोई छोटी छोटी छलांगे मारता हुआ आया तो कोई गोल गोल घूमता सा। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
6: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे, लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
9: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
10: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापस चलो।
8: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
9: ये जन से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
8: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
9: हैं? अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई। मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
8: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
9: अरे बेटा, कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
8: क्या?
9: लेकिन ये भी ऐसा शैतान है कि पहला मौका मिलते ही बाहर खुली हवा में भागता है। अरे इसे खरीदने की बात तो आज तक किसी ने नहीं की। वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
8: मैडम, मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
9: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, उछल कूद नहीं कर पाएगा, ये तुम्हारे साथ दौड़ भी नहीं पाएगा। तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी तक मुझसे मजाक ही कर रहे हो।
8: नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे यही चाहिए।
9: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो। शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
8: नहीं।
9: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
8: जी नहीं, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ। मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा। चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
9: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
8: यूं ही?
9: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
8: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
9: अच्छा अच्छा, समझी समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
8: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना। इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
9: पर बेटा ये तो
8: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
9: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए, मेरा मतलब है कि।
8: तो यही इसकी कीमत भी है। इसकी खराब टांगे इसे किसी से कम तो नहीं कर देती। आप निश्चिंत रहिए, बाकी पैसे आपको आज शाम तक मिल जाएंगे। अब ये रहे 1500 रुपए।
9: अब
8: और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना, है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
9: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
8: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
7: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
9: अरे बेटा, ये तुम्हारा?
8: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
9: अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस
8: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया।
9: नहीं यूजीन बेटा, देखो हम तुम हम सभी बराबर हैं बेटा, हम सभी बराबर हैं।
8: नहीं मैडम, लगता है ये बस कहने की बात रह गई है, क्योंकि ये बात कितनी बार झुठलाई गई है ये मैं ही जानता हूं, और 5 साल की उम्र से जानता हूं, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूं, ये सब मुझे पता है
9: बेटा।
8: इसलिए मुझे लगता है कि ये पापी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
9: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो।
8: आजा। अरे, आजा, आजा।
6: दुकानदार ने देखा वो नन्हा सा प्यारा सा पपी यूजीन की गोद में कुंकू करता हुआ अपनी पूंछ हिला रहा था, मानो यूजीन की गोद ही वो जगह है जहां उसे बेशर्त प्यार की नायाब ऊष्मा मिल सकती है।
7: वो ऊष्मा जो सभी खामियों को नजरअंदाज करती हुई समानता का एहसास दिलाती है, और ये एहसास ही वो भावना है जो मानवता के आकाश में ऊपर है, सबसे ऊपर।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्याभील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
11: इंसुलिन की कहानी भाग 2।
12: बेंटिंग और बेस्ट की ये जोड़ी अपने शोध प्रयासों से खुश थी, संयोग से परिणाम भी अच्छे आ रहे थे, पर वो एक जैसे नहीं थे। कभी ये अर्क सफल रहता था तो कभी असफल। शोध के नतीजे इतने मिले जुले होने लगे कि उन्हें लगा कि खोज को दूसरी दिशा दी जाए। उनकी तलाश उन्हें स्थानीय बूचड़ खानों में ले गई, जहाँ मांस को डिब्बों में बंद करने का काम होता था। कई मुश्किल प्रयासों के बाद इन जानवरों के अग्नाशयों से इंसुलिन प्राप्त करने की विधि उनके हाथ लगी।
13: 9 अगस्त सन 1921 को बेंटिंग और बेस्ट ने जब प्रयोग के नतीजों को मैकलियॉट के सामने रखा तो वो इससे बहुत प्रभावित हुए, पर वो चाहते थे कि और प्रयोग किए जाएं ताकि ये साबित किया जा सके कि अग्नाशय का सार वास्तव में असरदार है।
14: प्रोफेसर मैकलियॉट, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कहां से शुरू करें।
15: डॉक्टर बेंटिंग, आप अपना प्रयास जारी रखिए और आगे बढ़िए।
14: जी सर। सर, जिस अर्क का हमने इंजेक्शन दिया है उससे डायबिटीज वाले कुत्ते की हालत में बेहतरी तो हुई है, उसके रक्त और पेशाब में शक्कर की मात्रा में कमी भी आई है।
15: वेरी गुड।
14: पर प्रोफेसर साहब, एक समस्या है।
15: कौन सी समस्या?
14: हमें इंसुलिन के रासायनिक गुणों का पता लगाना चाहिए।
15: डॉक्टर बेंटिंग, पतझर का मौसम आते आते हमारे शोध दल में एक तीसरा सदस्य भी शामिल होने वाला है।
14: अच्छा, वो कौन है सर?
15: जेम्स बर्ट्रम कॉलिप। वो टोरंटो से हैं। वो हमारे विश्वविद्यालय में सेबेटिकल के तौर पर आ रहे हैं।
14: अच्छा।
15: वो एक निपुण रसायन शास्त्री हैं। उनके पास जीव रसायन विज्ञान में पीएचडी की डिग्री के साथ तंतुओं से सार निकालने का अच्छा खासा अनुभव भी है।
14: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सर, क्या वो अपना शोध भी हमारी प्रयोगशाला में ही करेंगे?
15: कुलीप मेरे साथ मेरी प्रयोगशाला में काम करेंगे।
14: जी सर।
15: उनका शोध कार्य होगा रक्त और पेशाब में शक्कर की मात्रा कैसे बढ़ती है और उससे अम्ल क्षार के संतुलन में कैसे बदलाव आता है, इस बारे में।
14: जी सर।
15: और ये जहां कुत्ते रखे गए हैं, इससे कई ब्लॉक दूर पैथोलॉजी की इमारत में वो अपनी अलग प्रयोगशाला बनाएंगे।
14: जी। अब सर, हमारी शोध की प्रगति का क्या होगा?
15: मुझे उम्मीद है डॉक्टर बेंटिंग कि आप दोनों कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण कर सकते हैं।
14: जरूर।
15: अब तक आपने जो किया है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण।
14: बिल्कुल सर।
15: मैं आपके लिए और धनराशि का इंतजाम करूंगा।
14: धन्यवाद।
15: आप दोनों जल्दी ही सभी सुविधाओं से सजी बेहतर प्रयोगशाला में अपना शोध कार्य करने के लिए जा सकेंगे।
14: आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।
15: थैंक यू डॉक्टर बेंटिंग।
12: बेंटिंग और बेस्ट की शोध के परिणाम जर्नल ऑफ लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल मेडिसिन के सन 1921 के नवंबर अंक में छपी। इसका शीर्षक था द इंटरनल सेक्रेशन ऑफ द पैनक्रियाज।
13: एक बार फिर भाग्य उन पर मेहरबान हुआ। अब काम तेजी से होने लगा। सवाल ये था कि मानव प्रयोग के लिए पहले कौन सी प्रयोगशाला सफल होगी। जेबी कॉलिप अल्कोहल का इस्तेमाल कर निथारने वाली विधि से इंसुलिन विशुद्ध करने में लगे हुए थे। और फिर एक रात की बात है,
16: मैंने कर दिखाया।
14: कॉलिप, शाबाश।
16: थैंक यू।
14: मुबारक हो, ये जरूर एक यादगार लम्हा होगा।
16: हाँ दोस्त बेंटिंग, ये एक जादुई क्षण था।
14: लेकिन आखिर तुमने ये किया कैसे? हमें भी तो बताओ वो तरीका। मेरा मतलब विशुद्धिकरण के चरण।
16: मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैकलियोड ने खासकर इस बात का किसी से भी जिक्र करने से मना किया है। अब मैं आगे इंजेक्शन की सही सही खुराक का पता लगाने का प्रयास करूंगा।
14: हाँ, हाँ, जरूर। आप सफल हो, भगवान आपकी मदद करें।
16: जी जी, शुक्रिया।
12: बेंटिंग और बेस्ट की टीम अब मनुष्य पर अपना प्रयोग दोहराना चाहते थे, पर ये करें तो किस पर? अचानक दिसंबर के तीसरे सप्ताह उन्हें ये पता चला कि पाचन ग्रंथि का अर्क का कोई नमूना असर नहीं दिखा रहा था। इसी दौरान उन्होंने अर्क के इंजेक्शन को अपने पर आजमाने का इरादा किया। इंजेक्शन के बाद उन्हें कमजोरी और सिर में चक्कर महसूस जरूर हुए, पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ।
13: सन 1921 के क्रिसमस से 5 दिन पहले फ्रेडरिक बेंटिंग के यहाँ एक मेहमान आया।

0: अंदर आ जाइए।
1: फ्रेडरिक बेंटिंग के उम्र के तकरीबन बराबर एक लंबे कद का शख्स जिसका नाम जोसेफ गिलक्रिस्ट था अंदर आया। कमजोर और दुबला वो शख्स टेबल की दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया।
2: बेंटिंग,
3: अरे तुम जोसेफ कितने कमजोर हो गए हो। अरे तुम्हें हो क्या गया है जोसेफ? पिछली बार जब हम मिले थे तब के बजाय तुम्हारा वजन कितना घट गया है।
2: बेंटिंग, मुझे डायबिटीज हो गया है, शक्कर की वजह से मैं मर रहा हूँ। और अब तो ये स्थिति है कि शक्कर मेरे लिए जहर बन चुकी है।
3: जोसेफ, हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
1: डॉक्टर बेंटिंग के लिए ये कबूल करना मुश्किल हो रहा था कि डॉक्टर गिलक्रिस्ट को मधुमेह है। दोनों 5 वर्ष पहले फौज में कैप्टन थे और दोनों ने एक ही तरह से एक ही वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और एक ही पेशे को चुना। वो स्कूल के दिनों से बहुत अच्छे मित्र थे, एक साथ ही स्कूल की रेस में दौड़े थे, खुशी के कई घंटे गुजारे थे, साइकिल मुकाबले में एक दूसरे को मात दी थी। उन्होंने जिंदगी के 25 वर्ष जी भर कर जिए थे।
3: जोसेफ, हौसला रखो, हम डायबिटीज का इलाज जरूर ढूंढ निकालेंगे।
2: बेंटिंग, इससे पहले कि मैं इस बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ दूं, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ चमत्कार होने वाला है?
3: जोसेफ, चमत्कार भी होते हैं। याद है तुम्हें, मैंने डॉक्टर की राय मानने से इनकार कर दिया था जब उन्होंने मेरे हाथ काटने की बात कही थी, और देखो मैं बच गया।
2: बेंटिंग, तुम्हारे बचने की कम ही सही, लेकिन उम्मीद थी।
3: हाँ।
2: पर मेरे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है।
3: क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं नहीं जोसेफ, नहीं, यहां पर तुम गलत हो। देखना, मैं इलाज का जरूर पता लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा, बस ईश्वर मेरी मदद करे।
2: क्यों बचकाना बातें कर रहे हो?
3: नहीं,
2: इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
3: नहीं जोसेफ, नहीं, बुजदिलों वाली बातें मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
1: हाँ। 11 जनवरी सन 1922 को डायबिटीज के एक मानव मरीज पर इस हार्मोन को आजमाने का पहला मौका सामने तब आया जब लियोनार्ड थॉमसन नामक के 14 वर्ष का एक लड़का पहला ऐसा डायबिटीज का मरीज जिसे इंसुलिन के इंजेक्शन के लिए चुना गया।

0: डॉक्टर जेफरी।
1: यस।
0: वार्ड एच का वो लड़का जो यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षण अस्पताल में दाखिल है, उसका क्या हुआ?
1: आपका मतलब है लियोनार्ड थॉमसन?
0: हाँ वही।
1: उसकी हालत तो बहुत गंभीर है।
0: हाँ?
1: वो अर्धमूर्छित अवस्था में है, वो रोग के आखिरी दौर में है।
0: अब डॉक्टर जेफरी, क्या एंटी डायबिटिक का अर्क हम उस पर आजमाएं?
1: जरूर।
0: तो ठीक है, आइए मेरे साथ। ये लीजिए, ये रहा इंजेक्शन, इसमें अर्क का 15 मिलीलीटर है।
1: ठीक है, तो चलिए मरीज के पास चलते हैं।
0: ठीक है, आइए।
2: डॉक्टर जेफरी ने मटमैले रंग के डायबिटीज के विरुद्ध काम करने वाले अर्क का इंजेक्शन उसके कूल्हे में लगा दिया। 12 रोज बाद 23 जनवरी को लियोनार्डो को पाचन ग्रंथि के अर्क का दूसरा इंजेक्शन दिया गया।
1: डॉक्टर बेंटिंग।
0: अरे डॉक्टर जेफरी, आइए ना।
1: डॉक्टर बेंटिंग, इंजेक्शन ने तो काम कर दिया। लियोनार्डो पहले से बहुत चंगा है।
0: अरे वाह।
1: उसकी भूख लौट आई है, वो देखने में भी अब तंदुरुस्त नजर आ रहा है। वो बताता है कि वो पहले से अब बहुत बेहतर और मजबूत महसूस कर रहा है। अब ये देखिए।
0: हाँ।
1: ये रिपोर्ट
0: लाइए।
1: ये लीजिए।
0: अरे वाह, उसके रक्त में शक्कर की मात्रा अब सामान्य है, पेशाब में भी अब करीब करीब गायब है
1: जी,
0: कीटोन भी गायब हो गए हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ी अच्छी खबर है
1: जी।
2: एक मधुमेह के रोगी बच्चे के पहली बार स्वस्थ होने के इस ऐतिहासिक प्रकरण के एक महीने बाद अगला सवाल ये था कि हार्मोन के इंजेक्शन के इस प्रयोग के लिए दूसरा मानव कौन होगा। 11 फरवरी सन 1922 को डॉक्टर बेंटिंग ने निश्चय किया कि वो अपने मित्र जोसेफ पर ये प्रयोग करेंगे। बिना इलाज के जोसेफ वैसे भी मौत की ओर बढ़ रहे थे। अगर हार्मोन

0: इंसुलिन काम कर गया तो वो बच भी जाएंगे और जी भी पाएंगे। उन्होंने जोसेफ के लिए संदेश भेजा, उसमें बता दिया था कि उनके दिमाग में क्या था।
1: डॉक्टर बेंटिंक।
2: हाँ जोसेफ।
1: आगे बढ़ो और इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दो। ये बीमारी मुझे धीरे धीरे मार रही है, इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। अगर इंसुलिन काम कर जाता है तो हम जश्न मना सकेंगे, और अगर नहीं तो भी मेरी और ज्यादा क्या दुर्गति हो सकती है।
2: जोसेफ, मैं उम्मीद करता हूं कि इंसुलिन शरीर में जाकर अपना काम जरूर करेगा।
1: मेरे दोस्त, तुम्हारी इसी उम्मीद में मेरी जिंदगी के बचने की उम्मीद है,
2: और ये उम्मीद जरूर कामयाब होगी।
1: लगा दो इंजेक्शन।
2: बस हो गया।
0: मानव हृदय में कुछ न कुछ आशा हमेशा बनी रहती है, और यही हालत थी फ्रेडरिक जोसेफ और चार्ल्स की। फ्रेडरिक की सारी उम्मीद इंसुलिन पर टिकी थी। कोई वजह नहीं थी कि इसका कोई असर नहीं होगा। इसके बावजूद 2 घंटों तक जोसेफ की हालत में तब्दीली नहीं हुई। उनका चेहरा फीका पड़ रहा था, उनकी सांसें रुक रही थी। फ्रेडरिक को सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करें, और इसलिए वो विचलित थे।
1: बेंटिंक।
2: हाँ जोसेफ।
1: तुमने कोशिश की मेरे दोस्त, तुमने कोशिश की।
2: शुक्रिया।
1: जो भी मुमकिन था तुमने किया, और इन सब के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ।
2: अरे, इसमें धन्यवाद कैसा। तुम देखना जोसेफ, दवा जरूर असर करेगी। हाँ, हो सकता है कि मानव शरीर में कुत्ते के मुकाबले दवा को असर करने में कुछ ज्यादा समय लगे, लेकिन दवा अपना असर जरूर दिखाएगी।
1: कोई बात नहीं दोस्त,
2: बस तुम यही रुके रहो, बेस्ट आता ही होगा।
3: डॉक्टर बेंटिंग।
2: अरे अरे आओ बेस्ट।
3: मैंने लेबोरेटरी में जाकर पेशाब का टेस्ट किया है।
2: अच्छा, तो पेशाब के टेस्ट में क्या नतीजा आया है?
3: डॉक्टर बेंटिंग, इसमें शक्कर की कोई मात्रा नहीं आई है।
2: अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ी अच्छी खबर है।
3: जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंजेक्शन से आखिर में जोसेफ की स्थिति में सुधार होगा।
2: जरूर होगा। मैंने अपने लोगों को बताया है कि मैं आज ओंटारियो में पहुंच रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे संपर्क में जरूर रहूंगा।
3: जी,
2: अपना ख्याल रखना।

0: मिस्टर बेंटिंग रेलगाड़ी पर रवाना हो गए और उनका ध्यान अभी भी चिंता मुक्त नहीं था। उन्होंने अपने को इतनी दयनीय अवस्था में इससे पहले कभी नहीं पाया था। उन्हें पूरा यकीन था कि इंसुलिन से जोसेफ अपनी समस्या से निजात पा लेगा। जब वो घर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि जोसेफ उनसे टेलीफोन से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। वो जोसेफ को टेलीफोन करने ही वाले थे कि टेलीफोन की घंटी बजी।
1: हेलो
2: हेलो बेंटिंग।
1: हाँ, मैं डॉक्टर बेंटिंग बोल रहा हूँ।
2: बेंटिंग, मैं जोसेफ।
1: अरे जोसेफ, कैसे हो तुम?
2: बेंटिंग, जैसे ही तुम अस्पताल से बाहर निकले, मेरी सांसें सहज हो गई।
1: क्या?
2: मेरी थकान गायब हो गई। मेरा दिमाग शांत हो गया।
1: सच्चो सर।
2: और जानते हो बेंटिंग,
1: हाँ?
2: मेरी भूख वापस लौट आई।
1: थैंक गॉड।
2: एक लंबे अरसे के बाद मैंने भर पेट खाना खाया। मैं तो जैसे एक तरह से खाने का स्वाद बिल्कुल भूल सा गया था।
1: ओ जोसेफ, जोसेफ, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, मेरे सिर से बोझ उतर गया जोसेफ।
2: बेंटिंग, तुमने मुझे जीवन का अमृत दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बेंटिंग।
1: अरे नहीं नहीं, दोस्ती में शुक्रिया कैसा। जोसेफ, याद रखो, ये स्थायी निदान नहीं है। तुम्हें हर रोज इंसुलिन का एक टीका लगवाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम और भी लंबी उम्र जी पाओगे। हाँ
2: बेंटिंग, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा।
1: अरे नहीं,
2: मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं।
1: नहीं जोसेफ, नहीं।
2: कैसे करूं?
1: अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा, ठीक है?
2: हाँ। अच्छा, मैं भी बेचैन हूँ तुमसे मिलने के।
1: हाँ, जरूर मिलूंगा।
3: और उस दिन के बाद इंसुलिन की हर नई खोज किसी दूसरे मरीज पर आजमाने से पहले जोसेफ पर टेस्ट की गई। इंसुलिन के अनेक प्रयोगों के दौरान अपनी नसों से रक्त के जो नमूने वो आजमाने के लिए देते थे और उनकी प्रतिक्रिया का सच्चा और सटीक ब्यौरा जो उन्होंने दिया है, उससे चिकित्सा विज्ञान में एक नया अध्याय लिखा गया है।
0: दिसंबर सन 1922 को प्रोफेसर मैकलियोड ने शोध कार्य के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए बेंटिंग को येल यूनिवर्सिटी में आयोजित अमेरिकन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस भेजा। उनके व्याख्यान का शीर्षक था द बेनिफिशियल इन्फ्लुएंसेस ऑफ सर्टेन पैनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट। 18 महीने से भी कम समय के इन चार शोधकर्ताओं के संयुक्त प्रयास ने विश्व को मधुमेह का कारगर इलाज दिया। ये और बात है कि वो अपने काम के दौरान एक दूसरे से लड़ते रहते थे और 26 अक्टूबर सन 1923 को नोबेल कमेटी ने फ्रेडरिक जी बेंटिंग और जॉन जी मैकलियोड को उनके इंसुलिन के आविष्कार के लिए चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय लिया। बेंटिंग न तो व्यक्तिगत तौर पर और न ही पेशे से इसके लिए तैयार थे, पर ये खबर मिली जुली खुशी ले आई। इससे उनकी ईमानदारी को आघात पहुंचा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया ये पुरस्कार उनके और उनके सहयोगी चार्ल्स बेस्ट में बंटना चाहिए था, न कि उनके और मैकलियोड के बीच। अब जब वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे, बेस्ट को भुला दिया गया था।
1: सर, मैं इस बड़े अन्याय के विरोध में नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दूंगा।
4: डॉक्टर बेंटिंग, मैं टोरंटो विश्वविद्यालय के डीन की हैसियत से ही नहीं, बल्कि एक कनाडा निवासी की हैसियत से ये कहना चाहूंगा कि नोबेल पुरस्कार जीतना हमारे लिए एक गौरव की बात है।
1: जानता हूँ सर, जानता हूँ, लेकिन ये बेस्ट थे जो गर्मियों के मौसम में छोटी सी प्रयोगशाला में पसीने में तर लगे रहते थे मेरे साथ, ना कि मैकलियोड। ये बेस्ट थे जो बुनसेन बर्नर की लौ पर बनाए थोड़े से भोजन को मेरे साथ बांट कर खाते थे। और ये बेस्टी थे सर, जो मेरे साथ रातों को कुत्तों की तलाश में लगे रहते थे, शहरों की गलियों में उन लोगों को ढूंढते रहते थे जो कुत्ते बेचने को तैयार होते थे।
4: डॉक्टर बेंटिंग, आप हमारे राष्ट्रीय नायक हैं। आपका कीर्तिमान कनाडा के दूसरे नौजवानों को विज्ञान शोध में जाने के लिए प्रेरित करेगा।
1: सर, मैं आशा करता हूँ कि मैं कभी भी इतना खुदगर्ज, इतना स्वार्थी ना बन जाऊं कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं सबसे पहले एक डॉक्टर हूं। मैं रोगियों का इलाज करना चाहता हूं सर, सिर्फ उन्हें आराम पहुंचाने तक अपने को सीमित नहीं रखना चाहता।
0: बेंटिंग पर उनकी देशभक्ति और अपने कर्तव्य के प्रति श्रद्धा उन पर हावी रही। बेस्ट को उनका हक मिले, इसलिए बेंटिंग ने तुरंत बोस्टन स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में टेलीग्राम का संदेश भिजवाया। उस टेलीग्राम में बेंटिंग ने ये लिखा था, आई एस्क्राइब टू बेस्ट इक्वल शेयर इन द डिस्कवरी, हर्ट दैट ही इज नॉट सो एक्नॉलेज्ड बाय नोबेल ट्रस्टीज। बेंटिंग की घोषणा के बाद प्रोफेसर जे जे मैक्लियोर ने भी अपने पुरस्कार की $40,000 की धनराशि डॉक्टर जे वी कॉलिप के साथ आधी आधी बांट ली।
3: कुल मिलाकर सन 1923 एक अत्यंत रोमांचकारी वर्ष था। कृतज्ञ कनाडा राष्ट्र की संसद ने बेंटिंग को $7,500 की सालाना आजीवन पेंशन देने की घोषणा की। उन्हें टोरंटो विश्वविद्यालय में चिकित्सा शोध के लिए अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इस पद को नाम दिया गया बेंटिंग एंड बेस्ट चेयर ऑफ मेडिकल रिसर्च।
0: सन 1934 में ब्रिटिश साम्राज्य ने बेंटिंग को सर की उपाधि से सम्मानित किया। जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो बेंटिंग ब्रिटिश और उत्तरी अमेरिका की डॉक्टरी सेवाओं के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। वो उड़ान से संबंधित विमान चालकों के व्याप्त खतरनाक समस्या ब्लैकआउट का समाधान ढूंढना चाहते थे। ऐसी ही एक उड़ान T-9449 में अटलांटिक में सन 1941 को वो दुर्घटना का शिकार हो गए। उनकी उम्र केवल 50 वर्ष थी।

0: साथियों, मानवता इंसुलिन के इस अमूल्य योगदान हेतु उनका सदा आभारी रहेगी। 18 महीने के शोध से इंसुलिन का इजाद हुआ और ये ऐसी खोज थी कि जिसने मधुमेह की दुनिया ही बदल कर रख दी। आधुनिक चिकित्सा में ये एक अति महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसका चिकित्सा इतिहास में अनोखा स्थान है। इसने लाखों लोगों को जीवन दान देकर एक कर्मशील और सामान्य जीवन प्रदान किया है।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आपके रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
3: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
4: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
3: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
4: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को, अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है, अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
3: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
4: एक बार जब विसंगति आ जाती है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है, हाथ या पैर हो, तो

0: चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूर होता है उससे।
1: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
0: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
1: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, उनके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
0: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
1: जी बताइए।
0: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की गोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है?
0: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है और जिसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
1: तो दोनों को ही खानी।
0: हाँ, और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
1: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
0: जी,
1: और डॉक्टर साहब,
3: क्या फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
1: बताइए।
0: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
1: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
0: ये जब अभियान चलता है हम सभी से यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
1: जी, और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
0: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
1: अच्छा। जी जी, रात के 10 बजे से 2 बजे तक दबा जाता
0: है, वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
3: जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
1: जी बताइए।
0: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
1: जी
4: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या।

प्रतिशत नाइट्रोजन फसल में चार पायड़ा आवाना टाइम पर आलू जो क्योंकि 25 दिन बाद में और वाना। तो किसान साथियों 25% नाइट्रोजन फसल में आठ पायड़ा आवाना टाइम पर आलू जो त्यों बोवाईना 50 दिन बाद में अने तीसरो जो से 25% नाइट्रोजन नी जो मात्रा फसल में फूल अने पुष्पन आवाना टाइम पर नंगल आवाना टाइम पर आलू जो क्योंकि 17 दिन बाद में बोवाई नी। तो किसान साथियों चौथो जो नत्रजन आलू जो 5% नाइट्रोजन नो प्रयोग दाणा भरवाना टाइम पर आलू जो जबकि 90 दिन बाद में। तो किसान साथियों यू थाई उर्वरक ने बात अने हाव जल प्रबंधन। तो किसान साथियों मक्की एक ऐसी फसल से त्या हुको ज्यादा सहन नहीं करी सके अने ना ही ज्यादा पानी सहन करी सके। तो तीनी हारू क्षेत्र में जल निकासी हारू नालियों में बुवाई धोरा में बुवाई करवाथी समय नी वसत भी कम थाय से अने पानी नी भी वसत थाय से। समय पर अतिरिक्त पानी भी नकली नाली में वही जाए से तीने कारण मक्की गळवानी संभावना भी काफी कम रह से अने पड़वानी संभावना भी काफी कम रह से। सिंचाई दृष्टि थी नवा पौध घुटना तक आवे अने तीहनी फूल नंगल आवे अने दाणा आवे भरावाना अवस्था में किसान भाई ने सबसे संवेदनशील समय रह से अने इनी अवस्थाओं में अगर सिंचाई नी सुविधा होय तो किसान भाई ने कोरड रहेवाना टाइम पर सिंचाई कर देवी जोईए। केम की इन थी खेती में असल तो असल काफी असल मुनाफो मिली सके। तो किसान साथियों हाव बात करी खरपतवार ना नियंत्रण ने जेवी रीते आपू निंदणी तो निंदणी की कम करवी जोईए। तो तेना बारामां किसान भाईओ अगर देखे जाए तो खरीफ मौसम में खरपतवारों की ज्यादा समस्या रहेशे अने त्या फसल में फसल थी पोषण जल अने जो धूप है प्रकाश हारू प्रतिस्पर्धा करे से अने त्या खरपतवार ना जितना भी झाड़का रहेशे त्या आपणी मक्की ने हाथे वेगा मोटा थावा हारू मोटा थाय से। तो इनी हारू इना कारण उपज में भी 40-50% तक किसान भाई ने नुकसान थाई सके से। मक्का नी असल उत्पादन लेवा हरू बुआई ना 30 दिन तक खेतर ने खरपतवार थी किसान भाई ने पूरी तरह मुक्त राखू जोई। बरसात ना दिनों में निंदाई गुड़ाई करवा हरू समय कम मिली पाए से तीने हरू निंदाई गुड़ाई हरू कई बारी समय नहीं मिली पाए से अने कई बारी यू निंदाई हाथों थी करी पड़े से अने एवामां खरपतवार नाशी दवाओनो प्रयोग करवो भी घणो लाभदायक रहेशे क्योंकि मजदूरी ज्यादा महंगी पड़े से। तीनी हारू किसान भाइयों मक्का में खरपतवार ना नियंत्रण हारू ओरवानी बाद में अने फसल ना अंकुरण तो पहलू एट्राजिन 1.0% 1.0 किलोग्राम सक्रिय तत्व व्यापारिक मात्रा में 2.0 किलोग्राम प्रति हेक्टर ना हिसाब थी 600 लीटर पानी में घोल बनाने प्रति हेक्टर ना हिसाब से छिड़काव करवा पर 16 पायड़ा ना जो खरपतवार से जो ज्यादा प्रभावी ढंग का नियंत्रण थी होनो थाई सके। अंतर शस्य फसल लेवा हारू एट्राजिन नो प्रयोग नहीं करवानो अने 1.0 किलोग्राम पेंडीमेथिलिन सक्रिय तत्व व्यापारिक मात्रा 3.25 लीटर प्रति हेक्टर ना हिसाब थी 600 लीटर पानी में घोल बनावीने खेतर में अंकुरण तो पहलू आपड़ा मक्की ना जो पोया उगवा तो पहलू आपड़ तीने छिड़काव कर देवो अने तीने अलावा ओरवाना 15-20 दिन बाद में डोरो सलाड़ी ने निंदाई करवानी। तो किसान साथियों लगभग 30 दिन बाद में होल सलाड़ी ने मिट्टी ऊपर सड़वानु काम यानी कि 22 दिन बाद में मक्की हलवानु काम करवू जोईए। तो 20 दिन थी 22 दिन बाद में मक्की हलाई जाए ताकि मक्की हलवा थी जेड़ियों भी ऊंडियों उतरे अने पौधों भी हवा पवन थो भी नहीं पड़ी सके। अगर आप मक्की हाली तो बीजा एवं नाना मोटा खरपतवार भी निशा दबी जाए अने मरी जाए से अने त्या तीन थी किसान भाई ने काफी असल फायदो थाई से। तो लगभग 30 दिन बाद में होल सलाड़ी ने मिट्टी सलाड़वानु काम हलवानु काम किसान भाई ने समय पर कर लेव जोईए। अगर इनथी मोटी अगर मक्की थाई जाए तो तीन माँ डगरा सरके तीन कारण भी नुकसान काफी मक्की पड़ी जाए से। तीने हर किसान भाई ने ये ध्यान रखी जोई कि हर काम समय पर करूँ जोई। तीन थी भूमि माँ वायु संचार भी असल थाय से अने वसेला जो खरपतवार से जो झाड़का से त्या जेड़ू सहित उखड़ी ने खत्म थाई जाए से। तो किसान साथियों कटाई अने मक्का नी उपज केतरी थाय तने केवी की किम तीना बारा में आप बात करिए तो देखी जाए तो किसान भाइयों जेर मक्का ने

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार, आदाब और जय श्री राधे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और दोस्तों आज का रंग है संगीत की दुनिया का सरगमी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, जिंदगी केवल सुरों का संगम नहीं है, बल्कि भावनाओं की वह भाषा है जिसे हर दिल बिना किसी अनुवाद के समझ लेता है। कभी यही संगीत हमारी खुशियों का उत्सव बन जाता है, और कभी कठिन समय में सहारा बनकर हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही संगीत साधक जिनके लिए गायन केवल एक शौक नहीं बल्कि जीने का माध्यम है। बचपन से ही संगीत के संस्कार उन्हें अपने परिवार से मिले। उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं उनके पूज्य पिताजी, जो 87 वर्ष की आयु में भी संगीत के प्रति उसी उत्साह और समर्पण के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान श्री राधा गोविंद की कृपा और अपने पिता के मार्गदर्शन से इन्होंने जयपुर, दिल्ली और मुंबई में अनेक मंचों पर अपनी मधुर प्रस्तुतियों से श्रोताओं का मन जीता है। चैनल 5 के प्रतिष्ठित सुपर सिंगर्स में जयपुर के टॉप 20 प्रतिभागियों में चयन होना भी इनके संगीत के सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। ये वीणा माँ म्यूजिक के सह निदेशक है, जो अपनी माताजी की स्मृति और प्रेरणा को समर्पित एक संगीत परिवार है, और साथ ही स्वर साधना परिवार के सक्रिय सदस्य के रूप में निरंतर सीखने, अपनी कला को निखारने में लगे हुए हैं। तो आइए आज मिलते हैं एक ऐसे विनम्र, संवेदनशील और समर्पित गायक से, जिनकी आवाज में सुरों की मिठास है, व्यक्तित्व में संगीत की सादगी। हम सबकी ओर से हार्दिक स्वागत है श्री राजीव श्रीवास्तव जी का। राजीव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी जय श्री राधे। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों का, जिन्होंने मुझको आपके रूबरू होने का मौका दिया। आगे मैं चाहूंगा आप लोगों के अच्छे से अच्छे सवालों का जवाब मैं दे पाऊं, साथ ही अपने हुनर की कुछ झलकियां आप लोगों के समक्ष पेश कर सकूं।
1: तो चलिए राजीव जी, आपकी तो आवाज सुन के ही मजा आ गया। तो राजीव जी, ऐसा है, चलिए शुरुआत से ही शुरुआत कर लेते हैं, और शुरुआत आपके कुछ बचपन से कर लेते हैं। कुछ अपने परिवार के बारे में, बचपन के बारे में, बचपन में आप कैसे विद्यार्थी थे, कुछ उसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: परिवार में हम 4 भाई हैं, और पापा अब SBI से रिटायर हैं। आफ्टर 41 इयर्स की सर्विस के बाद वो रिटायर हुए, और अभी 87 इयर्स के हैं। मम्मा की अब यादें हैं हम लोगों के साथ। मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन करा, उसके बाद फाइनेंस में डिप्लोमा करने के बाद कंप्यूटर एजुकेशन के संग 95 से फाइनेंस और अकाउंट फील्ड में जॉब कर रहा हूँ। बचपन में शुरुआत से काफी शौक था पापा को देखते हुए संगीत का, तो बचपन संगीत में माहौल में गुजरा है, और अब अपनी पैशन को पूरा कर रहा हूँ।
1: चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो अब अगर कुछ थोड़ा सा मैं बचपन में और वापस ले चलूं, तो बताइए कोई ऐसा पल था या ऐसा लम्हा था जब आपको संगीत से प्रेम हुआ और बचपन से ही गुनगुनाने का शौक था, या कोई ऐसी घटना हुई जिससे एकदम लगा कि ये संगीत ही मेरा एक जीवन का रास्ता बन सकता है।
2: बस संगीत से पहला परिचय तो कह सकते हैं जब से होश संभाला है। पापा को घर पर हारमोनियम पर रियाज करते, महफिलों में गाते, स्टेज परफॉर्मेंस देते देखते देखते कब मैं भी हारमोनियम लेकर बैठने लगा, साथ ही मेरी उंगलियां भी हारमोनियम पे चलने लगी और साथ साथ गाना शुरू कर दिया। कब से तो ये इस तरह से चालू हुआ, और साथ ही सब लोगों ने जब सराहना शुरू किया तब लगा कि हाँ मैं गा सकता हूँ। फिर धीरे धीरे उसको मैंने आगे बढ़ाया, पापा के साथ साथ रियाज किया, वो भी स्कूल से मैं भी आने के बाद पापा ही बैंक आते थे तो थोड़ा बहुत उनके संग बैठ के गाते थे, वो अप्रिशिएट करते थे, सुनते थे, तो बस इस तरह से धीरे धीरे अपने आप ही वो जुड़ता चला गया।
1: वास्तव में आप बहुत लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे पिता मिले हैं जो खुद संगीत प्रेमी हैं, वही आपके एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं। तो कुछ उन्होंने शुरू में आपको गाइड किया?
2: जी बिल्कुल, ये फैक्ट है, उनका संगीत प्रेम मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब वो हर जगह जैसे एज ब्रांच मैनेजर रहते हुए भी वो कल्चरल प्रोग्राम रेगुलर करवाते थे अपने बैंक की तरफ से, और खुद जिसमें खुद भी परफॉर्म करते थे, साथ ही एक पूरी टीम वो साथ में लेके चलते थे जो हर जगह प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे पापा। तो जयपुर में भी उस समय रविंद्र मंच पर रेगुलर उनकी परफॉर्मेंस होती थी, देते रहते थे, और आज भी उनका मार्गदर्शन ही है कि वो 87 इयर्स की एज में आज भी हमें सुनते हैं और जहाँ करेक्शन होता है वो बताते हैं। तो मतलब संगीत का एक तरह से शौक उन्हीं के जरिए आया, कुछ शायद भगवान ने गले में वरदान दिया था कि मैं भी गाता रहा, उनको अच्छा लगता था तो थोड़ा सा और आगे अपने आप करने का मौका मिल गया। पापा अभी भी करते हैं करेक्शन काफी जगह।
1: ये बड़ी बात है क्योंकि आपके पिताजी बैंक में नौकरी करते हैं और बैंक का जो जॉब है वो काफी टफ है, इतना इजी नहीं है, उसके बावजूद वो संगीत के प्रति उनका प्रेम बना रहा और आपको भी गाइड करते हैं, बहुत बड़ी बात है।
2: जी,
1: तो मैं सोचता हूँ राजीव जी ऐसा करते हैं कि पिताजी ने जो आपको इतना प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया है, तो कुछ उनकी एक तरह से उनको हम यहाँ अपने कार्यक्रम में आपके सुरों के माध्यम से शामिल कर लेते हैं। कोई अच्छा सा गीत आप पिताजी के लिए सुनाए हमें, जो भी उनको पसंद हो वो सुनाए, एनीथिंग।
2: हाँ बिल्कुल, मैं उनकी पसंद का है गीत मनाडे साहब को वो बहुत पसंद करते थे, और तो उसी उन्हीं का एक गाया हुआ गीत मैं दो लाइन आप लोगों को सुनाता हूँ।

0: सुंदर राजू जी, मजा आ गया। आपने तो जैसे संगीत सरिता बहा दी हो, क्योंकि क्लासिकल संगीत से किसी चीज की अगर शुरुआत हो जाती है तो वो बहुत ही मजा आ जाता है। बहुत सुंदर। और आपके पिताजी को भी प्रणाम करते हैं कि उन्होंने आपको इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, इतनी अच्छी शिक्षा दी, जिससे आप इतना बढ़िया पेशकश आपने दी, हमारे को मजा आ गया। राजू जी, चलिए फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं आपके संगीत के सफर में। अब मुझे बताइए कि संगीत की जो ट्रेनिंग है, आपने किसी संगीत विद्यालय में ली, किसी गुरु से संगीत की तालीम ली, ये क्या आगे सफर कैसे आपने इसका शुरू किया?
1: नहीं सर, ये मेरी खुश नसीबी है कि मैंने जो कुछ सीखा घर पर ही रेगुलर रियाज और पापा से सीखा है। सबसे बड़ी सीख की बात करें तो एक ही बात है कि जो कि मैं संगीत प्रेमियों से भी कहना चाहूंगा कि गायकी के लिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहली जरूरत होती है पेशेंस यानी धैर्य। वो ऐसे कि आप जो कुछ भी गाना चाह रहे हैं उसको धैर्य से 2-3 बार सुने, गाने का फील और उसके वेरिएशंस को ध्यान में रखते हुए रियाज करें, और हो सके तो अपने गाने को रियाज के टाइम रिकॉर्ड करें और रिकॉर्डिंग के ध्यान से सुनते हुए आप उसको समझें और गाएं। तो ये पापा ने शुरू से सिखाया कि पहले आप उसको अच्छे से सुनो, गाने को अच्छे से सुनो, उसको उसकी जो मूड है, उसका वेरिएशन जो फील है उसका गाने का, वो आप समझो। तो ये सीख है जो आगे लेके चल रहे हैं, और मेरा अभी भी ये रहता है कि पहले मैं उसको सुनता हूँ और अपने रियाज के टाइम पे उसको एक बार रिकॉर्ड जरूर करता हूँ और उसको ध्यान से सुनता हूँ।
0: हाँ, बताइए बताइए, कुछ कह रहे थे आप?
1: हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी कुछ सीखा है पापा से ही सीखा है और आज भी उन्हीं से सीखते आ रहे हैं, क्योंकि ये एंडलेस है, अभी भी उन्हीं से ही मतलब सीखने को मिल रहा है।
0: अच्छा, तो फिर जब आपने रियाज की चर्चा कर ली है, तो आपका रियाज का रूटीन किस तरह से रहता है? कब आप रियाज करते हैं, क्योंकि आप जॉब में भी जाते हैं, कैसे आपने अपना रूटीन सेट किया हुआ है रियाज के लिए?
1: सर, 1 या 2 सॉन्ग मैं जरूर गाता हूँ डेली, उसका रियाज जरूर करता हूँ शाम को ऑफिस से घर आकर। अच्छा, टाइम शाम को ही मिलता है, मॉर्निंग में तो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, तो शाम को ऑफिस से घर आकर जो रूटीन का काम है जैसे पूजा वगैरह करना, वो सब करने के बाद शाम को 7:30-8 बजे करीब पापा के साथ बैठते हैं, जहाँ पर बेटिया होती है, मैं होता हूँ, पापा होते हैं, और उसमें फिर हम लोग सिंगिंग पापा के सामने गाते हैं। रेगुलर जो भी है रियाज होता है साथ में मिलकर करते हैं, पापा सुनते हैं, एडवाइस देते हैं, बस 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस भी हो जाती है और थोड़ा टाइम पास भी होता है और गाना भी हो जाते हैं रिकॉर्ड।
0: मजा आ गया यार आपका ये रूटीन सुन के। और आप पापा के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद के से बढ़ाते हैं, आपकी बेटी भी गाना गाती है, इसका मतलब?
1: हाँ जी, बिटिया बिटिया ही गाती है वो, तो उसने तो प्रॉपरली सीखा है, उसको हमने शुरुआत से रखा है यहाँ पर और अच्छे स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह दे रही है वो।
0: क्या नाम है आपकी बेटी का? अक्षय
1: अक्षा श्रीवास्तव।
0: श्री, बहुत बढ़िया। तो चलिए थोड़ा सा ये बताइए कि जब पहली बार आपने मंच पर गाया था, उस टाइम कैसी फीलिंग थी? कोई क्या सेंसेशन था? कुछ घबराहट थी, एंजाइटी थी, क्या था जब फर्स्ट टाइम आपने मंच पर गाया?
1: सर, मेरी फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस वहां जो मुझे याद है, जब मैं शायद 2nd या 3rd में था,
0: ओहो,
1: तब मैंने एक स्कूल के फंक्शन में, क्योंकि स्कूल में हम लोग बहुत शुरू से गाते थे और प्रेयर तो रेगुलर हम लोग ही कराते आए, मुझे मेरा अभी भी ध्यान है, मैंने जब तक स्कूलिंग की है मेरी, प्रेयर हम स्टेज पे गाते थे और सामने सारे जो बच्चे होते थे, तो स्कूल के फंक्शन में ही मैंने पहली बार हारमोनियम प्ले करते हुए, मुझे सॉन्ग भी ध्यान है, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, गाया था खुद ही, हारमोनियम प्ले किया था खुद ही माइक पे उस समय। तो घबराहट का तो पता नहीं सर, बट उत्साह तो आज भी जब वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देख वो पिक देखता हूँ मेरे पास जो है, तो बहुत अच्छा लगता है और ताज्जुब भी होता है कि कितने छोटे छोटे थे और हारमोनियम लेकर सॉन्ग गा रहे हैं, सब लोग देखते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, वो उत्साह अभी भी वैसा वैसा ही है।
0: ये तो बहुत ही है, इसका मतलब आप स्कूल में भी बड़े पॉपुलर रहे होंगे, क्योंकि प्रेयर में जो बच्चे गाते हैं उनको कभी सभी जानते हैं स्कूल के अंदर। तो चलिए पुराने दिनों की इसी याद पे कोई एक अच्छा सा पुराना गाना या जो भी गीत आपको पसंद हो सुनाइए, फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं।
1: मैं मोहम्मद रफी साहब का दीवाना कह के आज मुझे इसको
0: जी, स्वागत
1: और
0: स्वागत।
1: मैं शुरुआत करता हूँ इसकी अंतरे से ही।

0: वाह राजीव जी, तो चलिए रफी साहब का ये लैंडमार्क मास्टरपीस गाना आपने हमें सुनाया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपका फेवरेट जॉनर क्या है? जैसे आप गीत भी गाते हैं, गजलें भी गाते हैं और भजन भी गाते हैं, तो आप किस शैली को गाते समय आपको बहुत ही अंदर से सेटिस्फाइंग लगता है, मजा आता है, कुछ उसके बारे में बताएंगे?
1: पर जहां तक दिल से संतोष मिलने की बात है, वो ऑब्वियसली भजन गाकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैं रेगुलर भजन भी एक गाने की कोशिश करता हूँ, एक दिन में एक तो जरूर ही गाता हूँ शाम को। तो भजन से मुझे आत्मिक संतोष बहुत मिलता है और साथ ही गायकी तो पैशन है ही सर।
0: तो अब अच्छा थोड़ा गजलों पे आते हैं। गजल केवल पहले कुछ खास तबका ही सुनता था, और उर्दू जो उसमें होती थी गजल में, वो ज्यादा लोगों की समझ में नहीं आती थी। आजकल ऑफ प्लेट गजलों की लोकप्रियता काफी बढ़ रही है, तो आप इस स्टेज को किस तरह से देखते हैं? आपका क्या विचार है इसके बारे में?
1: जी बिल्कुल, ये सच है। और एक बार तो यदि आपको ध्यान हो, जगजीत सिंह जी के शो में ये बात कही भी गई थी कि कभी गजल गजल गायकी जो होती थी वो उर्दू शायरी की ही मिल्कियत समझी जाती थी, लेकिन जगजीत सिंह साहब ऐसे थे जिन्होंने हिंदी को भी नाम दिया गजल गायकी में, और उसने हिंदी में पेश करके अलग ही पहचान दी। तो और ऑब्वियसली ये बदलाव आज आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि एक नॉर्मल सिंगर भी गजल गाता है और खूब अच्छे से निभाता है। तो ये हिंदी को जगजीत सिंह ने पेश करके बहुत अच्छा एक बदलाव लाए हैं। और ये ठीक है, किसी टाइम में उर्दू ही होती थी तो लोग बाग नॉर्मली नहीं गाते थे, ये तो काफी अच्छा बदलाव है।
0: नहीं, सही बात है। हम पुराने लोग थोड़े तलत महमूद के फैन थे, और उसके भी बाद में कोई ऐसा गजल गायक नहीं आया जो बहुत दिल को छुआ हो, लेकिन जगजीत ने इसको एक आम फहम बना दिया। सब लोग गजलों से प्यार करने लग गए, ये बात बहुत सही। और उनके शब्द भी एक सादा से ही होते थे, उड़ती जाए ये रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, अंदर एक समझ में आ जाते थे एक आम आदमी के। तो अगर राजीव जी आपको ये कहा जाए कि कोई पांच इमोर्टल सॉन्ग्स चुनने हो, तो क्या चॉइस रहेगी आपकी? और ये भी बता दीजिए, आपको सबसे अधिक सिंगर कौन सा प्रभावित करता है, कौन विशेष किसकी गायकी प्रभावित करती है आपको?
1: सबसे पहले सर मुझे सबसे ज्यादा यदि कोई प्रभावित जिसने किया है वो जगजीत सिंह साहब की गायकी ने प्रभावित किया है।
0: अच्छा,
1: उनकी गजल गायकी, भजन। और बॉलीवुड की बात करते हैं तो मोहम्मद रफी साहब, सुरेश वाडकर जी, महेंद्र कपूर साहब, मोहम्मद अजीज, मन्ना डे साहब की गायकी बहुत पसंद करता हूँ और उनके सॉन्ग नॉर्मली गाता भी हूँ। तलत महमूद साहब जैसा आपने कहा, उनकी गायकी का एक बिल्कुल डिफरेंट जोन है, तो वो कई जगह मैंने परफॉर्म करे भी हैं और काफी अच्छे उनके गीत हैं।
0: नहीं सही बात है। बड़ा चुनना मुश्किल है कि कौन बेहतर है, क्योंकि सभी नगीने हैं हमारे हिंदी संगीत के या बॉलीवुड के संगीत के, सभी एक से एक बढ़कर एक हैं। सही बात है। तो इनमें से किसी पर्टिकुलर को आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं, किसी गायक को जिसको आप पसंद करते हैं?
1: जी, जगजीत सिंह साहब को, उनकी गायकी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, और क्योंकि उनकी आवाज का जो बेस है वो मुझे बहुत पसंद है। और भगवान ने मुझको भी थोड़ा सा, जैसे कहते हैं, एक बेस दिया है, तो उनकी गायकी को मैं अपने से मैच करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये बहुत बड़ा काम है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी तरह उस बेस को लेके गा सकूँ।
0: तो ऐसा करते हैं फिर, तो जब चूंकि इतनी बातचीत हो चुकी है उनकी गायकी पे, तो चलिए कोई सुना दीजिए उनकी कोई गजल या कोई कोई भी प्रस्तुति जो आपको पसंद हो।
1: ठीक है सर, मैं ये दौलत भी ले लो कि कुछ लाइन सुनाता
0: जी।
1: हूँ। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो

0: बहुत सुंदर, कागज की कश्ती, बारिश का पानी, बहुत बढ़िया लग। तो राजीव जी फिर बात करते हैं ये वीणा माँ म्यूजिक के बारे में। इसके आप सह निर्देशक हैं, आपकी माताजी के नाम पे बना हुआ संस्था शुरू हुई, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या सोच थी इसके पीछे और इसमें आपने कोई कार्यक्रम आयोजित किए हैं तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें।
1: वीणा माँ म्यूजिक ग्रुप की शुरुआत हमने विधिवत 26 जनवरी 2025 को की थी।
0: अच्छा।
1: जिसमें मेरे साथ मेरे छोटे ब्रदर रितेश श्रीवास्तव और उनकी वाइफ प्रशंसा श्रीवास्तव जी फाउंडर और डायरेक्टर हैं।
0: अच्छा।
1: तो ग्रुप की शुरुआत करने के पीछे जो सबसे पहले एक ही एम था, लव और पैशन म्यूजिक के लिए, जो कि हम लोगों का सबसे पहला, साथ ही हमारे संग म्यूजिक से जुड़े लोग जिनको एक मंच प्रोवाइड करना जहाँ वो अपना पैशन परफॉर्मेंस के जरिए लोगों के सामने ला सकें और अपनी दिनचर्या के साथ एक म्यूजिकल एनवायरनमेंट का मजा ले सकें। तो ये सोच के हम लोगों ने ग्रुप की शुरुआत की थी 26 जनवरी 2025 को, और उसमें फिर अभी तक हम लोग 3 सफल आयोजन उसमें कर चुके हैं। एक शाम माँ के नाम, जो कि हम लोग मदर्स डे को ही डेडिकेट करते हुए, क्योंकि मम्मी के नाम से बनाया था ग्रुप, की है, जिसमें हर प्रोग्राम में लगभग 35 सिंगर्स ने अपना गायकी के जलवे बिखेरे और खूब ऑडियंस की तालियां बटोरी। कोई यादगार आयोजन, सारे यादगार थे। मेरे अकॉर्डिंग मेरी जो परफॉर्मेंस थी मेरी बिटिया के साथ, जिसमें स्पेशली हमने पापा की एक फेवरेट मूवी है नदिया के पास, उसका सॉन्ग उनके सामने परफॉर्म किया था। तो उस समय जो फीलिंग थी हम लोगों को परफॉर्म करते समय मेरा और बिटिया को, वो बहुत अलग थी। वो सामने बैठे हुए हमें सुन रहे थे और खुश हो रहे थे। वो पल बहुत अच्छा था, क्योंकि परफॉर्मेंस तो बहुत सारी देते ही रहता, बट सुनने वालों में उस समय पापा थे जो अपने बेटे और पोती को उनका पसंदीदा सॉन्ग गाते हुए देखकर खुश हो रहे थे। तो वो एक बहुत अलग एक एक्सपीरियंस था। तो हम लोग तीन, हम लोगों ने सफल अपने इसमें प्रोग्राम किए हैं, तीनों मदर डे जो हमने डेडिकेट करा था। एक 26 जनवरी को तो हम लोगों ने लॉन्चिंग की थी, 10 मई 2025 को पहला प्रोग्राम करा, उसके बाद 2 नवंबर को हमने दूसरा प्रोग्राम करा 25 मई, और अभी रिसेंटली मई 26 में एक प्रोग्राम अभी तीसरा खिला। काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला।
0: बहुत ही सुंदर, मतलब ये तो एक अद्भुत, आप अपनी बेटी के साथ परफॉर्म कर रहे थे, पिताजी आपके सुन रहे थे, तो क्या मंजर होगा, बहुत मजा आ गया होगा। तो चलिए, तो ऐसा करते हैं ना कि उसी को रिलीव कर लेते हैं, सुनाइए कुछ उस दिन आपने क्या सुनाया था वो सुना दीजिए, या किसी और आपका वीणा माँ म्यूजिक के प्रोग्राम का मैं कोई और गीत आपने पेश किया हो वो सुना दीजिए।
1: जो सॉन्ग हालांकि ड्यूट था, पर मैं ठीक है उसकी उसी सॉन्ग की 2 लाइनें सुनाया था
0: जी।
1: नदिया के पार मूवी का वो समझाया था, कौन दिशा में लेके चला रहे बटोरिया।
0: ओके, ओके।

0: इस तरह के गीत बहुत कम सुनने को मिलते हैं। नदिया के पार तो फिल्म भी कितनी शानदार थी, तो बहुत मजा आ गया। तो चलिए राजीव जी, अब ये बताइए कि म्यूजिक उत्साह भी बढ़ाता है, कभी जीवन में ऐसा कभी फेज आया है कि आप थोड़ा सा निराश हो और महसूस कर रहे हो, हताशा महसूस कर रहे हो, तो संगीत ने आपको किस तरह से संबल दिया है? कभी एज ए थेरेपी भी काम किया है म्यूजिक ने आपके लिए?
1: पर ऐसा हताशा और निराशा तो लाइफ का एक पार्ट है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस संगीत अलग एहसास है। हताशा निराशा लाइफ का पार्ट है, लेकिन संगीत एक अलग एहसास है। ऑफकोर्स अगर मूड कुछ उदास भी होता है तो एक सॉन्ग गाओ और सही हो जाता है। ये मैंने जरूर किया है। पर्सनली यदि शेयर करूं तो कभी वाइफ और किड्स पर किसी वजह से गुस्सा भी हो जाता हूँ और कुछ बोलकर गाना गाने चला जाता हूँ, तो वो लोग तो बल्कि ये कहते हैं कि अजीब है, अभी गुस्सा कर रहे थे और अब गाना गा रहे हैं। तो गाने का एक अलग वो है, उससे मूड ऑब्वियसली मतलब अच्छा होता है, फ्रेश होता है। तो निराशा हताशा में ये भी एक टॉनिक की तरह ही काम करता है।
0: ये बड़ा मजेदार चीज है कि परिवार में खैर आमतौर से थोड़ी बहुत असहमति पति पत्नी में, बच्चों में कभी कभी हो ही जाती है। कभी जब आप गुस्सा होते हैं तो बच्चे याद दिलाते, पत्नी याद दिलाती थी, अरे अरे वो गाना सुनाओ ना, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करते लोग?
1: मैं खुद ही गाने चलाता हूँ और बाकी बेटियां तो घर सपोर्ट करती है पूरा, तो खुद आके साथ में कि चलो डैडी ये ड्यूट करते हैं।
0: अरे वाह, आप बहुत लकी है, लकी है, मजा आ जाता। तो आप ऐसा करते हैं कि कुछ जयपुर के म्यूजिकल सीन के बारे में बात करते हैं, आप तो काफी जुड़े हुए हैं। जयपुर में जो इतने सारे कराओके के मंच बन गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, सोशल मीडिया भी आ गया है, विभिन्न मंचों पर प्रोग्राम भी होते रहते हैं, तो अब क्या लग रहा है कि जो नए प्रतिभाएं उभर के आ रही हैं उनको अवसर मिल रहे हैं, या इनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है? कभी कभी मुझे ये भी लगता है, आप क्या सोचते हो, आप क्योंकि अंदर हो उसके, हम बाहर से देखते हैं सब कुछ।
1: हाँ जी बिल्कुल, कंपटीशन तो ऑब्वियसली बढ़ा है क्योंकि सोशल मीडिया ने काफी लोगों को सामने आने का मौका दिया है, और युवा गायक तो हमेशा से प्रेरणा स्रोत हैं, हम भी सीखते हैं सर उनसे। इनफैक्ट आप छोटे बच्चों को सुने, क्या तैयारी के साथ आते हैं, सीखने का जुनून है, और पेरेंट्स भी उनको मोटिवेट करते हैं। निश्चित रूप से हमें बेहतरीन गायकी युवाओं से सुनने को ही मिलती है और आगे ही मिलती रहेगी। तो ये अच्छी बात है कि आज सोशल मीडिया ने और कई म्यूजिक से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, सभी को जो भी पैशनेट सिंगर्स हैं मौका दिया है बाहर आकर अपनी प्रतिभा दिखाने का। तो ऑब्वियसली प्रतिभा को अवसर मिला है, साथ ही कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं जो पूरी तैयारी के साथ आते हैं और सीखे हुए आते हैं, जो कि अपने रेगुलर गुरुजनों से सीख रहे हैं। और हाँ, कैरियोके सिंगिंग थोड़ा सा एक उसमें हर तरह के सिंगर्स आते हैं क्योंकि वो अपना शौक ही पूरा कर रहे हैं सर, ये घर पे कैरियोके में गाया और ग्रुप के अंदर जुड़ के अपना एक शौक पूरा कर लिया आगे, तो वो तो अगर अलग चीज हो गई सर, लेकिन जो तैयारी के संग आता है सीखा हुआ, उनको सुनने का आनंद अलग ही। ये आप भी महसूस करते होंगे जैसे प्रोग्राम वगैरह में जाते हैं
0: नहीं,
1: तो
0: सही सही।
1: अलग ही।
0: मेरा तो खैर थोड़ा सा असेसमेंट ये है कि कुछ तो खैर ऑब्वियसली एवरेज सिंगर होते हैं जो ग्रुप से जुड़े होते हैं, उनको चांस देना होता है, लेकिन कुछ प्रतिभाएं तो बिल्कुल अद्भुत आती है, जिनका सुनने से ही पता लग जाता है कि ट्रेनिंग भी है, रियाज भी है और मेहनत भी है। तो कुछ प्रतिभाएं तो बहुत ही बढ़िया होती हैं, और वो कैसा भी गाना गाएं लेकिन मजा आ जाता है उनका सुनने में, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक इतना बड़ा मंच मिल गया है लोगों को, और मैं तो कई बार ये भी कहता हूं कि और किसी शौक की बजाय तो ये शौक सबसे अच्छा है,
1: जी,
0: और किसी तरह का कोई भी आप गलत शौक करो उसकी बजाय संगीत का शौक कर लो, तो बस आपका जीवन कितना बढ़िया हो जाएगा, कितना सुरीला हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात। तो राजीव जी अगर ये बताइए, आप इतने महान संगीतकार हैं, गायक सबको आप फॉलो भी करते हैं, उनको मानते भी हैं, अगर आप आज मंच साझा करने के लिए आपको कहा जाए कि किसी एक को चुनिए, तो किसको चुनेंगे आप?
1: सर वैसे तो मेरी पहली चॉइस होती जगजीत सिंह साहब, लेकिन अब वो क्योंकि नहीं है, तो आज के भी सूरज में मैं भी साझा करना चाहूंगा मंच, तो मुझे मोहम्मद अजीज साहब की सिंगिंग भी बहुत पसंद है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ, वो उनकी गायकी का जो एक लेवल है, उनका जो पिच है, वो बहुत अट्रैक्ट करता है। उनके सॉन्ग कम गए हैं बट उन्होंने बहुत ही सुंदर, तो वो मुझे बहुत पसंद है,
0: तो चलिए अब एक और हमें कोई अच्छा सा जिनका भी आपको पसंद हो उनका कोई एक गीत सुना दीजिए, फिर हम रैप अप करते हैं।
1: तो मैं मोहम्मद अजीज साहब की एक सॉन्ग की दो लाइनें सुनाता हूँ।
0: जी जी जरूर।

0: हाँ सरजी जी, बहुत अच्छा लगा। तो अब बस मैं एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ या अर्ज करना चाहता हूँ कि कोई युवा जो शौकिया गायक हो उनके लिए आप कोई संदेश ब्रीफ में देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो अवश्य कहिए।
1: सर एक ही बात कहना चाहूंगा कि संगीत पूजा है, और आप जैसे नाम जप या पूजा कैसे करते हैं, आपका पूरा डिवोशन उसमें होना चाहिए, और पूजा करते समय वो होता भी है। ऐसे ही जब आप संगीत में जाएं तो उसको पूरे डिवोशन से सुने, समझें और फिर परफॉर्म करें, क्योंकि ये एक मजाक नहीं है। यदि आप इसको एक वो आराधना मानते हैं, जैसे कहते हैं संगीत आराधना है, तो उसको भाव उसका आना बहुत जरूरी है, तभी वो आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और सुने श्रोताओं को उसमें आनंद आएगा। तो बस करें, पूरी तैयारी के संग करें, उसको मजाक में लेके नहीं करें, एक डिवोशन से करें।
0: बहुत बढ़िया। तो राजीव जी, आपने अपने अनुभवों, संघर्षों, प्रेरणाओं और मधुर संगीत यात्रा को जिस आत्मीयता से हम सबके साथ साझा किया है उसका आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमें विश्वास है आपकी बातें, आपके गीत हमारे श्रोताओं को संगीत से और भी गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरणा देंगे। इसी शुभकामना के साथ हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने समय निकाला, इतनी अच्छी बातें की और इतने अच्छे अच्छे गीत सुनाए हमें, एक हमारा दिन आज संगीतमय बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद। जय श्री राधे।
0: जय श्री राधे। और दोस्तों नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो SN, क्योंकि जिंदगी के रंग गीतों के संग। फिर किसी प्रेरणादायी शख्सियत के साथ मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

0: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें।
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता जी की खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: दैट्स द स्पिरिट सर।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्लू का पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहें डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये तो साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है, और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझा कर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर जी एक पंजाबी हिंदू फैमिली में 24 दिसंबर 1956 को जन्मे थे और तब से लेकर आज तक बस हम सभी का मनोरंजन करते ही जा रहे हैं। लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: डार्लिंग, तुम हर वीक गाड़ी चेंज करता, क्या गाड़ी के साथ साथ लड़के भी बदलता?
1: ऐसा न कहो।

जान, हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंदा ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
2: 1980 के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने, और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए, हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। एक बार एक सब्जी वाला सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था, छिड़कता जा रहा था। काफी देर हो गई तो ग्राहक ने गुस्से से बोला, सुनो, अब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तौल दो।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए, पेश खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आज के कलाकार अनिल कपूर जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: ये आलम शौक का देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए। ये किन नजरों से तूने आज देखा, ये किन नजरों से तूने आज देखा कि तेरा देखना देखा न जाए। यही तो आशना बनते हैं आखिर, यही तो आशना बनते हैं आखिर, कोई ना आशना देखा न जाए। फराज अपने सिवा है कौन तेरा, फराज अपने सिवा है कौन तेरा, तुझे तुझसे जुदा देखा न जाए। नमस्कार, शफक की इस मखमली शाम आप सभी बाज़ौक दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त भारती रॉय का सिद्ध के दिल से आताब। 90.8 FM की लहरों पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भी

दोस्तों, रूहानी सूफियत के रंग जब थिरकते हुए संगीत और बेबाक आवाज के साथ मिलते हैं तो माहौल में एक अलग ही तरह की सहरहन पैदा हो जाती है। हमारी अगली पेशकश बर्रे सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट की बेहद अजीम और सदाबहार फनकार रूना लैला जी की आवाज में है। कोक स्टूडियो बांग्ला के मंच से पेश किया गया ये सूफियाना कलाम आज की महफिल की एक बेहद खास और तवानाई यानी जोश खरोश से भरपूर कशिश है। हजरत लाल शाहबाज कलंदर की शान में लिखे इस बेहद मकबूल और रूहानी कलाम को ये अंतरा सीधे जहन पर का ये अंतरा सीधे जहन पर हावी हो जाता है। मुलाहिज़ा फरमाइएगा। चार

सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर रुना लैला की आवाज में आपकी नजर।

दोस्तों, गुजरे दौर की सुनहरी यादों और गुजरी हुई मोहब्बत का अफसाना जब संगीत के पन्नों पर लौटता है तो दिल गुजरे हुए जमाने की हसीन वादियों में खो जाता है। हमारी अगली पेशकश जदीद यानी आज के दौर की एक ऐसी खूबसूरत रचना है जिसमें बीते कल की मुकम्मल पाकीज़गी रची बसी है। OTT सीरीज जुबली के इस खास नगमे को सुनिधि चौहान ने अपनी संजीदा और खूबसूरत आवाज़ से एक बहुत उम्दा एहसास बना दिया। शायरा कौसर मुनीर जी की कलम से निकले इस कलाम के बीच का ये बेहद हसीन और रूहानी बंद मिसरा मुलाहिजा फरमाए। क्या इश्क की दलील दूं क्या वक्त से करूं गिला, कि वो भी कोई और थी, कि वो भी कोई और ही था। वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था। वो मैं भी कोई और ही थी, वो तू भी कोई और ही था। आइए सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये बेहद खूबसूरत कलाम आपकी शौक फरमाएं।

दोस्तों, मौसीकी के उस सुनहरे ऐद माजी यानी बीते दौर से जब हम लौटते हैं तो एक ऐसी आवाज़ से सामना होता है जिसे हिंदुस्तानी संगीत की बुनियाद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, कुंदन लाल सहगल साहब। दोस्तों, सहगल साहब ने अपने करियर के 15 सालों में तकरीबन 36 फिल्मों में काम किया था, जिनमें 28 हिंदी में, 7 बंगाली फिल्में थी और एक तमिल में भी थी। 1955 में बीएन सरकार ने सहगल साहब की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जिसका नाम अमर सहगल था। इस फिल्म में सहगल साहब के 19 गाने उनकी फिल्मों से लेकर पेश किए गए। एक अंदाजे के मुताबिक सहगल साहब ने 185 गाने गाए और जिनमें 142 गाने फिल्मी थे और 43 नॉन फिल्मी सॉन्ग्स थे। नॉन फिल्मी गाने हिंदी, उर्दू, बंगाली, पश्तो, पंजाबी और पर्शियन में भी गाए। उनके नॉन फिल्मी गीतों में भजन, गज़ल और होरी थे। उन्होंने मशहूर शायरों जैसे मिर्ज़ा गालिब, ज़ौक और सीमाप को भी गाया। सहगल साहब 1941 में बॉम्बे आ गए थे। उनकी मशहूर फिल्मों में भक्त सूरदास और तानसेन बहुत हिट हुई। 1944 में उनकी पिक्चर मेरी बहन भी रिलीज हुई, लेकिन इस वक्त तक अल्कोहल उनकी जिंदगी पर हावी हो चुकी थी और इसके चलते फिर 18 जनवरी 1947 को वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उनकी आखिरी पिक्चर परवाना थी जो कि उनके इंतकाल के बाद रिलीज हुई। सहगल साहब की आवाज़ में वो कशिश और पाकीज़गी थी कि आने वाली हर पीढ़ी ने उनसे सीखा, यहाँ तक कि स्वर कोकिला हमारी लता मंगेशकर जी भी उन्हें अपना रहनुमा मानती थी और उनके गाए गीतों को बेहद अकीदत के साथ याद करती थी। अभी जो आप नगमा सुनेंगे, उस नगमे के बाद लता जी ने उनको एक तारीखी अकीदत दी है, यानी हिस्टोरिकल ट्रिब्यूट। यही वो खास इंतखाब है जहाँ इस कालजयी लोरी के ख़त्म होने पर खुद लता जी ने अपनी आवाज़ में सहगल साहब की शख्सियत और उनकी अजीम गायकी को एक बेहद पूर्ण मुखराज अकीदत पेश की है। शायर केदार शर्मा साहब के लिखे और उस्ताद पंकज मलिक की मौसीकी से सजे इस शाहकार का एक बंद मुलायजा फरमाइए। सो जा मीठे सपने आए, सपनों में पिया दरस दिखाएं। सो जा मैं बलिहारी सो जा राजकुमारी सो जा। आप सब शौक फरमाए सहगल साहब और फिर लता जी की आवाज़ में ये रूहानी लोरी।

के एल सहगल साहब की वो रूहानी लोरी और उसके ठीक बाद में लता जी के वो लफ्ज़, वाकई आंखें पुरनम और दिल को एक अजीब सा तज़फ़ुफ़ दे गए। दोस्तों, बातों बातों में और सुरों के इस मखमली बेमिसाल सफ़र में वक्त का पता ही नहीं चला। सुरों और जज्बातों का जो ताना बाना आज हमने मिलकर बुना था, उम्मीद करती हूँ कि वो आपके दिलों की गहराई तक उतरा होगा। इन अमर फनकारों की तवानाई और उनके सोज को अपने जहन में समेटे हुए अब घड़ी की सुइयां गवाही दे रही हैं कि आज की महफिल को अब यहीं थामना होगा। अब वक्त हो चला है आपसे रुख्सत लेने का। कल फिर इसी वक्त कुछ नए अदबी अल्फाज और कुछ अनछुए एहसासों के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए 90.8 FM पर सुनते रहिए रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील। अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

तो दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम
1: भावना। 90.8 FM

0: धार और झाबुआ जिले से हुई है। इन पक्षियों को ज्यादातर गरीबों आदिवासियों द्वारा पाला जाता है। इसके स्वास्थ्य से जुड़े फायदों को देखते हुए इसकी मार्केट में मांग अधिक रहती है और इसकी गुणवत्ता के कारण ये काफी महंगा भी बिकता है। हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने भी इन मुर्गों को पाल रखा है और कड़कनाथ मुर्गे से वे कड़क कमाई करते हैं। तो सालो किसान भाइयों, हामली एक एवा सफल किसान की कहानी त्या कड़कनाथ मुर्गी फार्म खोली ने घणो असल अने मोटो मुनाफो कमाई रहा से।
1: तो ये जो फार्म है आपका, कौन सा बर्ड है अभी यहाँ पर?
2: ये सारा कड़कनाथ है।
1: कड़कनाथ है। हाँ। कितना बर्ड है अभी?
2: अभी 2200 बर्ड है।
1: 2200 बर्ड है। छोटा बर्ड शुरू कर किया था आपने?
2: छोटा बर्ड भी स्टार्ट किया था, कुछ लिंग बर्ड भी परचेज किया था
1: जी। अच्छा, जो ये देख रहा हूँ कई सेक्शन है इसमें बने हुए
2: जी।
1: कितने सेक्शन है
2: इसमें? चार सेक्शन है।
1: चार सेक्शन है। जो आपके ये चार सेक्शन है, पहला सेक्शन में इसमें बहुत सारे बर्ड है और बड़े हेल्दी बर्ड है। तो ये बर्ड किस तरह का बर्ड है?
2: ये बच्चा लाए थे हम
1: जी,
2: एक दिन का
1: जी।
2: तो ये वो बर्ड तैयार हो रहा है। अच्छा। और ये अगले 10 दिन पे लेंग पे आ जाएगा।
1: अच्छा, अंडे पे आ जाएगा?
2: अगले 10 दिन में ये अंडे पे आ जाएगा
1: जी।
2: जी,
1: तो कितना बर्ड है ये वाला?
2: ये 1600 बर्ड है।
1: 1600 बर्ड ये। किस साइज का शेड है ये?
2: ये 30x150 का साइज है।
1: जो ये वाला है?
2: ये वाला जो साइज,
1: जो इनके लिए, जो तैयार,
2: जो तैयार बर्ड के लिए है
1: जी। टैंक लगाया हुआ है ऊपर?
2: नहीं, ग्राउंड वाटर चलता है। हाँ, टैंक लगा हुआ ऊपर।
1: टैंक से आता है ना?
2: टैंक से आता है पानी।
1: और जो फीड देते हैं, फीड कौन सा चल रहा है?
2: फीड चल रहा है इनका लेंग फीड। अब
1: लेंग फीड चल रहा है। तो अमूमन एक बर्ड कितना फीड ले लेता है ये?
2: एक 70 ग्राम के आसपास एक बर्ड, जो एडल्ट बर्ड होता है, 70 ग्राम के आसपास फीड लेता है एक दिन में।
1: अच्छा भाई सर, ये बताइए, आपने कड़कनाथ से ही शुरुआत क्यों की और क्या विशेषता इस बर्ड की?
2: जी, बेसिकली कड़कनाथ हमने इसलिए स्टार्ट किया था कि इसमें ना बीमारियां बहुत कम होती हैं।
1: अच्छा,
2: तो जो नया, मतलब जो नया काम स्टार्ट कर रहा होता है, मेन नुकसान है पोल्ट्री में वो मोर्टलिटी की है
1: जी।
2: आप ये सोच नहीं पाते कि जब तक किसान, मतलब किसान ही समझ पाता है कि मैं किस वेस्ट पे काम कर रहा हूँ, तब तक काफी मोर्टलिटी हो चुकी होती है और फिर किसान थक जाता है।
1: कड़कनाथ एक टब ब्रीड है,
2: टब ब्रीड है, बीमारी कम आती है,
1: झेल जाता है।
2: हाँ, छोटी मोटी बीमारी हुई तो ये झेल जाता है।
1: यही वजह थी कड़कनाथ,
2: यही वजह थी कड़कनाथ स्टार्ट करने की
1: जी। और अभी अंडे आ रहे हैं?
2: हाँ, लेंग चल रही है। आगे लेंग, आगे लेंग बर्ड है,
1: दिखाइए।
2: हाँ।
1: अच्छा, जो लेंग वाला बर्ड है, अभी कितना बर्ड है आपके पास में?
2: अभी 400 बर्ड है।
1: 400 बर्ड है।
2: हाँ।
1: अंडे कितने आ रहे हैं उनसे?
2: 200 अंडे के आसपास डेली की,
1: 200 के आसपास प्रोडक्शन है, अंडे रोज आ रहे हैं।
2: हाँ।
1: तो जो अंडे हैं वो कहाँ सेल कर रहे हैं आप?
2: सोसाइटीज में जाते हैं। तो मैंने मार्केटिंग भी सोसाइटी में स्टार्ट की थी और चिकन भी जा रहा है पैक होके, यहाँ से ऑनलाइन डिलीवरी है चिकन की भी।
1: आप चिकन भी जो है
2: डिलीवर कर देते हैं,
1: ऑनलाइन भेजते हैं।
2: हाँ। और एग भी ऑनलाइन डिलीवरी कर देते
1: हैं। एग क्या रेट जाता है आपका?
2: एग अगर हम ऑनलाइन डिलीवरी की बात करें तो 800 रुपए की ट्रे जाती है।
1: 800 रुपए की।
2: और कोई फार्म से लेके जाता है तो 600 रुपए की ट्रे है।
1: 600 रुपए। सोशल मीडिया मार्केटिंग का बड़ा अच्छा फायदा उठा रहे हैं। बेशक इनका फार्म गांव में है, लेकिन ये ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू अपना चिकन और एग सेल करते हैं। कितने कितने बड़े सेक्शन बनाए और लंबाई चौड़ाई क्या है इस फार्म की?
2: इसकी जो चौड़ाई है पूरे फार्म की, और लंबाई 30 फुट चौड़ा है ये
1: जी,
2: और 300 फीट लंबा है ये
1: जी।
2: 30x300 का साइज है ये।
1: बाहर भी ओपन के लिए आप, फ्री रेंज के लिए भी?
2: फ्री रेंज के लिए।
1: और मुर्गियां चर भी रही हैं?
2: जी जी, फ्री रेंज में भी खोलते हैं इनको
1: जी।
2: सुबह मॉर्निंग टाइम का फ्री रेंज का होता है और इवनिंग टाइम फ्री रेंज का होता है।
1: ये खर्चा कितना है आपका? लीज का है या अपना?
2: नहीं, ये अपना लीज का है।
1: लीज का है।
2: हाँ जी।
1: क्या लीज जाती है?
2: 20,000 रेंट जाता है इसका।
1: 20,000 जाता है। और यहाँ पे वर्कर कितने रखे हुए हैं?
2: दो वर्कर हैं
1: और संभाल लेते हैं।
2: बिल्कुल।
1: आप इसके अलावा क्या करते हैं? एजुकेशन बैकग्राउंड क्या?
2: जी जी,
1: इस बारे में बताइए।
2: मैं MBA हूँ
1: जी,
2: ऑपरेशन से। मेन काम मेरा प्रॉपर्टी का है,
1: प्रॉपर्टी में डील करते हैं। और उसके बाद ये आपने?
2: ये मैंने अभी स्टार्टअप किया 8-9 महीने पहले।
1: 8-9 महीने से किया?
2: हाँ जी।
1: आप इतने अच्छे धंधे में, आप क्यों आए मुर्गी पालन में?
2: एक्चुअली है क्या सर, धंधा आदमी हर कोई चाहता है एक्सपेंड करना अपना
1: जी,
2: तो वो तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है।
1: अच्छा,
2: ये साइड बिजनेस के लिए एक बिजनेस और स्टार्ट
1: किया। मतलब समथिंग मोर?
2: हाँ जी, समथिंग मोर
1: जी, मतलब कुछ और कर ले हटके।
2: बिल्कुल।
1: प्रेरणा कैसे मिली?
2: एक्चुअली है क्या, आप अगर मेरा बैकग्राउंड पीछे से देखेंगे तो मैं किसान हूँ।
1: अच्छा, कहाँ से है?
2: मैं अमरोहा से बिलोंग करता हूँ।
1: अमरोहा से?
2: हाँ जी। तो बाप दादा ये किसानी की है सबने, तो किसान सी से थोड़ा जुड़ाव भी है, लगाव भी है, और हमने गाय भैंस पाली है, मतलब बचपन से ये देखा है चीजों करते हुए। तो एक मन भी था कि कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए, अभी तो ये स्टार्ट फेस है। इसके अलावा गोट फार्मिंग और अदर बर्ड भी रखने का प्लान है इसमें।
1: मतलब अभी आपने कड़कनाथ से शुरुआत की है, आगे आपने गोट फार्मिंग करनी है और पोल्ट्री की दूसरी ब्रीड भी आप रखने का इरादा है?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
2: जी।
1: इतने शानदार बर्ड है आपके
2: जी,
1: जो चिकन है,
2: एडल्ट चिकन है। हाँ जी,
1: चिकन पर्पस से आपने ये
2: चिकन पर्पस से अलग रखे।

0: जी जी
1: सर्दियों के लिए कोई खास इंतजाम किया?
0: वैसे तो जो एडल्ट बर्ड होता है सर्दी में इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा। मैंने पिछली सर्दी में भी देखा हुआ है इसको,
1: क्योंकि अच्छे खासे
0: बर्ड है। मेन जो दिक्कत रहती है वो बच्चों को रहती है, तो बच्चों के लिए हमने भट्टियां रखी हुई है। अगर हम बच्चे पालते हैं तो हम ये जो स्टार्ट होगा लेइंग पे जब आ जाएगा तो वो वाला सेक्शन खाली हो जाएगा,
1: मतलब ब्रूडिंग का भी आपने ऑप्शन रखा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: आप इतने दिन से कर रहे हैं, 8 महीने 9 महीने हो गए आप
0: जी,
2: कैसा लगा आपको ये काम?
0: बहुत बढ़िया काम है
2: जी।
0: बस मेन काम है मार्केटिंग।
2: अच्छा,
0: अगर आपकी मार्केट नहीं है
2: जी
0: तो आप कुछ भी नहीं है, फिर तो आपको इसको बंद करना पड़ेगा। तो
2: यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ आपने
0: ये एक्चुअली है क्या? खाली इसने छोड़ा हुआ है कि जैसे ही वो लेइंग बर्ड स्टार्ट होगा
2: अच्छा।
0: सेक्शन बढ़ेगा तो
2: इसमें आ जाएगा,
0: तो इसमें आ जाएगा उतर, फिर बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे।
1: स्पेस ज्यादा चाहिए,
0: स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। हाँ जी,
2: यहाँ पे आपने अंडे की ट्रे रखी हुई है
0: जी,
2: मतलब स्टोर आपने
0: स्टोर यहाँ पे क्या हुआ है? रोज 2 दिन में 4 दिन का माल स्टॉक होता है, क्योंकि दूर जाता है प्रोडक्शन ये।
2: हाँ।
0: जो मार्केटिंग ऑनलाइन होती है वो अलग, यहीं से डिलीवरी जाती है। जो बड़ा स्टॉक होता है वो एक साथ होकर जाता है,
2: क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने ट्रे बांधी हुई है
0: जी, जी
2: मतलब
0: पैकिंग में जाता है,
2: रेडी
0: टू मूव है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
2: कड़कनाथ बहुत अच्छी ब्रीड है, और लेकिन लोग बीच में तैयार करने के बाद बेच नहीं पाए
0: जी,
2: आपने कड़कनाथ ही क्यों चुना?
0: बेसिकली है क्या, सारा गेम मार्केटिंग का था
2: जी,
0: और जिस जगह ये कड़कनाथ स्टार्ट किया वो विलेज स्टाइल में था।
2: अच्छा,
0: और विलेज में इसकी मार्केट नहीं है क्योंकि महंगा बर्ड है
2: जी,
0: अंडा भी महंगा है और चिकन भी महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता
2: जी।
0: इसलिए मैंने नोएडा और दिल्ली के जो पॉश एरिया है उनको मार्केटिंग चुनी है,
2: उनको टारगेट किया
0: और फ्लैट वाले क्लाइंट को टारगेट किया, कोठी वाले क्लाइंट को टारगेट किया है
2: जी।
0: जो अच्छी चीज खाना पसंद करते हैं उनके लिए फिर रेट मायने नहीं करता, वो 1000 और 2000 कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए।
2: तो तैयार चिकन आप किस रेट बेचते हैं?
0: तैयार चिकन अगर यहाँ से जाता है ड्रेसिंग होके तो 1200 रुपए का जाता है।
2: डिमांड कैसी है और जो रेवेन्यू आपको आ रहा है वो कैसे आ रहा है?
0: देखिए डिमांड ठीक आने लगी है, क्योंकि सर्दी बढ़ने लगी है तो अब डिमांड और बढ़ रही है,
2: बिल्कुल
0: रोज अब ऑर्डर आ रहे हैं। पहले शुरू में दिक्कत हुई मार्केटिंग, मतलब उस लेवल तक स्टार्ट नहीं हुई थी, लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे, अब धीरे धीरे काफी लोगों तक हम पहुंच लगे हैं, माउथ टू माउथ पहुंच लगे हैं। इन लोगों को हम माल दे चुके हैं, उनकी भी दोबारा रिपीट ऑर्डर आने लगे हैं
2: जी,
0: तो अब जाके बेस तैयार होने लगा है माल का।
2: मैंने देखा है जिन लोगों को जरूरत है उनको मिलते नहीं है
0: जी,
2: और जिन्हें देना है वो वहाँ पहुंच नहीं पाते। कहीं ना कहीं ये मार्केट का ही खेल है,
0: बिल्कुल
2: रिक्वायरमेंट पूरी भी नहीं हो पा रही है और जहाँ तैयार हो रहा
0: वहाँ माल बिक नहीं रहा,
2: पहुँच नहीं पा रहे,
0: बिल्कुल
2: ये एक बहुत बड़ा गैप है इसमें।
0: जी जी जी जी
2: जी। और आपने अपना ये सोशल मीडिया के थ्रू आपने अपनी मार्केटिंग को एनरिच किया?
0: बिल्कुल
2: जी,
0: सोशल मीडिया से क्या होता है कि आप कम टाइम में ज्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं।
3: भारत में कड़कनाथ मुर्गा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिले में ही मिलता है, किंतु कड़कनाथ की इस ब्रीड को अब तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाने लगा है। कड़कनाथ मुर्गे की तासीर गर्म होती है तथा देश से तकरीबन सभी हिस्सों में इस मुर्गे की काफी मांग रहती है। यह 3 प्रजातियों में पाया जाता है, जिसमें पेंसिल्ड, गोल्डन और झेड ब्लैक शामिल होते हैं। झेड ब्लैक मुर्गे के पंख पूरे काले होते हैं तथा पेंसिल्ड प्रजाति के मुर्गे का आकार पेंसिल की तरह होता है। वहीं गोल्डन प्रजाति के मुर्गे के पंखों पर गोल्डन छिटे पड़े होते हैं। कड़कनाथ मुर्गों की प्रजाति में आने वाला सबसे महंगा मुर्गा है। इसका रंग, खून, पंजे और आंखें आदि सब कुछ काले रंग के ही हैं। इसलिए इसे काले चिकन या काले मांस के नाम से भी जाना जाता है। बाजार में इस मुर्गे की कीमत लगभग 1200 रुपये प्रति किलो से 1800 रुपये प्रति किलो तक है। अन्य मुर्गों के मुकाबले यह केवल 5 से 6 महीने के भीतर ही तैयार हो जाता है। कड़कनाथ मुर्गे चारे में बरसीम और चरी आदि खाते हैं, अतः इन्हें पालने में लागत कम लगती है और मुनाफा काफी ज्यादा होता है। अपनी कई खूबियों के कारण इस मुर्गे की सबसे अधिक मांग है। इसकी एक खास बात यह भी है कि यह अन्य मुर्गों की तुलना में इनमें वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिसे खाने से शरीर को नुकसान नहीं होता। कड़कनाथ मुर्गा मूल रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मिलता है और इसकी कीमत सामान्य मुर्गों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा भी बेहद ही ज्यादा पाई जाती है। साथ ही इसकी हड्डियां और मांस का कलर भी काला होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तो सालो किसान भाइयों, हव हमली कड़कनाथ मुर्गानी वातियों, मारा सहयोगी भाई कमता डामोर देखी भिल्ली बोली माँ।
4: तो किसान भाइयों, कड़कनाथ एवो कुकड़ू से जो कि अपना झाबुआ जिला में पड़वा वालों से अने तीनी प्रदेश भर में अने देश भर में इन्होंने काफी डिमांड से अने ज्यादा डिमांड अने उत्पादन कम रहने का कारण इन्होंने ज्यादा इहुनी कीमत मळे छे। तो किसान भाईओ इना पाळवा हारू एक सही तरीका थी इनी देखरेख करवी पड़े अने इनो काळू मां अने पूरी दुनिया मां घणो ही कीमती अने घणो दुर्लभ अने कठिन मान्य जाय छे। तो किसान साथियों हमने तक पूरा विश्व मां 25 से ज्यादा कुकड़ानी प्रजातियों पाई जाय छे। तिनमां काळा मांसना नाम थी इना ने कड़कनाथ ना जाने से। तो इना इनमां भारत ना कड़कनाथ ने अलावा चीन नी सिल्की अने इंडोनेशिया नी आयाम सेनिनी अने वियतनाम नी ओके नामनो कुकड़ो काफी प्रसिद्ध छे। अने इना काला रंगनी मुख्य वजह थी फाइब्रोमिलेनोसिस नामनी एक अनुवांशिक गुण वालों रेसे अने इनमां मेलानिन पिगमेंट कड़कनाथ मांस हड्डी अने त्वचाना संचय थी थाय छे। कड़कनाथ भारतनो एक पंजीकृत मुर्गानी एक नस्ल से अने तिनाने हाल ही में मध्य प्रदेश ने माहना हारू भौगोलिक संकेत GI टैग मळ्यो छे। झाबुआ मध्य प्रदेश की पहचान यू आहर को केवल झाबुआ में पाई जाने वाली कुकड़ानी एक प्रजाति कड़कनाथ ना कारण पूरा देह में से। क्षेत्रीय भाषा में कड़कनाथ ने काला मासी ना नाम तो भी जाने जाए से क्योंकि इहनो मास चौंस कलंगी जुबान अने पोग नोक सांबड़ी इनी हगली काली रहसे अने इनो लोई भी काळू रहसे। तो किसान साथियों क्योंकि तिने हारू मेलानिन पिगमेंट नी ज्यादातर रेवाने कारण रहसे। इनमा माह मा प्रोटीन प्रचुर मात्रा मा अने वसा न्यूनतम मात्रा मा रहसे। तिनथी हृदय डायबिटीज रोगियो हारू यो काफी उत्तम आहार से। इहुनो मा हवाद वालो अने आसानी थू पचवा वालो रहसे। इहुनी इनी विशेषता ने कारण बजार मा इहुनी मांग काफी तेज रहसे अने काफी ऊंची दरी पर इना ज्यादा कीमत मा वेसाई जायसे। कड़कनाथ नी तीन प्रजातियो रहसे। पहली प्रजाति से जेट अने बीजी से ब्लैक अने अगली प्रजाति पेंसिल्ड गोल्डन पाई जायसे। इनमाथी जेट ब्लैक प्रजाति सबथी ज्यादा मात्रा मा अने गोल्डन प्रजाति सबथी कम मात्रा मा पाई जायसे। नर कड़कनाथ नो औसतन वजन 180 थी लगाड़ीने 2.5 किलो वजन तक नो रहसे। मादा कड़कनाथ नो औसतन वजन ना अने औसतन वजन 180 थी 2.5 किलो तक नी लगभग रहसे। अने इहनो औसतन वजन 125 थी 1.5 किलो तक लगभग रहसे। मादा कड़कनाथ हर वरे 110 थी 120 इंडा मेले से। अने इना इंडा नाना मध्यम आकारना हल्का भूरा गुलाबी रंगना अने वजनमा 30 थी 35 ग्राम वजन वाला रहसे। आर्थिक अने सामाजिक प्रभाव। तो किसान भाइयों मुर्गी पालन में कुक्कुट प्रबंधन नो महत्व पूरो योगदान रहसे। कड़कनाथ व्यवसाय में लगभग 80% समस्याओं कुक्कुट प्रबंधन में करीगी लापरवाही ने कारण पैदा थाय से। कड़कनाथ मुर्गी पालन वाला ने घणी एवी सावधानियों ने ध्यान राखीने आगाड़ी बढ़वानी सलाह आली जाय से कि कईनी भी कड़कनाथ फार्म ने एवा विकट समस्यानो सामनो नी करवो पड़े। इना हारू व्यवसाय में कदम राखवाती पहलू पूरो विश्वास नी हाथे जानकारी प्राप्त कर लेवी जोईए अने इहुनी ट्रेनिंग भी कर लेवी जोईए। ब्रूडिंग व्यवस्था नी जानकारी केम की ब्रूडिंग मां ही पक्षीनो भविष्य उत्पादन अने लाभ हानि निर्धारित थाय छे। कड़कनाथ चूजा मां सही समय पर टीकाकरण कार्यक्रम अने कड़कनाथ पक्षियों में सही समय पर कृमिनाशक दवाइयों नो प्रयोग करवानो यू सबथू पहलू प्रमुख काम रहेसे। कड़कनाथ मांस सेवन थी लाभ। तो किसान साथियों ओरिजिनल कड़कनाथ मांस में भरपूर प्रोटीन रहेसे अने वसा इनमां नानी बराबर रहेसे। इन्हीं हारू इनाने हगला खिलाड़ियों ने खावानी सलाह आली जायसे। कड़कनाथ माहना सेवन थी केवल शरीर ने बढ़ोतरी बल्कि रोग प्रतिरोधकता क्षमता भी इनथी बढ़े से अने अनेक बीमारियों थी इन्हें खावा थी वसी सके। अभिसार साथियों कड़कनाथ माहनी मांग देह ने अलावा विदेशों में घणो ज्यादा रेवाने कारण एक असल व्यवसाय अने व्यापार युवाओं हारू उपलब्ध थाय से। कड़कनाथ होम्योपैथी चिकित्सा अने तंत्रिका विकार में विशेष औषधि नो काम करे से अने आदिवासी लोग इनाने खून थी पूरा तन अने चीरकालीन गंभीर रोगों ना इलाज भी इनमा या करे से। मनुष्य इनमा इन थी माहनो उपयोग काम उत्तेजक ना रूप में लैंगिक ताकत बढ़ावा हारू भी प्रयोग करे से। आर्थिक अने सामाजिक प्रभाव तो किसान साथियों कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ ने द्वारा गांवों में किसानों ने हाथे बातचीत ना टाइम पर जो जानकारी केंद्र ना विशेषज्ञों ने भेड़ी करी कि इनमा कड़कनाथ नी ज्यादा मांग अने कम वृद्धि पर ज्यादातर मृत्यु दर मुख्य रूप थी हामी आवी से। इनी प्रजाति नी विकास अने गति अवरुद्ध कर्या जाय से कि वैज्ञानिक ने द्वारा किसानों नी हाथे विचार विमर्श नी बाद मा एक समान विचारधारा अने मुर्गी पालन ना इच्छुक किसानों नो एक समूह श्री कड़कनाथ समूह बनायो से अने कृषि विज्ञान केंद्र ना सहयोग थी कड़कनाथ प्रजाति ना विकास हारू वैज्ञानिक ने द्वारा कड़कनाथ पालकों ने आहार प्रबंधन जल प्रबंधन टीकाकरण रोग प्रबंधन अने विपणन आदि नी पूरी जानकारी प्रशिक्षण सैद्धांतिक रूप थो वताड़े गए से। कड़कनाथ पालन ने पूरी तकनीकी जानकारी हामजी करीने किसान स्वेच्छाथी हाउ इनो पालन करी रहा से अने कम लागत नी मुर्गी आहार नो प्रयोग भी करवा लाग्या से। आदिवासी किसान भाई इनी समूह थी काफी प्रभावित से अने कड़कनाथ पालन करीने आत्मनिर्भर बनी रहा से। तिनथी तिना फल स्वरूप इना गांवों थी आदिवासी भाइयों नो पलायन कम थाई रहा से अने एवी तरह थी व्यापार मा भी इहनी रुचि बढ़ी रही से। वर्ष 2019-20 मा कृषि विज्ञान केंद्र झाबवानी तरफ थी कड़कनाथ ने अजोला खवाड़ी ने इहनो प्रभाव वैज्ञानिक ने द्वारा देखे जाई रहा से तिहनो सकारात्मक प्रभाव देखवा मळी रहा से। कृषि विज्ञान केंद्र झाबवा ने द्वारा आर्या परियोजना निकरा परियोजना अने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ना अंतर्गत ग्रामीण युवाओं ने प्रशिक्षण आलीने तिहुन स्वावलंबी बनावानु काम भी करी जाई रहा से। हमने परिस्थितियों अने बाजार आकलन ना आधार पर आवाला समय में कड़कनाथ नी बाजार में मांग ज्यादातर बढ़वानी संभावना से अने शिक्षित बेरोजगार युवाओं हारू कड़कनाथ पालन में रोजगार नी भी अपार संभावनाओ बनी रही से। तो किसान साथियों कड़कनाथ प्रजाति ना माहनी खास खास विशेषताएं तो माहनी रचना नमी इनमा 17.5 थी लगाड़ी ने 73.5% तक रहे से अने प्रोटीन नी जो मात्रा 21 थी लगाड़े 24% रहे से अने वसा 1.94% तक रहे से अने राख 1.1 थी लगाड़ी ने 2.6% तक रहे से। ब्रायलर अने अन्य देशी मुर्गियों नी तुलना तो किसान साथियों विशेषताओं रहे से इनमा प्रोटीन कड़कनाथ में 24% अने बीजी अन्य कुकड़ियों में 18% થી લગાડીને 20% અને કડકનાથમાં વસાની માત્રા 1.94 થી લગાડીને 2.6% અને અન્ય બીજી મુર્ગીઓમાં 13% થી લગાડીને 25% લિનોલિક એસિડ તો કિસાન સાથીઓ એ કડકનાથમાં 24% અને અન્ય બીજા કુકડીઓમાં 21% કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા કડકનાથમાં 59 થી લગાડીને 60 મિલીગ્રામ અને 100 ગ્રામ અને અન્ય બીજી કુકડીઓમાં 218 થી લગાડીને 12 mg અને 100 ગ્રામ તક રહેશે. તો કિસાન સાથીઓ, કડકનાથથી રોજગારનો અવસર. કડકનાથ પાલનમાં કમ નિવેશની જરૂરત પડે છે અને કઈ રાષ્ટ્રીય બેંક આપણા દેહમાં પોલ્ટ્રીના વ્યવસાય હારું લોકોને પ્રોત્સાહિત કરવાનું કામ કરી રહેશે અને કમ વ્યાજ પર, કમ વ્યાજની દર પર લોન ભી ઇનાને ઉપલબ્ધ કરાવી રહેશે. જ્યાં પર કડકનાથ ચિકનની માંગ જ્યાદા હોય ત્યાં પર પ્રમોશન ભી કર્યો જઈ રહ્યો છે અને કડકનાથમાં ક્રાસ બ્રિડિંગ કરીને કમ સમયમાં લાભ કમાવાના તરીકાથી વસવું જોઈએ. તેનથી ના કેવલ એની પ્રજાતિને ખતરો છે, બલકી આવાળા દનોમાં એની માંગ ભી કાફી કમ થઈ જાય. તો કિસાન સાથીઓ, દેહના અનેક રાજ્યોથી યુવક અને કેવલ કડકનાથથી આપણી આજીવિકા સલાડી રહેશે, બલકી કડકનાથ માંસને વિદેશોમાં ભી સપ્લાય કરી રહેશે. અને કિસાન ભાઈઓ, કડકનાથ કુકુટ એકાઈનો વિતરણ ભી કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રથી તલાશ કરીને કિસાન ભાઈ એની જાણકારી પ્રાપ્ત કરી શકે. તો કિસાન સાથીઓ, કુકડા કુકડીઓની બીમારીઓથી વસાડવા હારું કુછ ઉપાય, એમાં સસ્તું પહેલું કિસાન ભાઈને સાફ સફાઈ પર પૂરું ધ્યાન દેવું જોઈએ અને સચ ઓહે પક્ષી તો સુરક્ષિત ઇન્સાન બી રહી શકે. તો કિસાન સાથીઓ, પક્ષીઓના બર્ડ ફ્લૂ અને અન્ય બીમારીઓથી વસાડી શકે. એ બીમારીઓ એક પક્ષીથી બીજા પક્ષીમાં દૂષિત પાણીથી અને તેઓના ખાન પાનથી અને તેઓના મૂત્ર પાંખડા એને જરિયેથી ઝાડુથી તેજીથી પ્રભાવિત થાય છે એના વસાડવા હારું ઉપાય. તો કિસાન સાથીઓ, દૂરી બનાવી રાખવાની એક પક્ષીને બીમાર પક્ષીઓથી અને પક્ષીઓના વાડામાં બંધ રાખવાનું, કેવલ પોલ્ટ્રી ફાર્મની દેખભાળ કરવા વાળાને એકી વ્યક્તિને તિહુકન જવું જોઈએ અને તિહુની એક ડ્રેસ બી રહેશે અને તેની ડ્રેસને કેવલ વાડામાં મહી જાય તેટલા ઘડી પહેરવી પડેશે અને તિહુનું ભોજન અને તિહુનું પાણી અને તિહુની દવાઈ આદિનો ઇંતજામ કરવા વાળા વ્યક્તિ હિ તિનાને તેની ડ્રેસને પહેરીને મહી ભરાવાનું અને તિંથો ભરાવાથી પહેલો તિહુના હાથ પાઓ અને પૂરા શરીરને અસલી સાફ કરી લેવું જોઈએ અને નકળ્યા બાદમાં બી પૂરી તરહે તેની ડ્રેસને પાછી તા મેલીને પૂરી તરહે સાફ સફાઈ કરીને મેળવી જોઈએ. સાફ સફાઈનું ધ્યાન રાખવો. તો કિસાન સાથીઓ, વાડામાં અને તિહુની આસપાસ સાફ સફાઈ રાખવી ઘણી જરૂરી છે. એના પ્રકારથી જીવાણુ અને વિષાણુથી વસાડી જઈ શકે છે. પક્ષીઓના વાડાને સાફ સુથરા રાખવાનો અને પક્ષીઓનું ભોજન અને પાણી રોજ બદલવાનું. પોલ્ટ્રી ફાર્મ વાડાને નિયમિત રૂપથી સંક્રમણથી મુક્ત રાખવો જોઈએ અને પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં બીમારીઓને પ્રવેશ કરવાથી રોકવું જોઈએ. આપણ આપોને બજારના અને અન્ય ફાર્મોથી અન્ય પક્ષીઓને આપણું સંપર્કમાં લાવવાળી ચીજો અને તેઓના ઓજાર મેં બી પૂરી તરહથી સાફ સફાઈ કરવાના અને નવા પક્ષીને કમથી કમ 30 દિન તક સ્વચ્છ પક્ષીઓથી સેટી રાખવાનો. તો કિસાન સાથીઓ, બીમારીને ફેલવાથી રોકવાનો અને વસાડવાના હારું પોલ્ટ્રી ફાર્મના સંપર્કમાં આવવાથી પહેલું અને બાદમાં આપણા હાથ સીતરા અને ખાહણાથી ખાહણા ધોવા જોઈએ. સંક્રમણ મુક્ત બીનાન કરવા જોઈએ અને બીમારી આપણ બીજી ઉદારની લેવાની. અગર આપણું બીજા ફાર્મોથી ઉપકરણ ઓજાર અને પોલ્ટ્રી ફાર્મ જો ઉધાર પર લાયા હોય, જેવી રીતે આપણી કન પાણીના બર્તન અને ખાવાડવાના બર્તન એવી કઈ પ્રકારની ચીજો આપણી કન અગર કમ પડતી હોય તો કિસાન ભાઈ તેને સંક્રમણ મુક્ત કરી લેવાની. સંકેતોથી જાણવાનું કે પક્ષીઓ પર નજર રાખવાની. અગર જ્યાદા પક્ષી મરતા હોય તો તેઓની આંખીઓ, ગળો અને જો શિરને આસપાસ હુંજન રહેશે અને રિસાવ થાય રહેશે. પાંખડા કલંગી અને પોગનો રંગ બદલી રહ્યો હોય અને પક્ષીના અંડા કમ આલવા લાગે તો એના ખતરા નયો એક બડો સંકેત છે. તો કિસાન ભાઈઓને એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે પક્ષીઓમાં અચાનક કમજોરી, પાંખડા કરવાનું એવી હરકત કમ થવા પર નજર રાખવાની. બીમારીની સૂચના. તો કિસાન સાથીઓ, પક્ષીઓમાં સામાન્યતઃ બીમારી અને મોતની સૂચના તુરંત નજદીકી પશુ ઉપચાર કેન્દ્રને મોકલવાની, આપણી રક્ષામાં હી આપણી સુરક્ષા છે.

0: तो किसान साथियों, ये बड़ाओ अलवाहारू हमारा कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ ना माध्यम थी आज इन्हीं वातियों ने हमो प्रसारित करी रहा से।
1: तो सालो किसान भाइयों, कार्यक्रम ने अगाड़ी बढ़ावी अने हमल ही आपड़ा झाबुआ जिला ना ग्राम बिंडल ना प्रवीण मेड़ा त्या मुर्गी पालन कड़कनाथ मुर्गी पालन करीने घणो असल अने मोटो मुनाफो कमाई रहा से। प्रवीण भाई बताड्यू के इनो मुर्गी पालन करवाना कम से कम 10-12 साल थाई गया से अने इनी वस मा त्या एक बार पण कई था बीजी मजदूरी करवा नी गया, केम की मुर्गी पालन मा तीनुन एत्रो जो फायदो थाई से की बीजू काम करवानी जरूरत नी पड़े अने हाव त्या मोटू फार्म खोलवानी पण वातियो करता हता। तो सालो किसान भाईयो, आपु हामली प्रवीण मेड़ा नी जुबानी तीनुन नी कहानी।
0: वो आज गांव मिंडल मा आयो से अने आ हरकु कड़कनाथ ना पालन हारू हमारी हाथे जो पालन करवा वालों जो है प्रवीण मेड़ा जी, गांव मिंडल, ग्राम पंचायत मिंडल, विकासखंड और जिला झाबुआ का रहने वाला है। तो प्रवीण जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: तो प्रवीण जी ये बताइए, बताड़ो कि हमारा कमून कुकड़ा कितना साल दी पाली रहा?
2: थाई गया 10-12 साल थाई गया।
0: अच्छा, तो 10-12 साल तमन कुकड़ा पालता थाई गया, तो तमन कुकड़ा पालवा थी लाभ थाय?
2: हाँ, लाभ थाय ने।
0: अच्छा, तो प्रवीण जी ये बताड़ कि कुकड़ा पालवा ने तमन प्रेरणा सबसे पहले की कम आवे ते तमन कुकड़ा पालो?
2: ये पहले की मार मम्मी पालती हम।
0: अच्छा अच्छा।
2: ते तीनी फिर धीरे धीरे हूँ तीनों सहयोग करो लगी और फिर हाँ हूँ खुद एकलो करो लगी गया।
0: ऐसा?
2: हाँ।
0: तो प्रवीण जी ये बताड़ कि कुकड़ा पालवा मा एवी कई प्रकार की समस्या आवे, केम की बाकी गांव मा हमें ये देखियो कि कई जगह एवा फार्म बने लेकिन बनेला पड़या रहा, पर तमारा आहार का मेंटल मा कई बार हमेशा देखी का कुकड़ा हमेशा ही कड़कनाथ मळे थी, इनो कारण होसे?
2: ये हम बाहर तो अभी खरीदी लावी, जैसे गांव मा कई ना पाई में ले एक बे 100-200-500 ना ती भी लावी, हम मतलब पासा लावी ना वे देही और हम खुद भी पाई बेरा का चूजा बड़ा मोटा करही, सब अंडा वंडा फिर सब वैसी।
0: तो प्रवीण जी ये बता कि जैसे कि कुकड़ा पालवा मा घना लोगों नहीं पाले, तो इनमा कई प्रकार की बीमारियां भी आती है?
2: हाँ, बीमारी आवे नहीं,
0: तो इन्हें निगरानी करवा तमन को संगत करो पड़े,
2: इन्हें वाले अपन देखो पड़े कि मतलब ये नीचे गीलू नहीं रहो जो है,
0: नीचे ना
2: फट, हाँ लीलू नहीं रहो जो है, फिर पानी नहीं लागू जो इन्हान, फिर बरोबर लाइट आलवानी, ये सब खाऊ पीऊ सब एक मतलब असली था जो है।
0: अरे इन्हें वटो भी आवे कहीं?
2: हाँ, दाना आता इसका अलग से।
0: और इन्हें टीकाकरण?
2: टीकाकरण आवे, रानी खेत ना आवे, एफ1 आवे, एफ2 आवे, सभी आवे इन्हें।
0: तो चूजा कहाँ था लावो तमो?
2: चूजा आज बता ही लावी।
0: तो कितना दिन चूजो कितना रुपया मिले?
2: हाँ, एक दिन चूजो मिले 60 रुपया में।
0: 60 रुपया?
2: हाँ।
0: तो उसमें कोई टीको लागे लावतो है?
2: हाँ, एक दिन में लगेलो एक ही आवे जी, पैदा था तेर नो आवे खाली टीको लगेलो।
0: अच्छा अच्छा।
2: फिर 7 दिन में लगाना पड़े, फिर 14 दिन में लगाना पड़े, फिर 30 दिन में लगाना पड़े, 1.5 महीना में लगाना पड़े, ये बदा चलता रहे, गंबोर रहे, लासोटो रहे, सभी रानी खेत में बदा रहे टीका।
0: तो प्रवीण जी, अगर तुम्हारा फार्म में निगरानी करवा जो व्यक्ति रहे तीना ने तीनों केवी तरह से तीना रहे जो
2: तीनान साफ मतलब कहना है तान तान तीनान तीनान तान रेवा जो है अनु मतलब ती कहीं ना कुकड़ा भेगू है वो खरेलू ने वो नहीं रेवा जो है।
0: अच्छा अच्छा।
2: अलग ही रेवा जो है ती है।
0: हाँ, तो आसपास में बीजान भी नहीं जावा देवानो?
2: हाँ, आसपास बीजान भी नहीं, बीजान भराव भी नहीं देवानो।
0: हाँ, तो हमने तमी कितना कुकड़ा पाल मिले
2: अभी? हम ते मार हो अभी 100-150 ना हो मई का
0: 100-150।
2: हाँ, और अभी थोड़े से बारिश नो सीजन से थोड़ी सी हम लीला था ये कुकड़ा में एकदम लोको थावा दौड़े हम।
0: हाँ,
2: लाइट नहीं समस्या में।
0: हाँ हाँ,
2: तेतरे कम पड़े
0: तो इन्होंने लाइट लो तापमान भी नीचे उतारो पड़ता है टाटना दिनों में।
2: हाँ
0: अच्छा अच्छा। तो ये बता दो कि वरे भर में तमो केतरा कुकड़ा मतलब पाड़ी वेसी से को?
2: वरे भर में ते 1,500 ना मतलब आप खुद ने घेरी भी पाड़ी सके और बाहर तो तब लावी वेच दे ती ती एम कन 4,000 वेच देता है। वरे भर में
0: 4,000 मुर्गा वेसी से को?
2: हाँ।
0: तो वरे भर में लगभग तुम्हारा केतरो इनकम था जाता है?
2: बरोबर हुआ 1-1.5 लाख में इनकम था।
0: 1.5 लाख?
2: हाँ।
0: तो पलायन पर बाहर भी नहीं जाऊँ पड़ता है?
2: हाँ, बाहर नहीं जाऊँ पड़े, घेर ना घेर।
0: तो घनी असल बात ये तो किसान भाइयों, हमारा प्रवीण जी घनी असल बात बता रही कि 1-1.5 लाख नो इनकम था जाए पर इना ने थोड़ी देख रेख करनी पड़े अने इनमा तुम्हारा घेर नो हाथे हाथे अपना खेती बाड़ी नो काम भी थाई जातो?
2: हाँ, खेती बाड़ी नो भी थाई जाए, कई नो बीजो भी काम हमारे लिए सब हमारे लिए
0: सब हमारे लिए।
2: हाँ, तो इना सुबह शाम मतलब लोग करो पड़े
0: देख रेख, सुबह शाम
2: देखो मदद करनी पड़े।
0: अच्छा अच्छा। तो और विशेष हो इनमें सावधानी रखनी पड़े,
2: विशेष पानी की,
0: पानी
2: और लाइट दोनों, ये
0: लाइट और पानी की सुविधा इनमें भरपूर रही पड़े।
2: हाँ हाँ,
0: और एक मंडक ने दिन में लागेल रहे पड़े है ना। तो किसान भाइयों, प्रवीण जी बता दियो कि कुकड़ा पालवा हारो घनी एवी चीजों ध्यान रखो पड़े, पर सबसे पहले इनमें विशेष पानी अने इना खान पान पर ध्यान देवी चाहिए। अने अगर मान लो कि नाना कुकड़ा भी लावता है आधा तमो,
2: हाँ
0: आधा मोटा भी हो, तो नाना मोटा कुकड़ा ने मतलब भेड़ा कर राखी सको कि अलग अलग रखो,
2: अलग अलग रखो पड़े।
0: अच्छा अच्छा,
2: नाना नाना नो अलग फार्म और मोटा नो अलग फार्म, देह नो अलग अलग फार्म।
0: तो प्रवीण जी ये बता दो कि कहीं अगर इना फार्म ने अंदर कोई कुकड़ो बीमार पड़ गई तो तुम इन्हें जानकारी कैसे निकालो,
2: तीना फट जाए तो बाहर निकाले तीने जांच करवानी, मतलब तीन अलग तो फिर ट्रीटमेंट करो पड़े,
0: ट्रीटमेंट करो।
2: हाँ,
0: और अगर वो मरी जाए तीन बाद में तीन कहाँ नाखवाना,
2: मरी जाए तीन बाद ले जावा डॉक्टर कर,
0: हाँ
2: तीना फिर चीर फाड़ कर बाटू कर दे,
0: तो तीनों बीमारी नो कारण,
2: हाँ कारण बता दे की बीमारी।
0: अच्छा अच्छा, तो ठीक है, घनी असल बात बता रही है प्रवीण जी तभी। और वरे भर में तमे इतना कुकड़ा पाली रहा तो तमने सरकार थी कई लाभ मिले हो?
2: हाँ, सरकारी समूह वाली भाइयों ने नहीं करे छे,
0: हाँ
2: तो इन्हों भी लाभ ले ही समूह।
0: अच्छा अच्छा, तो इनमें तमने समूह भी लाभ था यार, तमोन जैसे ज्यादा से ज्यादा अगर तुम्हारे कन कुकड़ा लेवा हारो तुम्हारा मार्केट कहाँ बेचवा जाओ तमो?
2: नहीं यार, झब्बा जिला में ही वैसे जी,
0: घेर बैठा आ
2: जाए, घेर बैठा आ जाए।
0: अच्छा अच्छा, तो पूरी उम्र नो जो कड़कनाथ कुकड़ो रहे तीनी तीन केतरा रुपया मे वेचाई सके?
2: पूरी उम्र नो कुकड़ो 800-900 रुपया,
0: 800-900 रुपया में। तो किसान भाइयों, घनी असल बात है कि कड़कनाथ कुकड़ा ने काफी डिमांड से, जेव रीते यो झाबुआ अने धार खरगोन इना जिला में अधिकतर पाके से, अने इनो वजन मतलब केतरा वजन नो कुकड़ो केतरा वेचाई जाए?
2: यो 1-1.5 किलो ना बीच में आवे, मतलब 500 ते लीन 800 रुपया ने।

0: આપણને એટલો લાભ થાય કે દવા ज्यादा उपयोग नहीं करवी पड़े,
1: ज्यादा दवा नहीं छिड़कवी पड़े,
0: नहीं छिड़कवी पड़े, एक थी दो बार बस। क्या तीन बार चार बार और कहीं ना हो कहीं मैं पांच बार ना की नहीं नहीं इमा फिर नुकसान थाई जाए।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ ज्यादा दवा छिड़कवा थी नुकसान थाई जाए,
1: नुकसान था तो लागत ज्यादा लागी जाए।
0: हाँ ज्यादा लागत लागी जाए, तो एक थी दो बार
1: ना खोल
0: तो छोया बीस पक जाता,
1: पक जाता। तो हकरू भाई बता की इनमा तीन साल में कितना साल में एक बार गहरी जुताई भी करनी पड़े?
0: तीन साल में
1: तो तीन तीन लाभ था,
0: तीन से जमीन टूटी जाए और गहराई में मतलब जमीन भी थोड़ी के दो दो साल तक तो अपन घास भी ज्यादा नहीं होगा, निंदवा में थोड़ा फायदो पड़े।
1: अच्छा अच्छा,
0: और जमीन भी पोसी रहे और पेड़ भी अच्छा जमता है
1: तो
0: फल ज्यादा दे,
1: फल ज्यादा दे। अच्छा हकरू भाई ये बता की फसल ओरिया बाद में किसान भाई ने जो तमे आप ये फसल हो रही हो तो तीन में सोयाबीन नु बी घेर नु आणियो के बाजार में तो आणियो?
0: वो तो बी पसाड़ी से।
1: अच्छा अच्छा,
0: अपन मन प्रसन्न पड़े तो थोड़ा छोटा छोटा दाना हो घेर ना तो नहीं और वाना नुकसान थाई जाए, कभी असल लावे नो रो बाजार थी ले आवो तो बाजार थी लावो तो मतलब अपन पैसा लागे घेर थू घेर नो भी होए।
1: हाँ हाँ, तो किसान भाई ने खर्चो कम लागे,
0: किसान भाई ने खर्चो कम लागे केम के बिना पैसा वसी,
1: पैसा वसी है। तो किसान भाइयों हकरू भाई ने कहू से कि किसान भाइयों ने आप किसान से तो किसान बी कोई बाजार में नहीं बनी रहते तीन हारू किसान भाई ने बी हारू अलग थी सालनो मारी तेनु अवेरी मेलवू जोई,
0: अवेरी मेलवू जोई
1: ताकि किसान भाई ज्यादा तीन फायदो मिली सके,
0: ज्यादा फायदो।
1: हाँ तो हकरू भाई ये बताड़ की जो आप ये तो थाई गया अपनी बीनी बात इनी बात में ये बताड़ की तू जैसे आप खेतर खेड़ी रहा तो तेना पाटला कितरे कितरे सीटी रहवा जाई?
0: पाटला लगभग डेढ़ वो सोया बीज का तो एक फीट,
1: एक फीट न रहवा जाई।
0: हाँ
1: अच्छा अच्छा,
0: तो और कपास बो?
1: हाँ
0: तो कपास में लगभग तीन फीट नो पाटलो सी।
1: तो आपने मक्की ने अने सोयाबीन वरी मिली ते मक्की ना ओलिया काटी मिले तमी किसान भाई ने जैसे सोयाबीन नानू रहतु है तो तीन में शूँ लाभ थाय मक्की जे निकली जाए तीन बाद में कई
0: तीमा मतलब एम थाय मक्की नो सहाड़ो जो से नी डोडी भी मजबूत रहे।
1: अच्छा अच्छा,
0: डोडी मतलब कितनी भी हवा आवे पड़वा नहीं मांगे।
1: अच्छा,
0: तो मक्की ने नुकसान दे और सोयाबीन
1: सोयाबीन नुकसान नहीं था, तो फायदा
0: है दो फसल एक सरी किया।
1: अच्छा अच्छा, तो इन्हीं बात में आप बात करिए कि हकरू भाई की अपन निंदाई गुड़ाई नहीं बात करिए, अगर निंदाई गुड़ाई नहीं बात करिए तो निंदाई गुड़ाई हारू की कम करवो चाहिए?
0: निंदाई गोडाई हारू तो एक महीना अंदर अंदर निंदी गोडे साफ सफाई कर देवानो अनाज ने।
1: अच्छा अच्छा, अगर किसान भाई घना खरा किसान भाई बाजार ने दवा लाने भी साटी रहा से तो
0: बाजार ने दवा लावा थी तो थोड़ा नुकसान भी से जमीन माता ना।
1: अच्छा अच्छा,
0: मारे इतना साल था कि हूँ फसल करी रहा से।
1: हाँ हाँ,
0: हूँ भी नानो किसान से बड़ा किसान नहीं हूँ।
1: हाँ हाँ,
0: पर आज तक मैं सारा ने दवा जमीन पर आज तक टपकू नहीं पड़वा दे, और घना लोग लावीन साटी रहे पण तेमा थोड़ी फसल वगड़वाम जाय से कमलाई जाय फिर पासो ताकत धरे तीनी दवा लावीन छिटकारो मारवो पड़े तो पासी ताकत धरे। और आपो दाड़क्या ले ली ने दाड़क्या मा से
1: मोहगू पड़ी जाए।
0: हाँ मोहगू पड़ी जाए
1: तो मतलब फसल ना उत्पादन ने लागत करता अपने निंदाई गुड़ाई में खर्चो ज्यादा थाई जाए,
0: खर्चो ज्यादा थाई जाए।
1: तो हकरू भाई एक बात ये भी है कि अगर तुम ये भी बात कहती कि अगर आप सारू कम करूँ तो उनाला ने खेड़ भी काफी ज्यादा मार ले,
0: काफी बिल्कुल उनाला में खेड़ मार लो तो सारो नहीं था,
1: सारो नहीं था,
0: नहीं था।
1: तो किसान भाइयों महंगी दवा लावा ने बजाय आप उनाला ने खेड़ ज्यादा मार दो,
0: मार दो
1: तो थोड़ा घणो सारू वसे ती निंदण में
0: साफ थाई
1: जाए, साफ थाई जाए,
0: साफ थाई जाए, ज्यादा पैसा नहीं लागे
1: आपू
0: निंदाई गोडाई ना।
1: तो हकरू भाई ये बताड़ की आप हाउ इनमें जो सुमाहा मान लो कि हमने तो सुमाहा की खेती में सोयाबीन और मक्का करी मिली पर मान लो अगर कोरड रीगी तो किसान भाई ने हूँ करवो जाइए?
0: अगर कोरड रीगी
1: जिना किसान भाइयों कन पानी नी व्यवस्था,
0: जिना कन पानी नी व्यवस्था है जो पानी वाल फेर दे, अगर नी व्यवस्था है

0: ब्रेक ना बाद एक वक्त फिर देखी स्वागत है तुम्हारो कार्यक्रम खेतीबाड़ी मा। तो सालो किसान भाइयों हाव हा मळी सोयाबीज नी तकनीकी खेती के केवी रीते अधिक थी अधिक सोयाबीज नी खेती नी उपज लेवा हारू आपुन कई नी बातियों नी ध्यान राखवी जोवे ये बधी बातियों बताड़ी रहा से मारा सहयोगी भाई कमता डामोर कृषि विज्ञान केंद्र झाबवाना सहयोग देखी। तो सालो किसान भाईयो वार नी करी अने हा मळी कार्यक्रम खेतीबाड़ी।
1: तो किसान साथियों खेतीबाड़ी कार्यक्रम ना माध्यम थी हूँ आज किसान भाइयों ने सोयाबीन नी खेती ना बारा मा जानकारी हमलावा जाय रह्यो छे। तो किसान साथियों सोयाबीन घऊं फसल चक्र अपनावाथी गेहूं नी पैदावार मा काफी बढ़ोतरी पाई गई से अने सोयाबीन नी बाद मा घऊं लगाड़वा पर घऊं फसल ने सोयाबीन फसल ने द्वारा सोडेल नत्रजन अने अन्य तत्व फायदो घणो पुगाड़े से। तो किसान साथियों तीन थी फसल उत्पादन बढ़ी जाए से उत्पादन ने प्रभावित करवा वाला कारक। तो किसान साथियों तथ्यों थी यो स्पष्ट थायु से कि सोयाबीन मध्य प्रदेश मा खरीफ मौसम मा घनी ज्यादा क्षेत्र मा उगाड़ी जाए से खरीफ फसल ना जो रूप मा इहुनी उपयुक्तता अने आर्थिक लाभे किसानों ने आकर्षित करियो से। तीन थी खरीफ मा जो पड़ती जमीन जो पड़त जमीन रहे से अने तिहुनो अच्छा दन करियो अने कई परंपरागत खरीफ फसलियों ने भी विस्थापित करीने गोण करना कियो से किसानों ने आर्थिक लाभ थी प्रभावित थाई ने हाल ना जो खेतरों ने जो मेडियन तोड़ीन सोयाबीन खेतर मा बदलानू अने सीमांत जमीन मा भी खेती करवा लाग्या से एवा प्रकार थी सोयाबीन मध्य प्रदेश ना वृहद क्षेत्र मा भी उगाड़ी जावा लाग्यू छे। तो किसान साथियों हमने सोयाबीन उत्पादन ने सीमित करवा वाली प्रमुख समस्याओ एवी रीते से जेड नो गलन पीला मोजेक जेवी बीमारियों नो व्यापक प्रकोप नवा नवा कीटू नो प्रकोप अने भूमि मा आवश्यक मुख्य सूक्ष्म तत्वों नो भी असंतुलन बनवानो एक कारण रहेशे। भूमि मा कार्बनिक पदार्थ नी कमी समुचित जल प्रबंधन नो अभाव खरपतवार नी समस्या अने मौसम नी प्रतिकूलता हमने इनी समस्याओं ने सालता ही किसान सोयाबीन नी खेती मा ज्यादातर कठिनाई महसूस करी रहा से एवी स्थिति मा वैज्ञानिक खेती अने अनुसंधान नी उन्नत तकनीकों नो महत्व भी हजू बढ़ी जाय से इना ने अपनावी ने किसान भाई ज्यादा उत्पादन करीने लाभ कमायो जाय सके से। भूमि नो चयन अने तैयारी सोयाबीन अम्ली क्षारीय अने रेतीली भूमि ने सोड़ी ने हर प्रकार नी मिट्टी मा पैदा थाई जाय से। सोयाबीन नी खेती अने खेतर मा ही करवानी अने जहां जल नो भराव नी समस्या नी होय ता रबी नी कटाई नी तुरंत बाद मा गर्मी मा गहरी जुताई कर देवानी। उनाळा नी खेड़ाई थी जमीन ना नीचे आश्रय पावाला कीटो अने बीमारियों ना अवशेष नष्ट थाई जाय से अने भूमि नी जल धारण क्षमता अने यूनी दशा मा भी काफी असल सुधार थाई जाय से। तो किसान साथियों गोबर नु खातर या फिर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या सिंगल सुपर फास्फेट ने खेतर मा समान रूप थी बराबर छिड़कवा अने वखेरवानी बाद मा जुताई करीने इना खेतर ने असली तरह थी तैयार कर देवानु। खेतरनी मिट्टी भूरभूरी ओहे थाई जाए अने खरपतवार नष्ट थाई जाए एवा प्रकार थी खेड़ोण करवानी। तो किसान साथी बुवाई नो समय सोयाबीन नी बुवाई 22 जून थी लगाड़ी ने 7 जुलाई नी वस मा करवी घणी असल उत्तम परिणाम आले से। दिन मा परिस्थिति वंश कुछ थोड़ा दन बाद मा आगाड़ी पछाड़ी थावाती कोई खास प्रभाव नहीं पड़े से। जातियों नो चयन तो किसान साथी सोयाबीन नी जो जातियों चुनाव तीना क्षेत्र अने वर्षा ना औसत अने भूमि ना प्रकार मा ध्यान राखी ही करवानो। औसत मा जो कम वर्षा अने हल्की मध्यम भूमि वाला क्षेत्रों मा वेगी पकवा वाली जातियों अने औसत थी ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मा मध्यम थी भारी भूमि वाला क्षेत्रों मा मध्यम अवधि नी जातियों लगाड़वू उचित रहेशे। सोयाबीन नी उन्नत जातियों अनुवांशिक रूप मा शुद्ध अने कम थी कम 70% अंकुरण क्षमता वाली रेवी जोईए। मध्य प्रदेश ना विभिन्न जलवायु क्षेत्रों हारू सोयाबीन नी अनुकूल जातियों ने भी उन्नतशील प्रजातियों जेवी रीते अने इहुनी विशेषताओं ने भी वताड़ी गई से। तो किसान साथियों उत्तम बीज अने बीजनी दर સોયાબીન બીજ 60-80 કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટર નિર્ધારિત છે અને ઝેર બીજ નાના અને જ્યાદા ફેલવાવાળી જાતિઓનો પ્રજાતિ ઓહે તો 60-70 કિલોગ્રામ અને મોટા બીજ ઓહે તો કમ ફેલવાવાળી પ્રજાતિ ઓહે તો 80-100 કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટર બીજનો પ્રયોગ કરવાનો. સોયાબીન બીજની અંકુરણ ક્ષમતા 70% થી જ્યાદા રહેવી જોઈએ અને આનુવંશિક રૂપથી પૂર્ણતઃ શુદ્ધ અને તીવ બીજનો

व्यापारिक मात्रा 3.25 लीटर प्रति हेक्टर ना हिसाब थी 600 लीटर पानी में घोल बनाने खेतर में अंकुरंतु पहलू अपना मक्कीना जो पोया उगवातु पहलू आपड़ती छिड़काव कर देवो अने तीने अलावा ओरवाना 15-20 दिन बाद में डोरो सलाड़ी ने निंदाई करवानी। तो किसान साथियों लगभग 30 दिन बाद में होल सलाड़ी ने मिट्टी ऊपर सड़वानु काम यानी कि 22 दिन बाद में मक्की हलवानु काम करवु जोईए। तो 20 दिन थी 22 दिन बाद में मक्की हलाई जाए ताकि मक्की हलवा थी जेड़ियो भी ऊंडियो उतरे अने पौधों भी हवा पवन थो भी नहीं पड़ी सके। अगर आप मक्की हाली तो बीजा एवं नाना मोटा खरपतवार भी नीचा दबी जाए अने मरी जाए से अने त्या तीन थी किसान भाई ने काफी असल फायदो थाई से। तो लगभग 30 दिन बाद में होल सलाड़ी ने मिट्टी सलाड़वानु काम हलवानु काम किसान भाई ने समय पर कर लेव जोईए। अगर इनथी मोटी अगर मक्की थाई जाए तो तीन में डगरा सरके तीने कारण भी नुकसान काफी मक्की पड़ी जाए से। तीन हर किसान भाई ने यह ध्यान रखे जोईए कि हर काम समय पर करव जोईए। तीन थी भूमि में वायु संचार भी असल थाय से अने वसेला जो खरपतवार से जो झाड़का से त्या जेड़ू सहित उखड़ी ने खत्म थाई जाए से। तो किसान साथियों कटाई अने मक्का नी उपज केतरी थाय तने केवी की किम तीना बारा में आप बात करिए तो देखी जाए तो किसान भाइयों जेर मक्का ने ढाकवा वाला पायड़ा पीला पड़वा लागे अने दाणा में 25-30% नी नमी अने मक्की नी कटाई करवी जोईए। दाणा में 13-14% नमी रहेवा पर शेलिंग करी जाए। किसान साथियों उचित भंडारण हारू नमी नो अंश लगभग 8-10% तक रहेवो जोईए। पौध संरक्षण तो किसान साथियों कीट अने नियंत्रण मक्कानी फसल में सफेद लट व्हाइट ग्रप ने थूर छेदक इली मोइला चेम्पा एफिड्स भुट्टो ने डोडियो ने खावाली इलाल अने फड़का अने सैन्य कीट ज्यादा नुकसान पुगाड़े से। तो किसान साथियों बात करी जाए तो आपड़ सफेद लट इना इलाड़ो पौधा ने जेड़ी ने खाई ने काफी नुकसान पुगाड़े से। तो इना नुकसान हारू सफेद लट ने द्वारा ग्रसित जो खेतर में नियंत्रण हारू कटाई ना तुरंत बाद में गहरी जुताई कर देवी जोई अने ये काफी लाभदायक रहेशे। खेतर में वगर हड़ेलू गोबर ना खातर नो प्रयोग नहीं करवानो अने प्रति हेक्टर 25 किलोग्राम थीमेट नो खेतर में खेतर तैयार करता वक्त इनमें भुड़काव करवो जोई। तो किसान साथियों थूर छेदक इलाल जो तना छेदक इलाल ना नाम थी जानी से अने या मक्की एक जुवार या जुवार नो घणो ही विनाशकारी कीट से। इलाल इनी इलाड़ो शुरू में कूड़ा कूड़ा पायड़ा ने खाई ने मई भराई जाए से अने तीना पौधा नी वसमानो भाग खाई ने तीना हुकार नाखे से। डेड हार्ट डोड हट्यो बनी जाए से डोड फूट्यो पौधो अने ग्रसित पौधा में जो सबथी आगाड़ी पायड़ा ने खाई ने देखवा पर इनमें एक लेण हरकू हगड़ा सारा नाना नाना घारा कर नाखे से। तो किसान साथियों इन्हें रोकधाम हारू इली नो प्रकोप करवा करवा हारू इनो रोकवा हारू प्रकोप ने अनुसंचित फसल चक्र अपनावो जोई। बुवाई नु शीघ्र सामान्यतः जुलाई ना पहला हफ्ता तक पूरू कर लेव जोई। कटाई नी बाद में फसल ना जो अवशेष ने भी राणा रहेशे तीना भी खत्म कर देवा जोई अने रासायनिक कीटनाशकों द्वारा नियंत्रण हारू पौधा नी नानी अवस्था में फोरेट 10G ना 3-4 दाणा पौधा नी जो भूंगली रहेशे तीनी मां नाखवानी अने पौधा नी मोटी अवस्था में एंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टर ना हिसाब थी इनो छिड़काव करवो पड़े से। तो किसान साथियों हाँ देखी जाए जो भुट्टा ने डोडियुन खाओ वाली इलाड़ियो तो किसान साथियों ये इलाड़ ना बारे में आप बात करिए देखी जाए तो किसान साथियों इलाड़ भुट्टा ना दाणा ने खाई ने नुकसान काफी ज्यादा पुगाड़े से। तीन थी फसल उत्पादन में भी कमी आ जाए से अने तीन थी जो मक्की खाई तीन में हवाद में भी कमी आ जाए से। तो किसान साथियों इन्हें रोकधाम हारू कार्बोरिल 10% डस्ट नो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर ना हिसाब थी भुड़काव करवो जोई तीन थी किसान भाई इनो नियंत्रण करी सके अने हाउ मोइला चेम्पा कीट। तो किसान साथियों या कीड़ा मांजरिया जेर नंगलो नकलता वक्त तीहुनो रोसू ही ने फसलियों पर नुकसान काफी ज्यादा मात्रा

0: हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। और आइए, स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से।
1: आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो मेहमान, जो कलाकार हमारे साथ हैं, उनका नाम है भारत जानी जी। हम उन्हीं से बातें करेंगे, उनके गीत सुनेंगे। तो जैसा हमेशा होता है, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जानी साहब के गाए हुए इस गीत से।

0: बहुत ही प्यारा गीत। भारत भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए। प्रोग्राम को शुरू करते हैं और मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म स्थान क्या है और उसके बारे में कुछ खास बताइए।
1: जी, मेरा जन्म गुजरात के राजकोट शहर में हुआ जहां मेरा ससुराल है, और यहां की खासियत यह कि महात्मा गांधी ने 1887 में राजकोट की 164 वर्षों पुरानी अल्फ्रेड हाई स्कूल से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जो कि अब मोहन गांधी हाई स्कूल नाम से जानी जाती
0: है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आइए दोस्तों, जानी साहब की आवाज में एक गीत सुनते हैं।

0: प्यारा गीत। जानी साहब, अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जब छोटे थे, जब बच्चे थे बचपन में, तो क्या बनना चाहते थे?
1: जी एक्चुअली मेरा ड्रीम था इंजीनियर बनूं, लेकिन अच्छा परिणाम नहीं आ पाए, इसलिए फिर मैं कॉमर्स से स्नातक हुआ।
0: जी तो इस बात से हम लोग सभी लोग बचपन में कुछ ना कुछ सोचते हैं बनने के लिए, लेकिन किस्मत और मुकद्दर हमें कहीं लेके जाता है और वहां पर भी हम भरपूर सफल होते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना, आइए जानी साहब की ही आवाज में एक प्यारा सा गीत भी

0: भारत भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है?
1: जी, मेरी सबसे पसंदीदा गीत गजल है, गुलाम अली साहब की, चुपके चुपके रात दिना सुबहाना याद।
0: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, गुलाम अली साहब की ये प्यारी सी गजल। आइए दोस्तों, सुनते हैं भारत भाई की ही गाई हुई ये नगमा।

0: है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा मजेदार सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। अगर आपको आपकी तीन इच्छाएं पूरी करने वाला कोई जिन आपको कहीं से मिल जाए तो क्या मांगेंगे आप?
1: वैसे बहुत आपका रोचक सवाल है, मगर मैं मानता हूं कि मुझे ईश्वर ने मेरी हैसियत के हिसाब से बहुत कुछ अधिक दिया है। फिर भी मेरी ये ख्वाहिश रहेगी कि जिनका मैं रूही हूँ उनको कुछ लौटा सकूं।
0: जी तो कोशिश कीजिए, तीन इच्छाएं मांगिए तो सही, मजा आएगा।
1: ये कोशिश कि अच्छा मैं गाने वाला बजू या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकूं, मतलब उस तरह से वो स्केल में या वो लेवल में चला जाऊं या अच्छे गजल गाती रहूं, वही मतलब वही मेरी इच्छा है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने सुना, भारत भाई संगीत में ही अपनी महारत हासिल करना चाहते हैं, संगीत में ही डूबे रहना चाहते हैं। तो चलिए हो जाए फिर इसी बात पर भारत भाई का गाया हुआ एक और गीत।

0: बहुत ही प्यारी गायकी। तो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि आपकी हॉबीज क्या हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
1: जी, मैं ज्यादातर संगीत में सुनता रहता हूँ, गजलें या वो सब सुनता रहता हूँ। उसके अलावा मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, जो मेरी एक स्पोर्ट्स हॉबी है, और शायरी भी पढ़ता रहता हूँ, वो भी मुझे अच्छा शौक है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों एक और गीत सुनते हैं, भारत भाई का गाया हुआ।

0: भरत भाई बहुत खूबसूरत गीत। आगे बढ़ते हैं, एक मजेदार सवाल फिर से। अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: बहुत ही मजेदार सवाल है आपका, मगर मुझे इस रेफरेंस में एक हरिवंश राय जी की, बच्चन जी की एक सुंदर कविता याद आ रही है
0: जी।
1: ख्वाहिशें नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो वो बस काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जितनी जिसकी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे।
0: अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। जिसको जितनी इच्छा थी उसने उतना ही पहचाना मुझे, क्या कहा है साहब। तो आइए दोस्तों एक और गीत सुनते हैं, खूबसूरत सा।

0: भारत भाई आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हर दिन अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते हैं?
1: ये इसके मतलब मुझे ये याद आ रहा है कि मैं सोहनलाल द्विवेदी की कविता को गुनगुना लेता हूँ, जो ज्यादातर वो ये भी है उनका नाम की वजह हरिवंश राय बच्चन का नाम बोला जाता है ये कविता कैसे, और
0: जी
1: मैं ये मन में गुनगुना लेता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश
0: जी
1: करने वालों की कभी हार नहीं होती।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको खुद एक पक्का शायर होना चाहिए साहब। बेहद खूबसूरत। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारी सी गीत भारत भाई का गाया हुआ।

0: भारत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। अब हम हमारे प्रोग्राम के उस पादान पर आ गए हैं जहां मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके ही जैसे सिंगर्स को, जो गाने वाले लोग हैं, उनको कोई मैसेज दीजिए।
1: जी, सबसे पहले मैं आपका भाई हूँ कि मुझे यहाँ पेश होने का अवसर दिया। फिर मेरे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, मेरे एसएम के साथियों, प्रपोशाली जी का आभार हूँ, जिनका मेरे संगीत के सफर में बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं यही कॉमन मैसेज देना चाहता हूँ सबके लिए, मुझे मेरे पर भी एप्लीकेबल है कि हर कोई अपने समय क्षेत्र के आधार पर काम करता है। एग्जाम्पल मैं दूं कि जैसे न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया से 3 घंटे आगे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैलिफोर्निया धीमा है या न्यूयॉर्क तेज है। दोनों अपने अपने समय क्षेत्र के आधार पर काम करते रहते हैं। ऐसे आप सहकर्मी मित्र, आप कोई आगे निकल जाएगा ऐसा आपको लगेगा, कभी कोई पीछे रह गया ऐसा लगेगा, तो किसी की ईर्ष्या ना करे या उनका मजाक ना उड़ाए, क्योंकि सब अपना अपना समय क्षेत्र में है। आप अपने समय क्षेत्र में हो, वो उनके समय क्षेत्र में है। रुको, मजबूत बनो और अपने प्रति सच्चे रहो। सभी चीजें आपकी भलाई के लिए मिलकर काम करेगी। आप लेट नहीं हो, आप जल्दी नहीं हो, आप बहुत समय पर है, आप अपने समय क्षेत्र में है। थैंक यू।
0: बहुत बहुत प्यारी बात, बहुत ही सुंदर बात। दोस्तों, आपने सुना, तो आइए एक गीत भी सुनते हैं भारत भाई का।

0: भाई, चलते चलते हमारे सुनने वालों के लिए भी एक संदेश दे दीजिए।
1: यही बोलूंगा कि आप अपने जो भी जिसमें भी आप प्रोफेशनली काम करते हो उसको मन लगा के करिए। गॉड इज ग्रेट, वो हमेशा अपनी चीजें अपने पास रखता ही है, वो हमेशा नोटते रहता है आपके क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो। सो बी ऑनेस्ट एंड हम्बल इन योर वर्क। थैंक यू।
0: फैंटास्टिक, बहुत ही सुंदर संदेश दोस्तों आपने सुना। भारत जानी साहब हमारे प्रोग्राम में हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में अपने गीत दिए, हमारे साथ बातचीत की, आपको संदेश दिए। मुझे उनसे बात करके, उनके गीत सुनकर बहुत मजा आया। भारत भाई, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए।
2: तो दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है। सुन

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आज के कलाकार का एक और नया एपिसोड लेकर दोस्तों मैं हाजिर हूँ आपके सामने। और आज जो प्रतिभा, जो टैलेंट, जो गायिका हमारे साथ हैं, वो हैं गीता मनी जी। बाकी मैं उन्हीं से पूछूंगा, वो ही अपने बारे में बताएंगे। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे सभी सुनने वालों को अपने बारे में बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं।
1: सबसे पहले समीर जी, आपको और रेडियो एसएन के सारे श्रोताओं को और नितिन जी को मेरा धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और मुझे श्री शिव शंकर जी ने रेफर किया, उनको भी मेरा धन्यवाद। मैं चेन्नई में रहती हूँ और मातृभाषा मेरा तमिल है, पर मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो पूरी सारा कुछ दिल्ली में था। मैं बैंक में सर्विस करती थी अप टू 2000, और 2000 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, और उसके बाद करीब 8-9 साल मैं आई वाज वर्किंग एज अ स्पेशल एजुकेटर फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। और उसके बाद अभी पिछले 5-6 साल से मैं I'm again a student after all my working life. I'm learning relearning Carnatic music. This is the gist of myself. And I'm a very spiritual. What do you say? Aastik. मैं आस्तिक हूँ, तो इसीलिए मेरा पहला गाना भी ए मालिक तेरे बंदे हम फिल्म दो हाथ
0: दो आंखें 12 हाथ से जी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें इस प्यारे से प्रोग्राम को और सुनते हैं ये गीत जो गीता जी ने हमारे लिए प्रिपेयर किए।

0: बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हुए गीता मैम, हमें अपने थोड़ी गायन के बारे में बताइए, किस तरह की, पहली बात तो ये कि आप कब से गा रही हैं, दूसरी बात किस तरीके के गीत या संगीत म्यूजिक आपको पसंद है। आपने बताया कि आप कर्नाटक म्यूजिक सीख रही हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कर्नाटक म्यूजिक ही सीख रही हैं तो कर्नाटक ही म्यूजिक पसंद होगा, हो सकता कोई दूसरा म्यूजिक भी पसंद हो, इसको ले जाइए।
1: हाँ जी, मेरे बचपन से ही मुझे गाने का शौक था, और वैसे मेरी गायकी जो है वो मेरे माताजी से है, जो क्लासिकल सिंगर हैं कर्नाटिक शैली के, और बचपन से ही हमारे घर में वो तानपुरा के साथ गाती थी और हमने वो सब देखा है, और हम मुझे भी उन्होंने सिखाया है। तो 12-13 साल तक आयु तक तो मैंने उनसे सीखा था कर्नाटिक म्यूजिक, वो भी दिल्ली में शास्त्रीय संगीत, पर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट पूरा चला गया। आई लॉस्ट माई इंटरेस्ट इन लर्निंग कर्नाटिक म्यूजिक, सो सिर्फ फिल्मी गीत है, भजन और गीत वगैरह जो भी गजल वगैरह होते थे ना वो मैं गाया करती थी। एंड आई वॉज, एज आई टोल्ड यू, आई वॉज वर्किंग इन द बैंक, तो बैंक में अब जो बैंक में होते थे सारे कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह, उनमें सारे सब में हम पार्टिसिपेट करते थे, बट द कंडीशन वॉज वी शुड नॉट सिंग एनी फिल्मी संगीत फॉर द कॉम्पिटिशन्स, दैट वॉज अ रिक्वायरमेंट। तो आई वॉज, माई म्यूजिक वॉज गोइंग ऑन बट आई वॉज नॉट, मैं कुछ सीखती नहीं थी प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में सीखती नहीं थी, पर गायन तो होता ही था। और एक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज, आई पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोग्राम कॉल्ड लहर लहर संगीत, जो दूरदर्शन में हुआ था। वो उस टाइम में सिर्फ दूरदर्शन ही था, कोई और चैनल्स थे नहीं, और दूरदर्शन में उसमें ये कंडीशन था कि आपको अपनी मातृभाषा को छोड़कर किसी और लैंग्वेज में गाना है, और आई वाज, आई मीन लॉट्स ऑफ पीपल हैड कम फॉर द ऑडिशन, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नंबर, एंड मेरी भी सिलेक्शन हुई थी भगवान की दया से, एंड आई सैंग असमीज सॉन्ग। और एक और बात था कि उस टाइम ना हमारे वहाँ काफी बंगाली लोग रहते थे जहाँ हम दिल्ली में रहते थे, दो इट वॉज नॉट ए बंगाली एरिया, तो आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बंगाली म्यूजिक ग्रुप, तो आई वॉज ओनली नॉन बंगाली देयर, सो आई कुड लर्न सम बंगाली सॉन्ग्स एंड वी यूज्ड टू परफॉर्म इन ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। दिस इज माई म्यूजिक कैरियर। बट देन वॉट हैपन आफ्टर माई 30 साल के बाद ना, मैं बिल्कुल आई शिफ्टेड टू साउथ, और फिर अगेन माई बैंक वॉज कंटिन्यूइंग, तो पर कोई मेरा गायन वायन से बहुत दूर ही रह गई, कुछ आई वॉन्टेड टू लर्न पर कुछ हुआ नहीं। अपने उसके बाद भी वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद भी मैंने ट्राई किया मद्रास में टू चेन्नई में टू स्टार्ट लर्निंग कर्नाटिक म्यूजिक अगेन, पर मेरे से उन लोगों ने कहा यू आर वेरी ओल्ड, यू आर ऑलरेडी इन योर लेट 30s, तो तुम तो सीख, बिकॉज इट वॉज अ यूनिवर्स यू नो मद्रास म्यूजिक अकेडमी विच इज वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड, तो उन लोगों ने कहा नहीं इतने यू नो बड़े लोगों को तो हम सिखाते नहीं है, यू हैव टू गो टू अ प्राइवेट ट्यूटर। उसके बाद मैंने छोड़ी दिया, एंड वेरी रिसेंटली नाउ आई एम इन माय, व्हेन आई वाज इन माय मिड 50s आई अगेन स्टार्टेड रीलर्निंग कर्नाटिक म्यूजिक, दिस इज माय म्यूजिकल द जर्नी विद माय म्यूजिक।
0: वेरी वेल, बहुत खूब। तो जाहिर सी बात है बहुत हैपनिंग जर्नी रही है गीता मैम की, और बहुत बहुत सारा प्यारा सा म्यूजिक भी गीता मैम ने प्रोड्यूस किया, परफॉर्म किया और इंजॉय भी किया। तो चलिए हम लोग भी इंजॉय करें गीता जी के गाए हुए इन गीतों को, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत बढ़िया गीता मैम। चलिए आपको थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए आपकी म्यूजिक के बारे में हमने बात कर ली, मुझे ये बताइएगा अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती तो क्या नाम रखते उसका आप और क्यों?
1: That's a very interesting question, sir. Life has been very nice to me. तो जैसे वो हमेशा एक जैसे ही नहीं रहा, तो ऊपर नीचे, तो मेरे को हमेशा लगता है या जैसे एक यात्रा होती है या सफर, या मोर अप्रोप्रिएटली लाइक अ ईसीजी मशीन, ईसीजी चार्ट देखते हैं ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे. तो दैट इज हाउ माय लाइफ हैज बीन, बट इट्स बीन वेरी एंजॉयबल, शानदार, यादगार, कुछ भी रख लो. सो
0: ओके, या तो यादगार या शानदार. हाँ
1: हाँ जी, कुछ डिपेंड्स.
0: ओके चलिए दोस्तों, शानदार यादगार इस फिल्म को देखते हैं, इस फिल्म का ही इस नामकरण करते हैं जो गीता जी पर आधारित है, उनकी जिंदगी पर आधारित है. चलिए बात तो म्यूजिक की है, सुनते हैं ये गीत और इसके बाद गीता जी से और बातचीत करते हैं.

0: बहुत खूब गीता जी, अपने अंदर आपको अपने अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? व्हाट डू यू लाइक इन योर सेल्फ?
1: अपने अंदर तो मैंने ये पाया है कि किसी भी सिचुएशन को मैं काफी सहजता से लेती हूँ और कभी भी घबराहट नहीं हुई मुझे किसी बात पर, क्योंकि आई ऑलवेज फील यू नो आई हैव सम सॉर्ट ऑफ मे बी डिवाइन सपोर्ट या कुछ भी हो, या वो हमेशा रहा है, तो कभी यू नो हर सिचुएशन को यू फेस विद अ स्माइल एंड एवरीथिंग सेट्स इन प्लेस. सो ये मुझे अच्छा लगता है अपने बारे में.
0: That you have a divine intervention in yourself, correct?
1: No, you take it in the regular stride and then things fall in place. Don't be affected by anything. Bahut ghabraat nahi ki baba. There's no need to be very frustrated or depressed or anything like that. Because life is like that. It's up and down. What goes up, niche aayega. जो भी ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे जो आएगा वो तो ऊपर जाएगा ही. नो, इट्स लाइक अ साइकिल.
0: राइट राइट.
1: इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल. एंजॉय लाइफ.
0: ओके. सो दोस्तों, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बारे में हम लोगों को थोड़ा सा वक्त निकाल के सोचना तो जरूर चाहिए. व्हाट एग्जैक्टली डू वी लाइक इन आवर सेल्व्स? गीता जी ने पहचाना है दैट शी इज वेरी कूल, वेरी पीसफुल. बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हुए इन गीतों का लुत्फ उठाएं और फिर वापस आएं गीता जी के पास.